किशोर कुमार जी की आवाज में दूरियां नजदीकियां बन गई। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले का नाम ही जिंदगी है।

लहजा समझ में आता है मुझे अब हर किसी का, लहजा समझ में आता है मुझे अब हर किसी का, बस किसी को शर्मिंदा करना अब मेरे मिजाज में नहीं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि के तदानुसार 2 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:53 हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 5:57 हो चुके हैं। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 6:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्पण।

6:44 का समय रहेगा श्री रामचरित मानस गान का। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और ठीक 7 बजे एक बार फिर से होंगे हिंदी में समाचार। सात बजकर 5 मिनट पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर हमेशा की तरह आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। सात बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज सवेरे और ठीक 8 बजे आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात। आठ बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 का समय रहेगा उर्दू में समाचारों का और 8:45 पर आप सुन सकेंगे प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी। ठीक 9 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 9:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 9:10 पर एक बार फिर से जारी रहेगा कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं। अब सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंह

मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे को भी खोल देती है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मेरे यानी सुरती के साथ आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण। और आइए अर्पण की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे से भजन के साथ और मिलकर कहते हैं जय श्री राम।

वृक्ष कभी इस बात से दुखी नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए, वो सदैव नए फूलों के सृजन में लगा रहता है। इसलिए जीवन में कितना कुछ भी खो जाए, इन सब को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में आपके जीवन की सार्थकता है।

इंसान को कभी भी अपने किसी भी हुनर पर घमंड नहीं करना चाहिए। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि पत्थर जो है जब पानी में गिरता है ना तो अपने ही वजन से डूब जाता है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, मेरे यानी सुरती के साथ, और यह है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण। आइए इसी के साथ सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा भजन।

अयोध्या नगरी के बाहर जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री सुमंत्र दो रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रहपूर्वक कुलगुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव गुरु गौरी तथा गणेश का स्मरण कर स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे, घोड़े हाथियों के गर्जन तथा धरती और आकाश से झरते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सची है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुं ओर शुक शकुन हो रहे हैं, बाएं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं तो दाहिनी ओर खेतों में कौवों का समूह मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को नेवले तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए जो शुभ शकुन के लक्षण हैं। उधर उज्जवल धवल सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण का संकेत दे रही है।

0: आप सभी सुन रहे थे श्री रामचरित मानस और इसी के साथ वक्त हो गया है समाचारों का, तो सुनेंगे संस्कृत में, हिंदी में और अंग्रेजी में समाचार और इसके बाद ठीक 7:10 पर सुनना ना भूलें गोल्ड सुप्रभात मेरे यानी सुरती के साथ। लेकिन आइए अब सुनते हैं एफएम गोल्ड पर संस्कृत में समाचार।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानिता काइची इत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकाइची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। विदेश मंत्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धन दिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् संदेशे श्री मोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 एई राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते 6-मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् उत्तर प्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य 4-मार्गीय अभिगमन नियंत्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः 6 मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
2: पहला प्रोजेक्ट 6-लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियमस्य 25.2 अंतर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मंत्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25.1 सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदात्री सूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरन्ड कप इत्यस्य पञ्चत्रिंशदधिकैकशततमं संस्करणं मासस्यास्य पञ्चविंशति दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्त

0: आज सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे। रायगड जिल्ह्यात 7 तालुक्यातील सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे। येत्या 24 तासात कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात काही भागात मुसळधार पावसाचा हवामान विभागाचा अंदाज आहे। शेवटी पुन्हा ठळक बातम्या। विकसित भारत जी रामजी कायदा देशभर लागू। महिला शेतकरी आणि शेतमजुरांना शेतकरी दाखला देणारं महिला सक्षमीकरण विधेयक विधानसभेत सादर। माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांची जयंती कृषी दिन म्हणून साजरी। मुंबईत कृषी पुरस्कारांचं वितरण। वस्तू आणि सेवा कराचं सर्वाधिक संकलन महाराष्ट्रातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती। आणि राज्याच्या बहुतांश भागात पावसाची हजेरी, आजही कोकणासह काही भागात मुसळधार पावसाचा अंदाज। आकाशवाणी पुणे केंद्रावरचं प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं। नमस्कार।
1: किए जा रहे हैं आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
2: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। मेरे यानी सुरति के साथ और प्रोग्राम है ये गोल्ड सुप्रभात। सुबह की शुरुआत आप कैसी करते हैं? अच्छी करते हैं, हेल्दी करते हैं, खुद को फिट रहने वाली करते हैं? अगर करते हैं ऐसा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते तो भाई ध्यान से सुनिए। हमें अपने पूरे दिन को अगर ऊर्जावान बनाना है, खुद को खुश रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सुबह के लिए, छोटी छोटी सी जो जरूर करनी है। जैसे अगर सुबह उठे तो जल्दी उठ गए, मतलब कहते हैं ना सूर्योदय हो रहा है तो उससे पहले उठ जाना चाहिए या उस वक्त तक तो उठ ही जाना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे टाइम पर उठें कि आपको सूर्योदय होता हुआ नजर आए। उठने के बाद गुनगुना पानी पीना जरूरी है, क्योंकि गुनगुना पानी पीने से शरीर से जो कचरा होता है वो बाहर निकलता है और बॉडी डिटॉक्स होती है। और सुबह उठने के बाद चाहे 10 मिनट ही सही, व्यायाम, हल्का व्यायाम या योग जरूर करना चाहिए। टहलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है हमारे शरीर में खून का बहाव तेज करता है और हमारी बॉडी को एक्टिव बनाता है। फिर धीरे धीरे जब धूप खिल जाती है तो कुछ देर धूप में बैठें और शरीर को विटामिन डी देने के लिए अपनी बॉडी को धूप में जरूर रखें। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट इन सब चीजों के बाद पौष्टिक नाश्ता। बहुत लोग नाश्ता स्किप कर जाते हैं, सुबह जल्दी भागना होता है, टाइम नहीं होता। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे में फल खा लें, भीगे हुए बादाम खाएं या दलिया ले सकते हैं, हल्की फुल्की चीज, लेकिन नाश्ता जरूर करें। और इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो डायरी में पूरे दिन की प्लानिंग लिखते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। अगर आप अपने दिन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो पूरे दिन के कामों की लिस्ट तैयार करें और दिन को अच्छा बनाएं। बस ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं, अगर इन्हें हम चेंज कर लेंगे ना, पूरा डे हैप्पी और साथ ही हेल्दी भी रहने वाला है।

0: अच्छा तो हम भी चलते हैं, यानी कि वक्त हो गया है इजाजत लेने का, इसलिए गोल्ड सुप्रभात से मुझे यानी सुरति को दीजिए इजाजत। वक्त हो गया है समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे का। आज सवेरे के बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी उर्दू में समाचार और उसके बाद सुनेंगे अपना मनपसंद प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी ठीक 8:45 पर मेरे यानी सुरति के साथ। तो दीजिए इजाजत थोड़ी देर के लिए, फिलहाल सुनते हैं आज सवेरे।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: शनेह पंथः शनेह कंथः शनेह पर्वत लंघनम शनेर विद्या शनेर व्रतम पंचे तानि शनेह शनेह। अर्थात रास्ता धीरे धीरे तय करें, चादर धीरे धीरे सिलें, पहाड़ पर भी धीरे धीरे चढ़ें, विद्या धीरे धीरे प्राप्त करें और धन भी धीरे धीरे कमाएं। ये पांचों कार्य जल्दबाजी में नहीं बल्कि धैर्य निरंतर प्रयास से ही पूरे होते हैं। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस ओजपूर्ण और सुहावनी प्रभात में आपके साथ मैं हूँ मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। सुभद्रा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल यू लवली फोक्स ट्यून इन टू अस दिस ब्यूटीफुल थर्सडे मॉर्निंग फॉर अनदर एडिशन ऑफ आवर मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। सो मुकेश, लेट अस बिगिन विद सम न्यूज़ हेडलाइंस राइट अवे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे।
1: Government has issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. Sources said that the Ministry of Information and Technology directed Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. The ministry also directed Meta not to roll out the usernames feature until consultation on the matter is over. Sources said that the ministry has taken note of a public announcement by WhatsApp that it has commenced a phased global rollout, including in India, of its usernames feature. Employees Provident Fund Organization, EPFO, is officially notified an 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. The ratings have been declared following approval of the Ministry of Labour and Employment as per the EPF scheme 1952. It has directed regional and zonal offices to credit

0: the approved interest to members' EPF accounts. Civil Aviation Ministry has announced that India achieved a major milestone with approval of the country's first private point-in-space PINS instrument approach procedure for helicopter operations at Undavali Heliport. PINS procedures use advanced satellite-based navigation technology to enable helicopters to conduct safe and precise instrument approaches to heliports that do not have conventional instrument landing infrastructure. The ministry said that PINS is particularly beneficial during adverse weather conditions and in areas where ground-based navigation aids are not available. It was developed by the Airports Authority of India and approved by the Directorate General of Civil Aviation. The indirect talks between Iran and the US through mediator concluded in Doha yesterday. According to a statement by the Qatari government, both sides agreed to continue discussions after the funeral ceremonies for Iran's former supreme leader, Ali Khamenei, on the 9th of this month. Talking to media, US Vice President J.D. Vance said the Doha negotiations were progressing well, with technical level discussions already underway. He said the next phase would focus on Iran's nuclear program and added that the talks were being held from a position of strength after recent U.S. military action.
1: और श्रोताओं, सनातन धर्म की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाली श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 3 जुलाई से नुवनगाम, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी।
0: FIFA World Cup news now. In the FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time round of 32 and qualify for the round of 16. Yuri Tielemans scored a 125th minute penalty to seal a dramatic 3-2 victory and extend Belgium's unbeaten run to 17 matches. Belgium will now face the winners of the United States versus Bosnia and Herzegovina match in the round of 16. Last night, England defeated the Democratic Republic of Congo 2-1 in the Atlanta, with Harry Kane scoring twice in the final 15 minutes. England will face co-host Mexico in the round of 16 on July 6th.
1: और अगर बात करें क्रिकेट की, तो पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और अब समय है प्रमुख महानगरों की खबरों को जानने का। इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़े समाचारों की। तो दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से राहत के लिए हर वर्ष 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहने वाले व्यापक और स्थायी दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। नई व्यवस्था के अंतर्गत पूरे वर्ष केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से नीचे के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से रियायत प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा और सरकारी तथा निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल, प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। बड़े वाणिज्यिक भवनों और निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन और मिस्ट गन सिस्टम अनिवार्य किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में कल से नई ईवी पॉलिसी लागू हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मार्च 2030 तक परिवहन व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव, चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार और विभिन्न वाहन श्रेणियों के चरणबद्ध विद्युत

0: करण का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। आइए सुनते हैं इस पर हमारी संवाददाता नितिका गुप्ता की खास रिपोर्ट।
1: नई ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने वालों को ₹30,000, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर खरीदने वालों को ₹50,000 और N1 कैटेगरी के हल्के कॉमर्शियल वाहनों के लिए ₹1,00,000 की सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही ₹30,00,000 से कम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी तरह छूट दी गई है। नई नीति में पहली बार पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर ₹10,000 का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इससे पहले केवल सीमित संख्या में ई कार्गो वाहनों को प्रोत्साहन और कुछ मार्गों पर नो एंट्री समय से छूट का प्रावधान था, लेकिन अब N1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर ₹1,00,000 तक का खरीद प्रोत्साहन दिया जाएगा। समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। 13,000 से अधिक बूथ स्तर अधिकारी इस महीने की 29 तारीख तक घर घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन और उसके अद्यतन के लिए वर्तमान मतदाताओं को पहले से छपे दो दो प्रपत्र वितरित करेंगे। इसके संबंध में दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता निर्वाचन आयोग के पोर्टल www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन प्रपत्र भर सकते हैं।
2: Moving to Chennai now, distinguished scientist and director general of DRDO, B.K. Das has said that Tamil Nadu has the potential to emerge as a major defense electronics manufacturing hub over the next decade, with the state's annual production opportunity projected to more than triple from ₹11,500 crore in 2030 to ₹37,000 crore by 2040. The growth is expected to rise in India's overall defense production, which is projected to increase from 35% in 2030 to 45% in 2040. He said that the state is targeting to increase its share of India's defense electronics production from 15% in 2030 to 25% by 2040, supported by Tamil Nadu Defense Industrial Corridor and favorable national policy initiatives. Happy Doctor, an initiative of Redwood Creations, launched India's first gratitude marathon for doctors. The initiative is to express society's appreciation for the medical fraternity while drawing attention to the growing mental and emotional challenges faced by doctors. The studies conducted by this initiative has assessed that doctors face risk of burnout, depression, anxiety, alcohol, and also suicide risks. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay has appealed to Prime Minister Narendra Modi about critical modifications and relaxations of the VBGRAMG Act and asked for a reconsider some changes in the Act. In a letter to Prime Minister, he has said that the scheme imposed an additional financial burden of over ₹5,000 crore under the new sharing pattern and restrictive operational implications on the state government. Mukesh?
0: अब बात करते हैं महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। सुभद्रा, तो पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक की 113वीं जयंती के अवसर पर कल महाराष्ट्र में कृषि दिवस मनाया गया। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन में श्री नाइक को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। रत्नागिरी जिले में धान की खेती की प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया और कृषि पर अल नीनो घटना के असर के बारे में जागरूकता सत्र भी आयोजित किए गए। इसके अलावा महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कल मुंबई में बिजली वितरण की समस्याओं की समीक्षा के लिए बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बिजली नेटवर्क को मजबूत करने और ग्राहकों की शिकायतों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की गई।
2: Bengaluru News Now, the Greater Bengaluru Authority has launched a citywide safe footpaths campaign across all 5 city corporations to remove encroachments from footpaths and ensure safe movements for pedestrians. The drive, conducted under the direction of Greater Bengaluru Development Minister Krishna Baira Gowda, taught targeted and authorized signboards, staircases, cables, construction debris, kiosks, pushcarts and other obstructions on major roads across the city. Officials have appealed to traders, commercial commercial establishments and street vendors to voluntarily clear encroachments, warning that legal action

0: across the globe, driven by the collective efforts of millions across the agricultural and food value chain. Vishal Das for Aaj Sabere.
1: श्रोताओं, समय है इतिहास के पन्ने पलटने का, आपको उन जानकारियों से रूबरू कराने का जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा, या आज जिन लोगों का जन्मदिन है उनकी आपको आज जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस कड़ी में बात करते हैं पहले आज के दिन यानी 2 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो वर्ष 1698 में आज ही की तारीख को थॉमस सावेरी ने भाप इंजन को पेटेंट कराया था।
2: 1897, British Italian engineer Guglielmo Marconi obtains a patent for radio in London. Formal reunification of North and South Vietnam happened this day in 1976. And 1900, second modern Olympics Games opens in Paris.
1: और 1777 की बात करें तो अमेरिका के वर्मेंट शहर में दास प्रथा की समाप्ति भी आज ही की तारीख को हुई थी। स्वदेश निर्मित परमाणु बिजली केंद्र की पहली इकाई ने वर्ष 1983 में मद्रास के निकट कल्पक्कम में आज ही की तारीख से काम करना शुरू किया था। अब याद करते हैं उन व्यक्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि, जन्मदिन या जयंती है।
2: यस
1: जी।
2: 2 जुलाई 1843, डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, द फादर ऑफ होम्योपैथी, एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट टेक्स केयर ऑफ द पेशेंट इन अ जेंटल होलिस्टिक मैनर। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी इज दैट अ सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स अ सर्टन डिजीज कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट द सेम डिजीज। दिस इज रेफर्ड टू एज अ लॉ ऑफ सिमिलर्स। एंड आफ्टर स्टडिंग एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर हैनेमन लेफ्ट द प्रैक्टिस इन 1784 एंड डिस्कवर्ड होम्योपैथी इन 1796, developed as an effective treatment system. His medical approach gained popularity across the globe, and today, of course, homeopathy is recognized as a valid medical practice in several countries.
1: आज श्रोताओं, पुण्यतिथि है असित भट्टाचार्य की। वे भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। असित भट्टाचार्य शुरुआत से ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे और उन्होंने क्रांति दल के सदस्य के रूप में भी सदस्यता ग्रहण की थी। 31 मार्च 1933 को हबीबगंज में एक डकैती हुई जिसमें असित भट्टाचार्य ने महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में माँ भारती के इस महान सपूत को फांसी दी गई।
2: Remembering O.V. Vijayan, author, cartoonist, who was an important figure in modern Malayalam language literature. He was born in Palakkad, Kerala, 1930. Vijayan authored many volumes of short stories which range from the comic to the philosophical and show a diversity of situations, tones and styles. He translated most of his own works from Malayalam into English. He was also an editorial cartoonist and political observer, worked for news publications including The Statesman and The Hindu. And today is tributes to Ernest Hemingway, American novelist, short story writer, who received a Nobel Prize for Literature in 1954 for the classic Old Man and the Sea, that also earned him the Pulitzer Prize in 1952. His important book, 1925, a collection of stories called In Our Time, was published in New York City. It was originally released in Paris in 1924.
1: श्रोताओं, आज जयंती है मोहम्मद अजीज की। वे भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक थे जिन्होंने मुख्यतः बंगाली, उड़िया और हिंदी फिल्मों में गाने गाए। उन्होंने कोलकाता के एक रेस्टोरेंट में गायक के तौर पर अपना करियर शुरू किया। साल 1984 में वे मुंबई आए। उनकी पहली हिंदी फिल्म अंबर थी जो 1984 में रिलीज हुई। मोहम्मद अजीज ने पहली बार अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द के लिए मर्द टांगे वाला गीत गाया था। उन्हें 80 और 90 के दशक में मोहम्मद रफी का उत्तराधिकारी कहा जाता था। अगर हम बात करें उनके प्रसिद्ध गानों की तो आपके आ जाने से, कागज कलम दवात, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, मेरे दो अनमोल रतन, माय नेम इज लखन, तुझे रब ने बनाया होगा और ना जाने कितने ही ऐसे गाने हैं जो आज भी लोगों की जबान पर चढ़े हैं। आइए सुनते हैं उनके कुछ ये सदाबहार नगमे।

0: श्रोतामा, जयंती है कालीचरण चरण पाणी ग्रह की। वे प्रसिद्ध उड़िया कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार और निबंधकार थे। वे अपनी महान कृति मतीरा मनीषा के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें उड़िया साहित्य में योगदान के लिए वर्ष 1971 में पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कालिंदी चरण के काव्य में प्रणय चेतना के मुख्य आधार कुछ इस प्रकार है कि प्रेम लज्जा का विषय नहीं, वो युवाओं का अधिकार है। प्रेम शाश्वत है। प्रेमी एक दूसरे के परिपूरक तथा मुक्ति के मार्ग के पथ प्रदर्शक भी हैं। और इसी के संदर्भ में हिंदी का एक दोहा भी है कि इस असार संसार में केवल प्रेम रतन धन सार। क्योंकि प्रेम से जीवन आकर्षक बनता है, इसी प्रेम को पाने के लिए कवि कालिंदी चरण बार बार जन्म लेने की तमन्ना रखते हैं। जिस संसार को लोग दुखमय मानते हैं, वो संसार प्रेम के कारण स्वर्ग बन सकता है।
1: And friends, another famous novelist took birth this day. Hermann Hesse, German writer and poet, was awarded the Nobel Prize for Literature in 1946. He published his first book, A Collection of Poems, in 1899. And today is also the birthday of singer-songwriter actress Michelle Branch. Her singing career started in 2000 with two smash albums, Spirit Room and Hotel Paper. She earned a Grammy with Carlos Santana for the best pop collaboration for vocals.
0: आज ही जयंती है आशालता बावगांवकर की। वे महाराष्ट्र व मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थीं। उन्होंने कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से अमिट छाप लोगों के दिलों पर छोड़ी। दूरदर्शन पर उन्होंने अपने कई धारावाहिकों से भी घर घर में लोगों के दिलों में खूब पहचान बनाई। वे गोवा की रहने वाली थी और उन्होंने सबसे पहले कोंकणी और मराठी नाटकों में अभिनय करना शुरू किया। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे

0: लेने का, तो मुकेश और सुभद्रा को दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
1: स्टे ट्यून फॉर कमिंग अप नाउ इस समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के 2-तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है।

0: विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत

0: इंग्लैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। पांच मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। दो क्वार्टर फाइनल, एक सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमेरिका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने एक खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सानाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने माली साल 2025-26 के लिए ईपीएफ डिपॉजिट पर 8.25% शरह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फिजाई आलूदगी से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है। फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैन अलाक्वामी मैच बारिश की वजह से मुलतवी कर दिया गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सानाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। सरबरा सतह के मुज़ाकरात दोनों फरीकों को इस बात का मौका फराहम करेंगे कि वो अपने तमाम बाहमी तआवुन का जायजा लें और उन्हें मुस्तहकम करें। साथ ही साथ आपसी मफादात के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची के दरमियान बातचीत के बाद कई मफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। जापान की वज़ीर-ए-आज़म भारत के 3 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची का भारत का ये पहला दौरा है। वज़ारत-ए-खारजा ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के दरमियान खुसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को आगे ले जाने में अहम कदम है। हमारे नामानिगार ने इतला दी है कि इक्तसादी सलामती के ताल्लुकात का एक कलीदी सुतून समझा जा रहा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में हुए पहले इक्तिसादी सलामती मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने कलीदी इश्तराक के लिए तरजीह शोबों के तौर पर 5 शोबों की निशानदेही की थी। इन शोबों में सेमीकंडक्टर्स, अहम मादनियात, दवासाजी, साफ तवानाई और इतलात व मवासलाती टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इन आला सतही सियासी मुसफियात से भारत जापान ताल्लुकात की अक्कासी होती है। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान जापानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ गुफ्तगू की थी। इससे पहले दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता साल नवंबर में जोहान्सबर्ग में G7 समिट के मौके पर मुलाकात की थी। बाहमी सतह की सालाना सरबरा मीटिंग शराकतदारी के कलीदी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम प्लेटफार्म है। 2025 में सालाना समिट के दौरान जापान भारत के दरमियान इंसानी वसाइल के तबादले और तवाउन के लिए एक एक्शन प्लान शुरू किया था, जिसमें दोनों मुल्कों की तरफ से भारत से जापान के लिए 50,000 हुनरमंद और नीम हुनरमंद अमले समेत 5 साल में 5 लाख अमले का तबादला का मंसूबा है। सालाना समिट के अलावा वजीर खारजा, वजीर दिफा, NSA, खारजा सेक्रेटरी और दीगर सतहों पर भी आला सतह के तबादले और मीटिंगें बाकायदा तौर पर होती रहती हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो जापान की वज़ीर-ए-आज़म सानाए ताकाइची के साथ आज वसीतर उमूर पर तबादले ख्याल के मुंतजिर हैं, जिससे भारत और जापान के दरमियान खुसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को मजीद वसअत मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि जापान की वज़ीर-ए-आज़म के भारत दौरे पर उनकी मेज़बानी करना उनके लिए बायस मसर्रत होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मोहतरमा ताकाइची की मुश्तरक कोशिशों के जरिए भारत और जापान भारत बहरुल काहल और उससे आगे भी अमनो इस्तेकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने माली साल 2025-26 के लिए ईपीएफ डिपॉजिट पर शरह सूद 8.25% रखने से मुतालिक सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ईपीएफ स्कीम 1952 पर मेहनत और रोजगार की वजारत की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद इस शरह सूद का ऐलान किया गया है। ईपीएफओ ने अपने इलाकाई और जोनल दफातर को हिदायत दी है कि वो अराकीन के ईपीएफ खातों में मंजूर शुदा शरह के मुताबिक सूद की रकम मुंतकिल करे। हुकूमत ने भारत में व्हाट्सएप के जरिए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है। जराए ने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने की मेटा को हिदायत दी है। مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: ذرائع نے بتایا کہ وزارت نے واٹس ایپ کی جانب سے کیے گئے عوامی اعلان کو نوٹ کیا ہے، جس کے تحت واٹس ایپ نے بھارت سمیت عالمی سطح پر یوزر نیم فیچر کا مرحلے وار طریقے سے آغاز کیا ہے. واٹس ایپ نے بتایا کہ یوزر نیم فیچر کے فعال ہو جانے کے بعد پیغام بھیجنے والے کا موبائل نمبر پہلی مرتبہ رابطہ کرنے والے شخص کو نظر نہیں آئے گا اور اختیاری یوزر نیم کی اضافی کنٹرول کے لیے سیٹ کی جا سکتی ہے. ذرائع نے بتایا کہ اس بارے میں تشویش ہے کہ یوزر نیم فیچر کے ذریعے آن لائن دھوکہ دہی، جعل سازی، ڈیجیٹل گرفتاری جیسے معاملوں اور جعلی شناخت ظاہر کرنے جیسے جرائم میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس بارے میں بھی تشویش ہے کہ یوزر نیم فیچر جعلی شناخت ظاہر کرنے اور خود کو کوئی اور ظاہر کرنے جیسے معاملوں کو بڑھاوا دے گا. ذرائع نے مزید بتایا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے میٹا کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ اس معاملے پر مشاورت ختم ہونے سے پہلے یوزر نیم فیچر کی شروعات نہ کرے. نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
0: دلی حکومت نے موسم سرما میں فضائی آلودگی پر مستقل طور پر قابو پانے سے متعلق ماسٹر پلان نوٹیفائی کر دیا ہے، جو قومی راجدھانی میں ہر سال 1 نومبر سے 28 فروری تک نافذ العمل رہے گا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا ہے کہ نیا فریم ورک آلودگی کی روک تھام سے متعلق موجودہ اقدامات کو ضوابط کے واحد سیٹ کے تحت یکجا کرے گا اور ہر موسم سرما میں الگ الگ احکامات جاری کیے بغیر ان ضوابط کے بر وقت نفاذ کو یقینی بنائے گا. یہ نوٹیفیکیشن ہوا کے معیار کے بندوبست سے متعلق کمیشن سی اے کیو آر کے نظر ثانی شدہ جی آر اے پی رہنما خطوط اور سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی یکجا کرتا ہے. نئے ضابطوں کے مطابق مجاز پولیوشن انڈر کنٹرول پی یو سی سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والی گاڑیوں کو پوری دلی میں سال بھر پیٹرول پمپ، سی این جی اور ایل پی جی اسٹیشنوں پر ایندھن فراہم نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ 1 نومبر سے 31 جنوری تک دلی سے باہر رجسٹر BS6 اخراج سے کم درجے کی گاڑیوں کا دلی میں داخلہ ممنوع رہے گا. نیوز ڈیسک سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
0: حکومت نے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری کو اگلے سال 14 جولائی تک 1 سال کی توسیع دے دی ہے. جناب مصری نے 15 جولائی 2024 کو خارجہ سیکرٹری کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا تھا. وہ جنوری 2019 سے دسمبر 2021 تک چین میں بھارت کے سفیر رہے ہیں. یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج صبح جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ سے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے یاتریوں کے پہلے جتھے کو روانہ کیا. 57 روزہ سالانہ یاترا سرکاری سطح پر کل سے کشمیر کے 2 راستوں سے شروع ہو گئی ہے، جو 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی. یاتریوں کا پہلا جتھا سخت سیکیورٹی کے دوران آج صبح سویرے جموں سے روانہ ہوا. یاترا اننت ناگ ضلع میں 48 کلومیٹر، روایتی نونون پہلگام اور گندربل ضلع میں 14 کلومیٹر بالتل راستے سے شروع ہوئی. سی سی ٹی وی کیمرے اور RFID ٹریکنگ راستوں پر کثیر سطحی سیکیورٹی کا سخت بندوبست کیا گیا ہے. یاتری جموں سری نگر قومی شاہراہ NH 44 پر سفر کریں گے. یاترا ٹریفک کے لیے مغل روڈ اور دھار روڈ جیسے متبادل راستوں پر سخت ممانعت ہے. آن لائن اور آف لائن رجسٹریشن دونوں پوری طرح سے سرگرمی سے جاری ہیں. تقریباً 4 لاکھ یاتریوں نے یاترا کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنا اندراج کرایا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے اگلے 2 دن کے دوران دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، گجرات، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور راجستھان میں آگے بڑھنے کا امکان ہے. محکمے نے اگلے 2 دن تک ساحلی کرناٹک، گجرات، کونکن، گوا اور وسطی مہاراشٹر میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات سے متعلق ایجنسی نے مزید کہا کہ اگلے 3 دن تک ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش، اوڈیشہ، سوراشٹر، کچھ، اتراکھنڈ اور ودربھ میں بھی اسی طرح کے موسمی حالات رہنے کا امکان ہے. اس دوران قومی راجدھانی دلی میں آج صبح شہر کے مختلف حصوں میں ہلکی بارش ہوئی، جس سے شہر کے رہائشیوں کو گرمی سے کچھ راحت ملی ہے. کیرلم کے زیادہ تر حصوں میں آج بارش کے کمزور ہونے کی توقع ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ کیرلم کے کوزی کوڈ، کنور اور کاسرگوڈ کے علاوہ تمام ضلعوں میں بارش کی شدت میں کمی آنے کا امکان ہے. कन्नूर और कासरगोड जो कि गुज़िश्ता दो दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट पर थे, आज इन ज़िलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि महकमे ने कोझिकोड ज़िले के लिए बदस्तूर येलो अलर्ट बरकरार रखा है। सीबीआई ने डिजिटल गिरफ्तारी साइबर धोखाधड़ी केस में गुजरात के राजकोट से हरियाणा के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने कहा है कि डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी के तहत एक खातून मोहम्मद शहरी को दो मुख्तलिफ बैंक खातों से 25 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल करने पर मजबूर किया गया था। शिकायत के मुताबिक मुतासिर खातून को उन नामालूम अफराद की जानिब से धमकी भरे फोन कॉल मौसूल हुए थे जो खुद को सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी अफसरान के तौर पर जाहिर कर रहे थे। फोन करने वाले नामालूम अफराद ने झूठे दावे किए थे कि खातून मोहम्मद शहरी के बैंक खाते को दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उस मोहम्मद खातून को गिरफ्तारी और उनकी जायदाद जब्त करने की धमकी दी गई थी। अपने दावों को मोतबर साबित करने के लिए उन्होंने एक फर्जी कुर्की का हुक्म भी भेजा। तहकीकात के दौरान मजाज अदालत से जरूरी अहकाम हासिल करने के बाद मुतासर खातून को 2,65,000 रुपये रिफंड भी किए गए थे। सीबीआई ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो धोखाधड़ी पर मबनी सरकारी सरमायाकारी स्कीमों, कानून नाफिज करने या रेगुलेटरी एजेंसियों और डिजिटल गिरफ्तारी घपलों के नाम पर की गई फर्जी कॉल समेत साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ चौकन्ना रहें। ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसकारों के जरिए जारी बिलवास्ता मुजाकिरात कल दोहा में खत्म हो गए। खतर की हुकूमत की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक दोनों फरीकों ने इस महीने की 9 तारीख को ईरान के साबिक रहबर आला अली खामेनाई की आखिरी रसूमात के बाद मुजाकिरात जारी रखने से इत्तेफाक किया है। मीडिया के अफराद से बात करते हुए अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने बताया कि दोहा मुजाकिरात खुश असलूबी से जारी हैं। कुछ तकनीकी सतह पर बातचीत पहले से ही जारी है। उन्होंने कहा कि अगले मरहले की बातचीत के दौरान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई के बाद मुजाकिरात एक मुस्तहकम मौकफ के साथ किए जा रहे हैं। फीफा आलमी कप में बेल्जियम इजाफी वक्त में सेनेगल को 2-3 से हराने के बाद नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। इस तरह वो प्री क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गया है। प्री क्वार्टर फाइनल में अब बेल्जियम का मुकाबला अमरीका या बोस्निया हर्जेगोविना मैच के फातह से होगा। मर्दों के क्रिकेट में कल रात चेस्टर ली स्ट्रीट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैन अल-अक़वामी मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 47 गेंदों में 68 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
2: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शायद होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 11 साल मुकम्मल होने के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को खसूसियत के साथ शाये करते हुए लिखा है कि ये एक इनकलाबी कदम है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने नई समत अता करते हुए तरक्की याफ्ता और खुद कफील भारत की मजबूत बुनियाद रखी है। जापान की वजीर आजम सिनाई तकेशी ने 3 रोजा सरकारी दौरे पर भारत पहुंची। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 16वीं भारत जापान सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की खबर है बैन अल-अक़वामी बाजार में गैस की कीमतों में तख़फीफ के बाद मुल्क में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमत में कमी। इसी अखबार की एक और खबर है मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत मुल्क में गैर कानूनी दरअंदाजी और आबादी के बदलते हुए ढांचे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुजाकिरात करेंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर 8.25% शरह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फिजाई आलूदगी से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है। और फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा

कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों को गहराई से समझने से गहरा होता है और सच्चा बनता है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो गया है आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी का मेरे यानी सुरती के साथ। तो करते हैं शुरुआत एक प्यारे से गाने के साथ, फिर करेंगे कुछ और बातें, जानेंगे कुछ खास और प्यार भरे हसीन से गानों का साथ एफएम गोल्ड पर।

0: यूपी टीईटी 2026 परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने अनारक्षित एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जानते हैं ये जो ट्रेनें हैं ना, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया जैसे प्रमुख शहरों के बीच चलेंगी। आपको बता दूं कि यूपी टीईटी जो एग्जाम्स हैं वो 2 से 4 जुलाई 2026 तक दो शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे। इसलिए जो ट्रेन हैं वो भी 2 से 3 नहीं बल्कि 5 जुलाई तक चलेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए ऐसी स्पेशल ट्रेन बच्चों के लिए या उन एप्लीकेंट्स के लिए बेहद बेस्ट है जो इस टाइम पर भारी भीड़ से बचने के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं और अपने एग्जाम्स के लिए टाइम पर गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, यानी कि परीक्षा केंद्र तक पहुंचना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये एक बहुत अच्छा एफर्ट है और इसके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं हम रेलवे को।
1: मेरी, ओ, मेरी शर्मिली।

क्या आप जानते हैं ज्यादा टाइम तक एसी में रहने से बॉडी जो है खराब होती है, और खराब ही नहीं होती बल्कि शरीर के जो दर्द हैं, जो पोषिकाएं हैं, वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है। ये मैं नहीं कह रही बल्कि ये एक अध्ययन में पाया गया है कि अगर आप बहुत लंबे समय से एसी के अंदर ही रहते हैं, एसी में ही सोते हैं, काफी टाइम तक जो है बॉडी जो है एसी को एक्सेप्ट करते करते ऐसी बन जाती है कि कुछ टाइम के बाद आपकी जो नसें हैं वो सिकड़नी शुरू हो जाती है, बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है। आपको लगता है कि शायद ये यूं ही हो रहा है, लेकिन वो यूं ही नहीं होता। एसी के अगर पॉजिटिव पार्ट्स हैं तो साइड इफेक्ट भी है। इसलिए कहते हैं ना, हर चीज की अति जो है नुकसानदायक होती है, तो एसी उतना ही इस्तेमाल करें जब बहुत ज्यादा जरूरत लगे। ओवर इस्तेमाल करने से बचिए, बॉडी को प्रोटेक्ट कीजिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी खान पान कीजिए, और ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप व्यायाम करें, एक्सरसाइजेस करें, वॉक करें, और खुद को एसी से या ठंडी चीजों से बचा कर रखें। हालांकि मौसम बहुत गर्म है तो मजबूर हो जाते हैं हम, लेकिन इस मजबूरी में भी बॉडी को इतना ज्यादा एसी के कॉन्टैक्ट में ना लाएं कि बाद में परेशानी का सामना करना पड़े।

और इसी के साथ वक्त हो गया है इजाजत लेने का, इसलिए मुझे यानी सुरती को दीजिए इजाजत। आपने कहीं नहीं जाना है, वक्त हो गया है समाचारों का, तो सुनेंगे समाचार एफएम गोल्ड पर और ठीक 9:10 पर म्यूजिकल दिलगी का ये सफर यूं ही जारी रहेगा रजनी के साथ। सुनते रहिए अपना मनपसंद आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में शांति और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के हस्तांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल है। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं को छोड़कर विध्वंस कार्य और धूल उत्पन्न करने वाले खुले निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार रहें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और ये 28 अगस्त तक चलेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह आज बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पल पल जुड़ के दिन बनता है, दिन जुड़ के महीना और महीना जुड़ के साल। देखिए ना, ऐसा लगता है कि अभी तो ये साल शुरू हुआ था और अब 2026 अपना आधा सफर पूरा भी कर चुका है। खैर, दिन महीने साल तो ऐसे ही बीतते जाएंगे, लेकिन आपका साथ हमारे साथ बना रहे, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। म्यूजिकल दिल्लगी आप सुन रहे हैं FM गोल्ड पर मेरे यानी कि रजनी के साथ।

ये गीत आपने सुना फिल्म अवतार से, आवाज थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। वैसे हर बदलते साल के साथ लोगों को स्पोर्ट्स की अहमियत समझ आ रही है। आज स्पोर्ट्स एक बहुत ही चार्मिंग करियर के तौर पे देखा जाता है। खिलाड़ियों के साथ साथ खेलों की जानकारियां लोगों तक पहुंचाना यानी खेल पत्रकारिता भी एक उभरता हुआ करियर है। आज का दिन यानी 2 जुलाई विश्व पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन द्वारा की गई थी, जिसे मनाने का उद्देश्य खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और लोगों में खेल पत्रकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

खेल भावना से भरा ये गीत आपने सुना फिल्म सीता और गीता से। आवाजें थी आशा भोसले और मन्ना डे की। गर्मियों का मौसम जब आता है तो अपने साथ उमस और परेशानी लेकर आता है, लेकिन साथ ही लाता है एक ऐसी चीज जिसका जो रस है वो आत्मा तक को भिगो देता है। समझ गए ना आप, बात कर रहे हैं हमारे आपके सबके प्यारे आम की। अपने देश में आम की 1500 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं, चाहे वो मलिहाबाद का दशहरी आम हो, लखनऊ का गुलाब खस, आम्रपाली और सफेदा, गोरखपुर का गौड़जीत, बनारस का लंगड़ा आम, रत्नागिरी का हापुस, हरदोई का चौसा, बंगाल का फजली आम, बिहार का जंदालू, गुजरात का केसर आम, उत्तर भारत का टपका या दक्षिण भारत का तोतापरी, नीलम और स्वर्णरेखा। नाम अलग स्वाद अलग, लेकिन आम के लिए दीवानगी पूरे भारत में एक जैसी है। और सिर्फ इंसानों में ही नहीं, पशु पक्षियों पर भी फलों के इस राजा का जो जादू है वो दिखाई देता है। तभी तो हमारे काव्य ग्रंथों में, लोक गीतों में और फिल्मी गीतों में अमुआ के डार पर कोयल का जिक्र तरह तरह से बेहद खूबसूरती से किया गया है। कुछ वैसे ही जैसा कि इस गीत में जिसे आप सुनने वाले हैं, आप आए बहार आई फिल्म से। आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।

इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी

म्यूजिकल दिल्ली की आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। और ये गीत जो भी आपने सुना ये था फिल्म बैराग से, आवाज थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, सारे शहर में आपसा कोई नहीं। हर कोई चाहता है कि ऐसा ही कुछ उसके बारे में भी कहा जाए, हर कोई चाहता है कि वो खूबसूरत लगे, सबसे अलग नजर आए, और इसके लिए अपनी डाइट पे ध्यान देना सबसे जरूरी है। इन दिनों प्रोटीन डाइट यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन कहते हैं ना कि अति तो हर चीज के नुकसानदेह है, चाहे वो प्रोटीन ही क्यों ना हो। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रोटीन ड्रिंक के बजाय प्रोटीन युक्त आहार लेना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि प्रोटीन की जरूरत आपकी उम्र, गतिविधियों और लिंग पर भी निर्भर करती है। लंबे समय तक काफी ज्यादा प्रोटीन लेने से पाचन संबंधी समस्याएं, डिहाइड्रेशन और पोषक तत्वों में असंतुलन हो सकता है। खासकर किडनी के मरीजों को प्रोटीन युक्त आहार लेने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगला गीत आप सुन रहे हैं फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से, और आवाज है लता मंगेशकर की।

आज 2 जुलाई है। हर दिन की कोई ना कोई कहानी होती है और आज का दिन भी इसका अपवाद नहीं है। आज ही के दिन 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। 2 जुलाई 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और आज ही के दिन 1950 में स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक यूसुफ मेहर अली का निधन हुआ। और 2 जुलाई 1934 को भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक असित भट्टाचार्य को फांसी दे दी गई थी। आज जन्मे व्यक्तियों की बात करें तो अवधी लोक साहित्यकार पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह का जन्म आज ही के दिन हुआ 1945 में। प्रसिद्ध जनकवि आलोक धनवा भी आज ही के दिन 1948 में पैदा हुए। प्रसिद्ध उड़िया साहित्यकार कालिंदी चरण पाणिग्रही का जन्म 1901 में हुआ 2 जुलाई। और आज जयंती है भारत के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज की, जिनका जन्म 1954 में 2 जुलाई को हुआ पश्चिम बंगाल में। उन्होंने एक से बढ़कर एक लोकप्रिय गीत हमें दिए और इन्हीं में से एक लोकप्रिय गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म खुदगर्ज से। आवाज है मोहम्मद अजीज के साथ साधना सरगम की।

गर्मी का मौसम शुरू होता है और हर कुछ देर में प्यास सताने लगती है, तब पानी की असली अहमियत समझ में आती है। देश के हर घर तक नल का पीने लायक पानी उपलब्ध हो, इसी उद्देश्य से साल 2019 में सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की स्थापना की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तब केवल 3.23 करोड़ घरों में नल के पानी की सुविधा उपलब्ध थी और अब लगभग 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित नल का पानी उपलब्ध है, जो कि भारत में बुनियादी ढांचे के सबसे तेज विस्तारों में से एक है। इस मिशन में निर्माण के दौरान लगभग 3 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार सृजित करने की क्षमता है। WHO का मानना है कि देश में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने से डायरिया से होने वाली 4 लाख मौतों को टाला जा सकता है और इससे समय और श्रम की भी बहुत बचत होगी, खासकर महिलाओं के लिए जो कि पानी भर के लाने के लिए कठोर परिश्रम करती हैं। ये मिशन सतत विकास और सामुदायिक भागीदारी दोनों पर समान रूप से बल देता है, जिससे जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल स्रोतों के पुनः प्रयोग जैसे उपाय शामिल हैं।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म शोर से। इसी के साथ म्यूजिकल दिल्लगी से मुझे यानी रजनी को इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में आप सुन सकते हैं समाचार।

तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।

वान है तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।

तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर। भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। ज्वाइन इंडियन नेवी।

है तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। Join Indian Navy.

बिखावी कोड़ी न अरे वांगी न दौड़ का जोड़ी न काकड़ी बिखावी कोड़ी न गादर नी मुड़ा दूधी दूध

जा ठंडा हो। क्यों चाचा क्या हुआ? कोमड़ी आधी का अंडा हो। अंडा अंडा कोमड़ी पतला का चाचा ठंडा हो। कोमड़ी आधी का अंडा हो। उत्तर सांगा निकाय पण मांगा दाऊ न दाऊ माला डंडा हो। पतला का चाचा ठंडा हो। कोमड़ी आधी का अंडा हो। उत्तर सांगा निकाय पण मांगा दाऊ न दाऊ माला डंडा हो। सलाम जैन राहू सारे हसबू या दुनियेला। सलाम जैन राहू सारे हसबू।

गाव मोठ वर्क गान गाव मोठ वर्क बान राजा चल रे सर जा बिगी बिगी बिगी बिगी डौलान डौलाने गाऊ मोठ वर्क गान गाऊ मोठ

मोट चालली मैं तुम जगता तू आज तई कुई कुई आतात पानी झुलझुलवानी फुल विच जाते जाई दुई अरे मोट चालली मैं तुम जगता

अनपाता सुपानी दुर्दुवानी पुलवित जाते जाई दुई धरती माता यही नाता निसू नहीं रोले नर लेने गाव मोटे वर्त गाने गाव मोटे

पटरी भगत ला हरिभरा पटवल पकड़ी वंगी बल पकड़ी मक्या सडुल तोही तुरा गाजर मुलानी केरी रतारी भगत ला हरिभरा अन पटवल पकड़ी वंगी बल पकड़ी मक्या सडुल तोही तुरा

पाए कन्हैया या चिवड़ी माया घर मध्य झाणी यही आणी बाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री ताकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
1: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
2: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7

0: प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takeuchi in New Delhi. The summit is an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Earlier, Prime Minister Takeuchi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan today. Prime Minister Modi was also present on the occasion. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takeuchi to India. The External Affairs Ministry said the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. India has reiterated its firm stand that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global action to eliminate the menace. Addressing the UN General Assembly during the adoption of the 9th review of the United Nations Global Counterterrorism Strategy, India's permanent representative to the UN, P. Harish, said, "A terrorist is a terrorist," and emphasized that the counterterrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized narratives.
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause, or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation, and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
1: 7 migrant workers have lost their lives after a big chunk of rock slid and fell on them in Bengaluru South Taluk today. The tragedy struck at the Kaveri Crusher Stone Quarry in Madhapatna village. Those injured were evacuated from the accident site and are currently under medical treatment. The police have registered a case and the hunt is on for the owners of the quarry. The Delhi Police Special Cell has arrested 4 accused in a crackdown on ISI-sponsored interstate terror and arms network. Police said the accused were planning to carry out a terror activity in the national capital on instructions of ISI.

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज कलाकार बेमिसाल में एक ऐसी आवाज आप सुनने वाले हैं जो कि याद दिलाती है 80 और 90 के दशक के उस जमाने की, जब कैसेट्स चला करती थी, क्रेज था इनके गानों का। हर शादी पार्टी किसी भी अच्छे से प्रोग्राम में इनके गाने जरूर सुनाए जाते थे। दोस्तों, याद है आपको मोहम्मद अजीज? बिल्कुल याद होंगे।

निगाहें फिल्म का ये गाना मोहम्मद अजीज की आवाज में आपने सुना। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गाने को तैयार किया था। दोस्तों वैसे सावन अभी नहीं आया है लेकिन सावन की आहट आ रही है। गाने बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ऐसे बारिश वाले मौसम भी बारिश का है। और दोस्तों बातें हो रही हैं मोहम्मद अजीज की। अगर आपने अभी रेडियो ऑन किया है तो ध्यान से सुनिएगा, आज मोहम्मद अजीज के सारे गाने मैं आपको सुनाने वाली हूँ। बहुत सारे गाने जितने हो सकेंगे इस प्रोग्राम में पूरे के पूरे सुनाऊंगी। जी हाँ, मोहम्मद अजीज को सुरों का सरताज भी कहा जाता है। बताया जाता है कि वे सातवें सुर में भी गा सकते थे जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अजीज पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते थे और वहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। बचपन से ही अजीज को गाने का शौक था। वो मोहम्मद रफी के बहुत बड़े फैन थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। ये भी बहुत ही चौंकाने वाला सच है कि मोहम्मद अजीज ने मोहम्मद रफी को सुन सुनकर ही गाना सीखा और उन्होंने गायकी में कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं ली थी। और ये भी कमाल ही रहा कि वो दौर भी आया दोस्तों। जी हाँ, वो दौर भी आया जब मोहम्मद अजीज को मोहम्मद रफी का उत्तराधिकारी तक कहा जाने लगा। लेकिन अजीज हमेशा कहा करते थे कि मैं मोहम्मद रफी जैसा अगर 5% भी गा सका तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी।

खुद गर्ज फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज में। दोस्तों मोहम्मद अजीज अपने नाम की तरह हर दिल अजीज रहे। उस दौर के करीब करीब हर स्टार के लिए उन्होंने ऐसे गाने गाए जो उनकी पहचान ही बन गए, जैसे कि अमिताभ बच्चन का गाना खुदा गवाह और मर्द तांगे वाला, सनी देओल का सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, अनिल कपूर का माय नेम इज लखन, ऋषि कपूर पर फिल्माया गया आजकल याद कुछ और रहता नहीं, दिलीप साहब पर जो एक गाना फिल्माया गया था ए वतन तेरे लिए, इन गानों को जब भी हम सुनते हैं हमें याद आता है अच्छा इस एक्टर पर फिल्माया गया है। इतनी जबरदस्त पहचान थी उनके गानों की। अपने पूरे करियर में मोहम्मद अजीज ने करीब 20,000 गाने गाए जिनमें हर तरह के गीत शामिल हैं, सूफी रोमांटिक और भजन भी उन्होंने गाए हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा उड़िया और बंगाली भाषाओं के गानों को भी आवाज दी। एक फिल्म में वो नजर भी आए हैं, शायद अगर आप ओडिया भाषी हैं तो आपको याद होगा जागा हतारे पाथा में उन्होंने गाना भी गाया और दिखाई भी दिए हैं पर्दे पर। तो दोस्तों एक और गाना हो जाए।

0: दोस्तों पता तो टाइम का नहीं चलता है। जी हाँ, वक्त हो चला है मेरे जाने का। अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में आखिरी गाना मैंने आपको सुना दिया है सूर्या फिल्म से। आज मोहम्मद अजीज के जन्मदिन पर उन्हें हमने याद किया। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। बने रहे आकाशवाणी एफ एम गोल्ड के साथ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाई ताकाइची से सालाना सरबरा बातचीत की है। भारत और जापान ने मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें इक्तिसादी, सिक्योरिटी और तवानाई की यकीनी फरहमी, अद्वियात और एआई के शोबे शामिल हैं। अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली में आलमी दहशतगर्दी के सिलसिले में जामे कन्वेंशन की भारत की तजवीज़ की एक मरतबा फिर हिमायत की गई है। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से अकीदतमंदों का पहला जत्था रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो गई है। जुनूब मगरबी मानसून पूरी दिल्ली में फैल गया है, यह शुमाली और मगरबी रियासतों की जानिब मजीद आगे बढ़ रहा है। और फीफा आलमी कप में अमरीका ने 2002 के बाद से नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की है। बेल्जियम सेनेगल को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। भारत और जापान ने आज दवासाजी, मसनूई जहानत, एआई, इक्तिसादियात और तवानाई की सिक्योरिटी समेत कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान के वजीर आजम सनाई ताकाइची के साथ सालाना छोटी मीटिंग की। इस मौके पर फरीकैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तआवुन और इश्तराक को मुस्तहकम करने पर बातचीत की और उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आज के दौर में भरोसा और एतमाद सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत और जापान का शुमार दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में होता है और दोनों मुल्क आजादाना और खुले भारत बहरुल काइल को तरजीह देते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों मुल्क इक्तिसादी और तवानाई की सिक्योरिटी की अहमियत को बखूबी समझते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के शोबे में साझेदारी भारत और जापान के दरमियान तआवुन का सबसे ज्यादा अहम सुतून होगा।
2: कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
1: इससे कबल आज जापान के वज़ीर आज़म ताकाइची राष्ट्रपति भवन के अहाते में रस्मी इस्तकबाल दिया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। जापान के वज़ीर आज़म भारत के 3 रोजा दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची हैं। ये भारत का उनका पहला सरकारी दौरा है। वजारत खारजा ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के दरमियान खसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को मजीद आगे ले जाने के सिलसिले में एक अहम कदम है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि भारत और जापान के ताल्लुकात मुसलसल आला सतह के सियासी राबतों पर मबनी हैं। अभी हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान जापान के वज़ीर आज़म से बातचीत की थी। गुज़श्ता बरस नवंबर में जोहान्सबर्ग में G20 समिट के मौके पर भी दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई थी। बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दी के बारे में एक जामे कन्वेंशन बनाने की भारत की तवील अरसे से चली आ रही तजवीज़ की अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली में एक बार फिर हिमायत की गई है। दहशतगर्दी से निपटने की हिकमत अमली से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा की नवी जायजा मीटिंग के दौरान भारत की तजवीज़ को 140 मुल्कों की हिमायत से मंजूर किया गया, जिसमें मेम्बर मुल्कों पर जोर दिया गया है कि कन्वेंशन को कतई शक्ल देने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। कन्वेंशन की तजवीज़ भारत ने 30 साल पहले पेश की थी। अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि कानूनी खदुखाल पर आलमी सतह पर इत्तफाक राय न होने की वजह से दुनिया में दहशतगर्दी की रोकथाम की कोशिशें कमजोर हुई हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से निपटते वक्त दोहरा मयार नहीं अपनाया जाना चाहिए। भारत ने इस सिलसिले में अपने पुख्ता मौकिफ को दोहराया है कि किसी भी सूरत हाल में दहशतगर्दी को जायज करार नहीं दिया जा सकता और इस लानत को खत्म करने के लिए उसने जामे आलमी कार्रवाई पर जोर दिया है। अक्वामे मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक आलमी हिकमत अमली के नवे जायजे को इख्तियार किए जाने के दौरान अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करते हुए यूएन में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि दहशतगर्द दहशतगर्द होता है और इस बात पर जोर दिया कि झूठे जवाब या सियासी मसलहत पसंदी की आड़ में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें कमजोर नहीं हो सकती।
3: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बुनियादी कैंप से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 रोजा सालाना यात्रा सरकारी सतह पर कल से कश्मीर के दो रास्तों से शुरू होगी जो 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून पूरी दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ गुजरात के कुछ मजीद हिस्सों मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ गया है। इसी दौरान कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हुई जिससे शहर के रिहायशियों को गर्मी से कुछ राहत मिली। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी से लोगों को राहत मिली है और रियासत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई है। मानसून के रियासत में पहुंचने के बाद ऐसा हुआ है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: जुनूब मगरबी मानसून बाज़ाब्ता तौर पर मंगल को उत्तर प्रदेश पहुंच गया और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़श्ता 24 घंटे में औसत से शदीद बारिश दर्ज की गई जिससे गर्मी के तवील सिलसिले से लोगों को राहत मिली। सुल्तानपुर मुजफ्फरनगर बदायूं सहारनपुर और संभल में बहुत शदीद बारिश हुई जिससे कुछ इलाकों में मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए ताहम दिन का दर्ज हरारत नीचे आ गया। किसानों के लिए बारिश एक बड़ी राहत साबित हुई है क्योंकि धान की बुआई मुकर्रर वक्त से पहले ही पीछे चल रही है। IMD ने आज कई अजला में शदीद बारिश की पेशगोई की है और कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के मजीद आगे बढ़ने के लिए मौसम साजगार है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: हुकूमत ने भारत में व्हाट्सएप के जरिए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है। जराये ने बताया कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने की मेटा को हिदायत दी है। झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची में लोक भवन में वाटर फेरिस्तों की खसूसी जामे नजरसानी से मुतालिक फॉर्म को भरने और दस्तखत करने के बाद मुतालिका BLO के सुपुर्द किया। इस मौके पर आला चुनाव अफसर के रवि कुमार रांची के जिला चुनाव अफसर मंजुनाथ भजंतरी और दूसरे चुनाव एहलकार भी मौजूद थे। मरकजी हुकूमत ने समाजी सिक्योरिटी 2020 पर कोर्ट के नफाज के हिस्से के तौर पर EPF स्कीम 1952 की जगह मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड EPF स्कीम 2026 को नोटिफाई किया है। नई स्कीम के तहत EPF की लाजमी हिस्सेदारी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। फीफा आलमी कप में नॉकआउट मरहले में एक्स्ट्रा टाइम के बाद शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए बेल्जियम सेनेगल को 2-3 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। दूसरी जानिब मुआविन मेजबान अमरीका ने 2002 के बाद नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की। उसने बोस्निया हर्जेगोविना को 2-0 से हराया और प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गया। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान की अपनी हममनसब सनाई ताकाइची से सालाना सरबराह बातचीत की है। भारत और जापान ने मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं जिनमें इक्तिसादी सिक्योरिटी और तवानाई की यकीनी फराहमी अद्वियात और रियाई के शोबे शामिल हैं। अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली में आलमी दहशतगर्दी के सिलसिले में जामे कन्वेंशन की भारत की तजवीज की एक मरतबा फिर हिमायत की गई है। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से अकीदतमंदों का पहला जत्था रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो गई है। جنوب مغربی مانسون پوری دلی میں پھیل گیا ہے، یہ شمالی اور مغربی ریاستوں کی جانب مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ نے 2002 کے بعد سے نوک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی جیت درج کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
0: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Shri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enters round of 16 in extra time victory over Senegal. India-Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defense and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said mutual trust is the biggest asset in today's time and the India-Japan bilateral partnership has stood the test of time. He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both countries.
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: He stressed that both nations understand the importance of economic security and energy security. He added that technology partnership will be the most important pillar of India-Japan cooperation. Mr. Modi said to realize this vision, India and Japan have issued a joint statement in the field of AI.
2: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: The Prime Minister also informed that in the field of defense today, both nations have signed an agreement on the first co-development project between India and Japan.
2: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले

0: India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Sri Amarnath Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enter round of 16 in extra time victory over Senegal. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय अराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
3: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
4: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
5: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जीराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जीराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने

0: दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

करे मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे आप सांभळी रह्या छो 100.1 FM गोल्ड खरा सोना अने न्यूज ऑन AIR आ मोबाइल एप पर आपनो मनगमतो खरा सोना जो कार्यक्रम गीत गुर्जरी अने आजे आपनी साथे छे हूँ तरुलता करोडिया। तमाम मित्रों ने तरुलता करोडिया ना सस नेह नमस्कार।

आप सांभळी रह्या छो 100.1 FM गोल्ड खरा सोना कार्यक्रम एकदम खरा सोना जेवो गीत गुर्जरी अने गीत गुर्जरी कार्यक्रम में आपनी साथे छे तरुलता करोडिया। आपणे वात करी वरसादी मौसमी शाकभाजी फळो अने पाको विशे अने हवे वात करीए रंग बेरंगी फूलो विशे। तो कुदरतनी रंगोळी एटले रंग बेरंगी फूलो अने आ रंग बेरंगी फूलो पर उड़ता रंग बेरंगी पतंगिया अने भमराओ। मित्रों, माटीनी महेकमा सुगंध भड़े छे फूलोनी। तो आ मौसम मा थाय छे लीली। लीली एक खास फूल छे जे वरसादी मौसम मा जोवा मळतो होय छे। ए सिवाय मोगरो, गुलमोहर, कनेर, गलगोटो, जासूद, कदंब, जुई, पारिजात, बेला, सिरिश। मित्रों, आ बधा ज फूलो तमने वर्षा ऋतुमां देखाय छे। ए सिवाय कमळ पण घणा मोटा प्रमाणमां जोवा मळता होय छे अने वर्षा ऋतुमां मोटा प्रमाणमां घास उगी निकळतो होय छे अने आ घासमांथी ગણેશ દાદાને પ્રિય એવા દુર્વા પણ મળે છે।

मोर सोळे कळाए नृत्य करे छे पोतानी ढेलनी साथे। तो मित्रों, मोर सिवाय आ ऋतु में अपने चातक पक्षी ने खूब याद करता हो कारण के चातक वर्षा ऋतुनी काग डोड़े राह जोतो हो। चातक ए भारत तो रहतु पक्षी नहीं, भारत नो पक्षी नहीं, ए आफ्रिका थी जून महीना में भारत आवे छे। अने एवो एक लोकवायका छे के चातक पक्षी वरसाद ना सीधा टीपा जे पड़े ने एने ज पाणी तरीके ए पीवे छे। ए नदी के तळावनुं पाणी पीतो नथी एटले ए वर्षा ऋतुनी काग डोळे राह जोते होय छे। आ सिवाय टिटोड़ी जेटला ऊंचे माळो बांधी ईंडा मूके एना परथी ए अनुमान लगाड़ातो होय छे के वर्षा केवी थवानी छे, वर्षा केवी थशे। अने आ सिवाय ज्यारे वर्षा ऋतु आवे छे त्यारे मोटा प्रमाण में आज्ञाओ देखाय छे, आज्ञाओ झबूकी उठे छे कारण के ए एनी प्रजननी ऋतु छे। मित्रों, घणा पशु पक्षीओ अने जीवजंतुओनी आ प्रजननी ऋतु होय छे। आ सिवाय अळसिया सिवाय कान खजूरा, काचबा के पछी करचला, शंख, छीपला, माछली, मच्छर अने माखीनो प्रादुर्भाव खूब वधी जाय छे। सरडाओ खूब देखाय छे, गोकुळ गाय देखाय छे। अने मित्रों, आम अनेक जीवजंतुओ जे मात्र वर्षा ऋतुमां बहार निकळी आवे छे कारण के जमीनमां एमने जमीननी नीचे जेना दर होय छे एमां ऑक्सिजन ओछा प्रमाणमां पहोंचवाना कारणे घणा बधा जमीननी नीचे रहेनारा जीवजंतुओ पण आ ऋतुमां बहार आवी जता होय छे।

0: चार बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल

0: सुरक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा ने दोनों देशों के बीच परस्पर संबंध मजबूत बनाए हैं।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने तथा गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावारीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। निर्वाचन आयोग ने बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा कर दी। मतदान 30 जुलाई को होगा और मतगणना 3 अगस्त को होगी। बांकीपुर सीट भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण खाली हुई है, जबकि दतिया सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण खाली हुई। इसके अलावा मंजलपुर सीट भाजपा विधायक योगेश भाई नरदास पटेल के निधन के बाद खाली हुई है। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। सह मेजबान अमेरिका ने राउंड ऑफ 32 के मैच में आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से हरा दिया। वर्ष 2002 के बाद नॉकआउट चरण में अमेरिका की यह पहली जीत है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। ये सूचना हमें

उनकी उम्र करीब 30 वर्ष, रंग गोरा, इकहरा बदन और कद 5 फुट 2 इंच है तथा कंधे पर तिल के निशान हैं। वह 25 मार्च 2025 से अपने घर से बिना बताए अपने साथ चली गई है। प्रीति निवासी सिद्धनाथपुरी, मजरा, रोतापुर, शंकरपुर सराय, थाना गंगाघाट, जिला उन्नाव से है। उनके विषय में यदि आपके पास कोई सूचना या जानकारी है तो कृपया थाना गंगाघाट उन्नाव को सूचित करें। हरिओम निवासी गांव लोना, थाना कोच, जालौन, उत्तर प्रदेश से सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी आरती, जिनकी उम्र करीब 30 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच है, शरीर हष्टपुष्ट, रंग गेहुआ और चेहरा लंबूतरा है। वह अपने घर से अपने बेटे को लेकर बिना बताए चली गई है। अंतिम बार 13 मार्च 2026 को गांव रामपुरा, थाना खेड़की दौला, गुरुग्राम में देखा गया था। उनसे संबंधित सूचना थाना खेड़की दौला को दी जा सकती है। थाना खेड़की दौला से ये सूचना हमें मिली है। सुमन पत्नी बेनीवाल, जिनकी आयु 35 वर्ष, कद 5 फुट, शरीर हष्टपुष्ट, रंग सांवला, चेहरा गोल है, उनको अंतिम बार सेक्टर 83 गुरुग्राम में 14 जून 2026 रविवार को देखा गया है। सुमन का पता है निवासी पनकी, पावर हाउस, पानी की टंकी, कच्ची झोपड़ी, पंक बहादुर नगर, जिला कानपुर। उनसे संबंधित जानकारी के लिए थाना खेड़की दौला से संपर्क किया जा सकता है। ये सूचना हमें मिली है गांव भांगरौला, गुरुग्राम से। सुबोध कुमार सूचित करते हैं कि उनकी बेटी नंदनी, जिसकी उम्र 21 वर्ष, कद 5 फुट 7 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है, वह 13 मार्च 2026 से बिना बताए घर से चली गई है। नंदनी के बारे में कोई सूचना होने पर आप जानकारी थाना खेड़की दौला को भी दे सकते हैं। सतान सिंह गांव पुठरी कला, जिला बुलंदशहर से सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री अंजलि, जिसकी उम्र 19 वर्ष, रंग गोरा, चेहरा लंबूतरा, शरीर हष्टपुष्ट, कद 5 फुट 2 इंच है, वह 2 अप्रैल 2026 से गांव सिकंदरपुर गुरुग्राम से बिना बताए कहीं चली गई है। अंजलि के हाथ पर ओम का निशान है। सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए थाना खेड़की दौला हरियाणा से संपर्क किया जा सकता है। थाना खेड़की दौला गुरुग्राम से ही दूसरी सूचना मिली है कि पायल पुत्री मातादीन, उम्र 20 वर्ष, रंग गोरा, चेहरा गोल, शरीर तंदुरुस्त, कद 5 फुट 5 इंच, माथे पर तिल का निशान। सूचना देने वाले को उचित राशि दी जाएगी। अंतिम बार गांव खेड़की दौला गुरुग्राम सेक्टर 43 में देखा गया। इनसे संबंधित जानकारी थाना खेड़की दौला से प्राप्त की जा सकती है। ये सूचना हमें मिली है नीतू कुशवाहा के बारे में। नीतू की आयु 14 वर्ष, कद 5 फुट, शरीर दुबला पतला, रंग सांवला है। अंतिम बार इनको 9 जून 2026 को गांव ढोरका गुरुग्राम में देखा गया। अगर आप नीतू से संबंधित कोई सूचना या जानकारी रखते हैं तो थाना सेक्टर 10 गुरुग्राम से संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग। हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग। आवाज आ रही है ना?
1: बिल्कुल आ रही है, और सिर्फ हमें ही नहीं पूरे शहर को आ रही है।
0: परफेक्ट, तो हेडफोन्स एडजस्ट कर लीजिए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बिकॉज अगले कुछ मिनट सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बट एंटरटेनमेंट, इंस्पिरेशन और मस्ती का फुल पैकेज लेकर हम आ गए हैं।
1: एग्जैक्टली, वेदर यू आर ट्रैवलिंग, स्टडिंग, रिलैक्सिंग एट होम या बस चाय की चुस्कियों के साथ वक्त बिता रहे हैं, वेल, यू हैव लैंडेड एट द परफेक्ट फ्रीक्वेंसी।
0: नमस्कार, मैं हूँ श्रेया।
1: और मैं हूँ कर्मण्य, और आप सुन रहे हैं
0: युववाणी आकाशवाणी पर। आज के शो में बातें होंगी आज की, लोगों की, टेक्नोलॉजी की, और हाँ, एक खास गेस्ट के साथ एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन भी।
1: तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा लीजिए और साथ बने रहिए, क्योंकि हर सेगमेंट के साथ मिलेगा कुछ नया, कुछ यूजफुल और बहुत सारा फन।
0: जी, तो बढ़ते हैं कार्यक्रम के पहले गीत के साथ। गीत का नाम तुम ही देखो ना, फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास सेगमेंट आज की बात में। आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के 11 सालों की और कैसे इस इनिशिएटिव ने भारत की डिजिटल जर्नी को एक नई पहचान दी।
1: बिल्कुल श्रेया, 2015 में शुरू हुआ डिजिटल इंडिया मिशन का मकसद था टेक्नोलॉजी को हर नागरिक तक पहुंचाना और गवर्नमेंट सर्विसेज को और आसान बनाना।
0: वही कर्मण आज बैंकिंग हो, टिकट बुकिंग हो, ऑनलाइन क्लासेस हो या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, ज्यादातर काम मोबाइल से कुछ ही मिनट्स में हो जाता है।
1: और UPI ने तो पेमेंट सिस्टम ही बदल दिया। डिजी लॉकर, ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स और आधार इनेबल्ड सर्विसेज ने भी लोगों की जिंदगी काफी आसान बना दी। उम्मीद है आने वाले सालों में भारत डिजिटल इनोवेशन में और नए माइलस्टोन्स अचीव करेगा।
0: तो कर्मण, अभी मैं एक शायरी सुनाना चाहती हूँ।
1: अरे वाह, इरशाद इरशाद।
0: सुरों के आसमां का वो चमकता अजीज सितारा था, जिसकी आवाज का हर एक अंदाज दिलकश और प्यारा था। आज भी गूंजती है फिजा में लखन की वो तान, उनकी यादों से महक रहा है संगीत का सारा जहान।
1: क्या बात है श्रेया, मैं हिंट ले रहा हूँ आपकी इस खूबसूरत शायरी से कि आप एक खास शख्सियत के बारे में बात करने वाली हैं।
0: जी हाँ, आज मोहम्मद अजीज का जन्मदिन मनाया जाता है। इन्होंने अपनी प्यारी आवाज से 80 और 90 के दशक के गानों में सुर की चार चांद लगा दिए थे।
1: वही गाने जिन्हें हम आज भी लूप पर सुनते हैं, जिनके बिना हमारी गुड वाली प्लेलिस्ट अधूरी है।
0: वही तो, कैन यू बिलीव इट कि उन्होंने अपने करियर में 20,000 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड करे, और सिर्फ हिंदी ही नहीं बट बांग्ला, उड़िया और कई दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस में भी अपनी आवाज दी।
1: हाँ श्रेया, और उनकी आवाज इतनी पावरफुल थी कि उन्हें हाई पिच सॉन्ग्स का किंग माना जाता था। माय नेम इज लखन से लेकर प्यार हमारा अमर रहेगा जैसे एवरग्रीन सॉन्ग्स उन्हीं की तो देन है।
0: देखो, बातों बातों में मुझे वो गाना याद आ गया जिसे मैं कल रात गुनगुना रही थी। तो दोस्तों, आइए साथ मिलकर सुनते हैं गीत का नाम आपके आ जाने से, जिसे स्वर दिया है मोहम्मद अजीज ने फिल्म खुदगर्ज से।

0: तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक।
1: अच्छा श्रेया, हमारे साथ कुछ SSC की तैयारी कर रहे हैं, कुछ IBPS की और कोई UPSC की, तो तुम्हारे पास कोई टिप्स हैं क्या?
0: कर्मण्या, UPSC को लेकर एक बेहतरीन टिप सुनने जा रहे हैं हम इसी सेगमेंट में। एक बातचीत UPSC मेंटोर करण महंगी और संतोष द्विवेदी के बीच। प्रस्तुत है आप सभी के लिए बातचीत,
1: तो आइए साथ में सुनते हैं।
2: नमस्कार युवा साथियों, आज की मन से माइक्रोफोन तक के सेगमेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं करण महंगी जी, जो कि UPSC मेंटोर हैं। करण जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू सो मच।
2: जो युवा साथी हमें सुन रहे हैं, मैं उन सबके भी आप पे सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि UPSC प्रिपरेशन जो अपने आप में एक तपस्या है, क्या सही समय है कि जब उसे इस तैयारी में लगना चाहिए?
3: जी संतोष जी, मेरा मानना है कि ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि स्कूल तक तो आप एक क्लोज शेल में होते हैं, जो सब कुछ सीख रहे हैं, दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर जब आप कॉलेज में आते हैं तो आपको एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है। 3 साल के अंदर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मतलब आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप वहाँ पे फुल फ्लेश तरीके से एक्सपोजर लें, सीखें दुनिया कैसी चलती है, फिर उसके बाद इस प्रिपरेशन में आना चाहिए। क्योंकि जब तक आप दुनिया के बारे में जानेंगे नहीं, फिर आप इस एग्जाम में बैठ जाएंगे तो फिर से वापस उस क्लोज शेल में जाना, एक कमरे में बंद होकर पढ़ना, तो वो सही नहीं है।
2: जी करण जी, जैसे आपने कहा कि आप थोड़ा दुनिया को देखें, समझें, जानें, फिर इस तपस्या में आप कूदें। और तपस्या में बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर साल लाखों नए विद्यार्थी उसमें जुड़ते हैं। अगर हम अनुमानता माने तो 1000 सीट्स के आसपास का एक एवरेज है जिसमें बच्चे जाते हैं, और तैयारी करने वाले 12-15 लाख हर साल

0: अपियर होते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति ने मान लीजिए अब तय कर लिया कि उसे अब यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न उसके समक्ष आता है वो होता है कि विषय चयन, क्या जिस फील्ड में पढ़ता रहा है अभी तक वो उस विषय का चयन करे, या पढ़ाई के दौरान वो ये तय करे कि किस विषय में उसकी अधिक अभिरुचि है, कैसे करे?
1: देखिए, सबसे पहले मेरा मानना है कि आप यूपीएससी का सिलेबस देखें। हर साल यूपीएससी एक नोटिफिकेशन निकालता है, उसमें 30+ ऑप्शंस होते हैं, जो विषय होते हैं उसमें आप देख सकते हैं। एक एक ऑप्शन को, एक एक सब्जेक्ट को, विषय को आप पढ़ें, समझें उसकी गहराई क्या है, फिर आप उसमें रुचि देखें। तो देखिए, यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसे कहते हैं कि आपके भाई बंधु की तरह है, क्योंकि अगर आप इसको अंदर बाहर से नहीं समझेंगे तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। हमारे यूपीएससी में ट्रिनिटी का प्रिंसिपल होता है कि ऑप्शनल, एथिक्स एंड एसे। तो अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक रह जाएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो उस भाई को आपको समझना पड़ेगा, उसको मित्र बनाना पड़ेगा। तो पहले सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें, किसमें आपकी रुचि है, फिर दूसरा स्टेप ये रहेगा कि उसका कोई पढ़ाने के लिए कोई है व्यक्ति, कोई एक एक्सपर्ट आदमी है जिसमें आपको गाइड कर सके, फिर तीसरा देखिए आप उसके नोट्स, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कि नहीं है, फिर फोर्थ आप देखिए कि आप उसको टाइम स्लॉट में कवर अप कर पा रहे हैं। एक ऐसा विषय ना चुन लें जो बहुत बड़ा हो, जैसे हिस्ट्री कहते हैं कि काफी बड़ा ऑप्शन है, लोग उसको ले तो लेते हैं कि चलो स्टैटिक है कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसको रिग्रेट करते हैं। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप पहले देखें रुचि है, इंटरेस्ट है, फिर देखें कि यूपीएससी की क्या डिमांड्स आ रही है, मेरे को, मैं उसको फुलफिल कर पा रहा हूं, तभी आप उसको चुन के आगे बढ़े।
0: अच्छा करण जी, मैंने भी कई बार ये देखा है कि जब जब रिजल्ट आता है तो एक चलन सा चल पड़ता है कि कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भीड़ चलती है, जैसे आपने कहा कभी हिस्ट्री की तरफ, कभी पॉलिटिकल साइंस, तो जिस तरह का रिजल्ट आता है उस तरफ चल पड़ती है, और अगले साल फिर ये चलन बदल जाता है। इस चलन के हिसाब से तो मुझे लगता है कि विषय चयन ना हो, अपनी अभिरुचि के हिसाब से हो। अच्छा, एक दूसरी और विषय, इसमें कोचिंग का बहुत बड़ा रोल आजकल देखने को मिल रहा है, कोचिंग का चयन भी कैसे करें व्यक्ति, कोचिंग का कितना रोल है और क्या कोचिंग अनिवार्य है?
1: देखिए, जैसे चंद्रगुप्त को भी एक चाणक्य की जरूरत पड़ी थी, तो वैसे ही एक मार्गदर्शक की आपको जरूरत पड़ती है कि आपको इस एग्जाम में फील्ड में आगे कैसे बढ़ना है। तो मेरा मानना यह है कि कोचिंग या मेंटरशिप, जो अगर आपको एक व्यक्ति मिल जाए जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि देखिए आजकल सारे रिसोर्सेज मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, यूट्यूब पे जाइए या सोशल मीडिया पे जाइए या कहीं भी आप गूगल पे करिए, आपको सब कुछ मिल सकता है। बट आपको पढ़ना कैसे है, किस दायरे में पढ़ना है, क्या लिमिट्स रहनी चाहिए, किस एंगल से पढ़ना है, कैसे पेपर सॉल्व करना है, तो वो उसके लिए एक गाइड होना जरूरी है। तो कोचिंग जो है आपको उसमें हेल्प कर सकती है, एक हेल्पिंग एड की तरह ले सकते हैं। देखिए, यूपीएससी की डिमांड बहुत क्लियर है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि जितने हमारे सरकारी संस्था एनसीईआरटी हो गई, या हमारे ऑल इंडिया रेडियो के ब्रॉडकास्ट हो गए, या हमारे पीआईबी के ब्रॉडकास्ट हो गए, तो वो सबसे बेहतर रिसोर्सेज माने जाते हैं। तो यूपीएससी कहता है कि पहले उन्हें फॉलो करें। कोचिंग एक एड की तरह काम कर सकता है, आपको दिशा दिखा सकता है, लेकिन पढ़ना, तपस्या करना और उसके अंदर आपको झिझोड़ देना, अपने अंदर से गोल्ड कैसे निकालना है, सोना कैसे निकालना है, वो आपको ही करना पड़ेगा।
0: जैसे करण जी ने कहा कि आप विश्वसनीय स्रोतों की तरफ जाएं, जैसे पीआईबी है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, इनके जो सोशल मीडिया चैनल्स, इन पे आप जाएं तो आपको विश्वसनीय जानकारी मिलेगी और आप भटकाव से बचेंगे। करण जी, हमें और आपको लाखों करोड़ों युवा इस समय सुन रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कोई रियल लाइफ इंसिडेंट साझा करें जिसमें कि कोई व्यक्ति एकदम मीडियोकर था पढ़ाई लिखाई में, पर आगे चल करके उसे सफलता अर्जित की।
1: मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस फील्ड में मीडियोकर रहे, मतलब कॉलेज में, स्कूल में उनके 50% 60% मार्क्स भी नहीं आए हैं। एक तो स्वीटी उपाध्याय मैम ही आई थी, उनका आपने लास्ट टाइम देखा ही था आकाशवाणी पे, उनके खुद ही रिवील किया था कि मेरे कितने मार्क्स हैं ग्रेजुएशन के अंदर, फिर भी उन्होंने यूपीपीसीएस क्रैक किया। मेरा एक स्टूडेंट है जो असम में एसडीएम है अभी, उनके भी मार्क्स बहुत कम थे, वो बहुत ही एक ऐसी फैमिली से आते हैं जो इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उनका फाउंडेशन भी इतना स्ट्रांग नहीं था, बट स्टिल उन्होंने बहुत मेहनत करी, आज वो एसडीएम है, एपीएससी उन्होंने क्रैक कर लिया, यूपीएससी की फिर से वो तैयारी कर रहे हैं साथ साथ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक बहुत फेमस आईपीएस ऑफिसर भी हैं, अभी इस साल इनका चयन हुआ है, उनका भी यही था कि कॉलेज में उनके मार्क्स 55% मार्क्स थे। तो यूपीएससी कभी क्राइटेरिया नहीं देता कि आप टॉपर्स यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस है, इसमें हर कोई इंसान अगर अच्छे से पढ़े, मनन करें, चयन करें, तो सिलेक्शन जरूर होगा उसका।
0: जी बिल्कुल, आप मनन करें, चिंतन करें और आपका चयन अवश्य होगा, ये मूल मंत्र है करण जी का। मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे करण जी कि जैसे कि आपके पास मेंटोरशिप के लिए अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं
1: जी,
0: कोई साइंस स्ट्रीम का होगा, कोई कॉमर्स स्ट्रीम का होगा, कोई ह्यूमैनिटीज का भी होगा, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं आप, मतलब किस तरह की स्ट्रीम के बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होती है आपकी?
1: देखिए, हर बच्चा अलग दिमाग लेके पैदा हुआ है, मेरा ये मानना है। तो मैं पहले उस बच्चे को समझता हूँ कि वो किस एरिया में स्ट्रांग है, किस फील्ड में स्ट्रांग है, फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। जैसे एक साइंस का बच्चा है तो उसका एनालिटिकल स्किल ज्यादा अच्छा होगा, तो पहले मैं उनको एनालिसिस वाले सब्जेक्ट्स, जैसे ज्योग्राफी हो गया या साइंस वाले सब्जेक्ट्स पहले कराता था कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, फिर धीरे धीरे स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे ला जाता है। अब एक आर्ट्स फैकल्टी का व्यक्ति है तो वो हिस्ट्री में स्ट्रांग होगा, पॉलिटी में स्ट्रांग होगा, लेकिन इनके अंदर भी देखिए यूपीएससी की डिमांड बहुत वर्सेटाइल होती जा रही है आजकल। उसमें क्या है कि रट्टाफिकेशन वाले बच्चे नहीं चाहिए, उनको समझने वाले बच्चे भी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले। तो दोनों को, हर एक व्यक्ति को उस लेवल प्लेइंग फील्ड पे लेके आना कि वो कॉन्सेप्ट भी समझे, फैक्ट्स भी रटे और आगे बढ़े। भारत एक विकसित भारत बनने जा रहा है 2047 में, उसकी डिमांड करेगी कि कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो और फैक्ट्स भी हमें पकड़ रखे, कि कल को हम कहीं बाहर जाते, से आईएफएस ऑफिसर है कहीं बाहर, भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि

0: इसमें क्या चल रहा है, तो उसके लिए उसको फैक्ट्स भी पता होने चाहिए और कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि डिप्लोमेसी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो यूपीएससी की डिमांड ये, तो दोनों एरियाज पे यूपीएससी टेस्ट करता है, तो दोनों माइंडसेट डेवलप करने पड़ते हैं इस एग्जाम के लिए, उसका मिश्रण ही आपको आगे ले जा सकता है।
1: जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पहले भारत को बेहतर तरीके से जानें, यहाँ की कला संस्कृति साहित्य सबको समझें, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को समझें, तब जाकर के एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप कर पाएंगे। करण जी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, जैसे यूपीएससी नेशनल लेवल पर सिलेक्शन करती है, ऐसे स्टेट लेवल पर भी सिविल सर्विसेज के लिए पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, तो एक व्यक्ति एक समय में क्या दोनों के लिए तैयारी कर सकता है या उसे एक बार में एक ही पे फोकस करना चाहिए? हमारे बहुत सारे श्रोता मुझे लगता है इस बात को जानना चाह रहे हैं।
0: जी, मेरा मानना बिल्कुल ये है कि आपको यूपीएससी करना तो प्लान बी प्लान सी प्लान डी रेडी होना चाहिए। जैसे मैं हर व्यक्ति जो भी मेरे साथ जुड़ता है, एस्पिरेंट जुड़ता है, मैं उसको हमेशा प्लान बी प्लान सी प्लान डी की तैयारी साथ कराता हूं, तो प्लान बी में हमेशा मेरा स्टेट पीसीएस रहता है। देखिए, 70-80% जो डिमांड है स्टेट पीसीएस की वो एकदम यूपीएससी की, 20-30% डिमांड अलग होती है। हाँ, यहाँ पे फैक्ट्स तैयार ज्यादा करने पड़ते हैं जो कि आपको यूपीएससी में भी काम आते हैं, तो वो भी आप साथ साथ क्रैक कर सकते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे एस्पिरेंट्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यूपीएससी नहीं निकाल पाए लेकिन पहले दूसरे अटेम्प्ट में स्टेट पीसीएस क्रैक करके बैठे, असम में, ओडिशा में, तमिलनाडु में, आंध्र, यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर। प्लान भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: करण जी, चलते चलते मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जो बच्चे अभी कॉलेजेस में और जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना शुरू करना चाहते हैं, एकदम जीरो से शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा, जो कॉलेज में एस्पिरेंट्स हैं, आप पहले कॉलेज लाइफ जिए, उसको एंजॉय करें, एक्सप्लोर करें। जब आप आखिरी साल में हो तो तब एक यूपीएससी का सिलेबस जरूर निकालें, प्रिंट आउट करके अपनी दीवार पे से चिपकाएं और पढ़ें कि क्या है इसमें, पेपर वन में क्या है, टू में क्या है, थ्री फोर ऑप्शनल कैसे होते हैं, सी सेट क्या होता है, पहले समझिए इसे कि गेम क्या है। कहते हैं ना कि पहले गेम खेलने से पहले गेम को समझिए, उसके नियम समझिए, पहले नियम समझिए कि क्या चाहिए, कितने मार्क्स से कट ऑफ हो सकती है, क्या मैं क्रैक कर सकता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ सकता हूं, क्या मेरी वीकनेस है। एक स्वॉट एनालिसिस, मैं हर एस्पिरेंट को बोलता हूं अपना स्वॉट एनालिसिस करिए। स्वॉट में क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। आपको एक पेज पे लिखना होगा कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या किसमें लैक कर रहा हूं। तो पहले उन एरियाज जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं, पहले उस पे काम करें। मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मैं इंटरेस्ट के लिए डेवलप करता हूं, क्योंकि जब आपके वो चीजें सॉर्ट हो जाएंगी जो मैंने पढ़ी है, जो मेरे को इंटरेस्ट है, तो वो आप ऑटोमेटिकली आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि वीक पॉइंट्स को ऑटोमेटिकली कवर अप कर लेंगे। तो सिलेबस सबसे पहला, फिर साथ साथ ऑप्शनल का चयन, जो सब सब्जेक्ट की हमने बात करी शुरुआत में, फिर उसके बाद आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या टाइम टेबल शेड्यूल आपको सेटअप करना पड़ेगा। नहीं है तो एक गाइड लीजिए, वो आपको जरूर हेल्प करेगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल जमाना है, आपको हर चीज इंटरनेट में मिल जाती है, AI टूल्स का जमाना है और आप सीख सकते हैं कैसे आगे बढ़ना है। बट ये है कि दूसरों की गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है, आप अपनी जर्नी को एक्सटेंड ना करें, क्योंकि ये एक तरह से दलदल है। मैं जो मानता हूं 5-10 साल इसमें लोग बिता देते हैं फिर भी कुछ नहीं मिलता। मैं सभी को ये कहूंगा कि दूसरों की गलती से जरूर सीखें, एक्सपीरियंसेस लें, लेकिन टॉपर टॉक्स में फंस ना जाएं, सारा दिन वही बैठ के देख रहे हैं। पहले एक्सपीरियंसेस लें, अपनी गलतियों को देखें कि हाँ मेरी ये गलती है, ये मेरी मिस्टेक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना यूपीएससी में कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो वहां पे पैराग्राफ या पैसेजेस आते हैं, तो वैसे ही टॉपर्स टॉक में आप सिर्फ उनसे बुनियादी बातें सीखें कि क्या नहीं करना है, क्या करना है तो उसका सिर्फ एक ही नाम है, वो है परिश्रम। और जीवन में पढ़ाई का और पढ़ाई में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। करण जी, आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे युवा श्रोताओं के लिए इतनी बहुमूल्य जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऑल इंडिया रेडियो का, संतोष जी आपका पर्सनली आपने मुझे बुलाया और मैं अपने जो विषय है, मतलब अपनी जो नॉलेज है शेयर कर सका। आई होप सबको इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू अगेन।
2: क्या बात है, कितना थॉटफुल एंड इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन था ये। आई एम श्योर सारे यूथ के लिए ये काफी मोटिवेशनल रहा होगा।
3: बिल्कुल करमन, तो आइए बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। गीत का नाम हैरा हूं मैं आपकी जुल्फों को देखकर, जिसे स्वर दिया है अनुराधा और शब्बीर खान ने फिल्म जवाब हम देंगे से।
4: तुम जैसा कोई साथी अगर

0: तो आइए अब हम चलते हैं हमारे वीकली सेगमेंट की ओर।
1: ये इंटरनेट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक स्कैम्स का दरिया है और सेफ्टी से निकल के जाना है।
0: लेकिन हम है ना, आज अपने वीकली सेगमेंट में हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में।
1: लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि ना ही केवल हम बात करेंगे स्कैमर्स के ऑब्सेशन की, बल्कि ये भी जानेंगे कि कैसे आप इससे बच सकते हैं।
0: बट इमेजिन करिए कि आप अपने रूम में बैठे हैं और अचानक किसी अननोन नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आ जाती है, और कॉल उठाते ही सामने कोई नहीं बल्कि एक ऐसी ऑब्जेक्शनेबल वीडियो चल रही होती है जिससे आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं।
1: उसके बाद स्कैमर्स उस कॉल का स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेकर आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि वो आपकी पिक्चर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को दिखाएंगे, इसकी धमकी देते हैं। और बिलीव मी, लोग घबरा कर जो वो कहते हैं वो करने को भी तैयार हो जाते हैं।
0: लेकिन दोस्तों, सबसे पहला रूल है डोंट पैनिक।
1: जी हाँ, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो पैसे बिल्कुल मत भेजिएगा। सबसे पहले साइबर कंप्लेन पोर्टल पर कॉल कीजिए, जिसका नंबर है 1930, या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को कॉन्टैक्ट करें।
0: एंड साथ ही में व्हाट्सएप के कॉल सेक्शन में साइलेंस अननोन कॉलर्स फीचर्स को भी ऑन रखिए। एक छोटी सी सेटिंग आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है।
1: रिमेम्बर, डिजिटल दुनिया में स्मार्ट होना सिर्फ फास्ट इंटरनेट से नहीं, सेफ इंटरनेट से होता है।
0: सो स्टे अलर्ट, स्टे अवेयर, बिकॉज साइबर सेफ्टी स्टार्ट्स विद यू।
1: जी, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले गाने की तरफ, फिल्म गुलाबी से। गाने का नाम जहाल मिस्किन।

0: तो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट क्विक बस की तरफ।
1: श्रेया, सोचो अगर पूरे दिन की इम्पोर्टेंट अपडेट्स सिर्फ कुछ ही मिनट्स में मिल जाए, कितना मजा आ जाएगा ना।
0: वेल विश ग्रांटेड। वेलकम टू क्विक बस, जहां न्यूज है क्विक, कन्वर्सेशंस है फन और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑन पॉइंट।
1: सो लेट्स नॉट वेस्ट अ सिंगल सेकंड, बिकॉज द क्लॉक इज टिकिंग एंड द हेडलाइंस आर वेटिंग।
0: सबसे पहले क्रिकेट। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस का उत्साह बढ़ता जा रहा है।
1: टीम इंडिया से भी काफी उम्मीदें हैं। सीनियर प्लेयर्स के अनुभव और यंग टैलेंट के जोश का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। हर मैच पॉइंट्स टेबल के लिए महत्वपूर्ण होगा और फैंस को एक रोमांचक टूर्नामेंट की उम्मीद है।
0: और हाँ, क्रिकेट फैंस के लिए एक एक्साइटिंग अपडेट। आज रात 10:30 विमेंस T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा,
1: तो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जो टीम जीतेगी वो फाइनल का टिकट पक्का करेगी।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हर दिन हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है,
1: लेकिन एक्सपर्ट्स की सलाह है कि AI का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें। किसी भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना और पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है।
0: जी, और अब एक पॉजिटिव स्पोर्ट्स अपडेट।
1: एथलेटिक्स, बैडमिंटन, चेस और शूटिंग में भारतीय खिलाड़ी लगातार देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ग्रास रूट्स लेवल पर भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार देखने को मिल रहा है।

0: अगर आप भी देश और दुनिया की ऐसी रोचक जानकारियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो बने रहिए आकाशवाणी के युववाणी प्रोग्राम के साथ।
1: तो चलिए अब बढ़ते हैं एक खूबसूरत गीत की तरफ। गीत का नाम फिर ले आया दिल, जिसे स्वर दिया है रेखा भारद्वाज ने फिल्म बर्फी से।

0: अब चलते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट हिस्ट्री की तरफ।
1: आज यानी 2 जुलाई के दिन हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो स्पोर्ट्स दुनिया के अनसंग हीरोज को डेडिकेट किया गया है।
2: बिल्कुल श्रेया, आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों के नाम है जो स्टेडियम के बाहर रहकर भी हार जीत की कहानी हम तक पहुंचाते हैं।
1: इस दिन की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन यानी AIPA की फाउंडेशन को याद करते हुए की गई थी। इसका मकसद है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन को सैल्यूट करना।
2: और वैसे देखा जाए तो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सिर्फ स्कोर नहीं बताता, वो प्लेयर्स की जर्नी, उनकी मेहनत, इमोशंस और बिहाइंड द सीन स्टोरीज को भी ऑडियंस तक लेकर आता है।
1: अगर भारत की बात करें कर्मण्या, तो हर्षा भोगले का नाम सबसे पहले याद आता है। क्रिकेट की उनकी नॉलेज और सिंपल प्रेजेंटेशन स्टाइल ने उन्हें हर जनरेशन का फेवरेट बना दिया है।
2: बिल्कुल, और इंटरनेशनल लेवल पर जॉन आर्लट का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी कमेंट्री और स्पोर्ट्स राइटिंग ने क्रिकेट जर्नलिज्म को एक अलग पहचान दी है। आज भी उनके काम को लोग इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का सफर अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया।
1: उम्मीद है आज की बातें आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में कुछ नए ख्याल जरूर छोड़ गई होंगी।
2: मैं हूं कर्मण्य।
1: और मैं हूं श्रेया।
2: मिलते हैं फिर एक नए दिन, नए जज्बे और नए किस्सों के साथ।
1: तब तक खुश रहिए,
2: सीखते रहिए।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर पर शाम के 5 बजने को है। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची ने कहा कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाईची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से जारी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया कि वे भारत द्वारा 3 दशक से पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के तिरुपति में किए गए राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के अनुरूप था। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई परियोजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजुलपुर में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा की। मतदान 30 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़े कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कथित तौर पर अवैध भूमि हड़पने की गतिविधियों में शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन की विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलिथीन लाओ चाय पाओ नामक एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits.
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
3: Earlier in the day, Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart, Sanai Takaichi, in New Delhi. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, "Mutual trust is the biggest asset in today's time, and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time." He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today, and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both countries.
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
3: The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal today said that investments have emerged as a key driver of India's strategic partnership with Japan and are expected to further strengthen bilateral ties. Addressing the Indo-Japan Strategic Dialogue on Shaping the Asian Century, organized by a private television channel, Mr. Goyal said opportunities are opening up for India's skilled workforce, while the government's focus remains on ensuring equitable development for all under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. The Election Commission today announced the schedule for by-elections to 3 Legislative Assembly constituencies across Bankipur in Bihar, Datia in Madhya Pradesh and Manjalpur in Gujarat. The polling will take place on 30th of this month and the counting of votes will be conducted on the 3rd of next month. Indian Railways has registered a 4% growth in freight in June this year as compared to the corresponding month last year. The Ministry of Railways said that railways loaded over 142 million tons of freight during last month. It added that railways has also registered a steady growth in passenger traffic in June this year. Furthermore, the number of Amrit Bharat train services in the country has reached 72, with 4 new services inaugurated during June this year. Meanwhile, the number of Vande Bharat services has increased to 164, including the recently introduced Vande Bharat sleeper service between Howrah and Kamakhya. The Ministry of Women and Child Development invited nominations for the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar Awards 2026 to recognize the extraordinary achievements of children aged 5 to 18 years. The last date for submitting applications is 31st of this month. The ministry said that nominations can be made through the online portal awards.gov.in. Governor of Bihar Lieutenant General Retired Syed Atta Hasnain and Minister of State for External Affairs Pavitra Margarita will visit Iran tomorrow to attend the funeral ceremony of late Supreme of Iran Grand Ayatollah Syed Ali Khamenei. Ministry of External Affairs said the high-level representation in the ceremony underscores the importance of civilizational ties, including people-to-people connection between the two countries, providing a robust foundation to political and economic engagements. And that is the end of this news bulletin.
0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी।

अभी आप सुन रहे थे रंगीला मारा बालमा अंगूठी का नगीना। बहुत ही प्यारा लोकगीत था ये और कलाकार थी मंजू शर्मा और अतुल भाई। और अब हमारी अगली कलाकार हैं अनुराधा शर्मा। आइए सुनते हैं इनसे प्यारा सा लोकगीत।

कुसुम बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे अनुराधा शर्मा की आवाज में ये लोकगीत सासू मुझे बुलावे री मैं तो सास रे ना जाऊं, और अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं वीना ढिल्लौर और उनकी सखियों की आवाज में ये लोकगीत।

0: कुसुम बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे वीना ढिल्लौर उनकी सखियों की आवाज में ये लोकगीत।
1: और अब बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं जयप्रकाश शर्मा से एक और लोकगीत। ये क्या कहना चाहते हैं अपने गांव के बारे में।

0: जमुना किनारे मेरो गांव सांवरे आई जइयो, ये बहुत ही प्यारा सा लोकगीत सुना जयप्रकाश शर्मा की आवाज में।
1: और कुसुम बहन, इसी लोकगीत के साथ आज का हमारा लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोकरंजनी यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
0: नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारासर।

0: अभी आप लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं खेल और खिलाड़ियों से जुड़ा आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मेरे साथ हैं प्रेरणा शर्मा। नमस्कार प्रेरणा।
3: नमस्कार श्रोताओं।
2: आज खेल पत्रकारिता दिवस है तो देश और दुनिया के सभी खेल पत्रकारों को बधाई। और आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे फीफा विश्व कप के मुकाबलों की
3: और साथ ही बात होगी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल की, जहां इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए आमने सामने होंगी। इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले का हाल भी जानेंगे।
2: साथ ही बात होगी विंबलडन टेनिस की और दिल्ली प्रीमियर लीग की, जिसका बीती रात कल ऑक्शन हुआ है और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शाहिद आजमी खास रिपोर्ट पेश करेंगे।
3: और साथ ही बात करेंगे कनाडा ओपन बैडमिंटन, यूनाइटेड स्टेट्स मैच टेबल टेनिस की भी और रहेंगे कुछ अन्य खेल समाचार।
2: तो आइए प्रेरणा शुरुआत करते हैं फीफा विश्व कप की, और जहां रोमांच शिखर पर पहुंच चुका है और राउंड ऑफ 32 के मुकाबले बेहद जबरदस्त, दमदार और रोमांचक हो रहे हैं।

0: सिलसिला जारी है। बड़ी बड़ी टीमों को साग बचाने के लिए पूरा दमखम झोंकना पड़ रहा है। बेल्जियम की गिनती मजबूत टीमों में होती है, लेकिन इस फीफा विश्व कप में टीम सही लय में नहीं दिख रही है। अफ्रीकी छुपे रुस्तम माने जाने वाली सेनेगल की टीम के खिलाफ 85वीं मिनट तक बेल्जियम 2 गोलों से पिछड़ रही थी, लेकिन अगले लगभग 3 मिनट के अंतराल में बेल्जियम ने 2 गोलों से बराबरी कर ली और फिर अतिरिक्त समय तक खिंचे मुकाबले के इंजरी टाइम में पेनल्टी से हुए गोल के साथ बेल्जियम की नैया राउंड ऑफ 32 से पार लग गई। बेल्जियम ने यह मुकाबला 3-2 से जीता। यह अभी तक इस विश्व कप का सबसे उतार चढ़ाव भरा मुकाबला रहा। सेनेगल ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख दिखाया। 25वें मिनट में हबीब डियारा ने सेनेगल को भड़क दिलाई। मध्यांतर के बाद मैच के 51वें मिनट में इस्माइल असार ने अकेले दम पर गोल कर बढ़त को 2-0 कर दिया।
1: Here they go here with Ismaïla Sarr. Belgium, this one's right into the path of Ismaïla Sarr.
0: सेनेगल के प्रयासों से 2 बार गेंद गोल पोस्ट से टकरा कर रह गई, वरना उसकी बढ़त और भी मजबूत होती। ऐसा लग रहा था कि अब तो उलटफेर तय है, लेकिन बेल्जियम ने अंतिम क्षणों में वापसी कर ली। बेल्जियम के स्टार रोमेलो लुकाकू ने 86वें मिनट में गोल कर अंतर 1-2 कर दिया।
1: Lukaku keeps a near post finish. Brilliant touch over.
0: और लगभग 3 मिनट बाद योरी टिलेमांस ने हेडर से बराबरी दिला दी।
1: In from Trossard. Oh, Mori Jao came for it. Wow! In a flash, Belgium are back. Physical beating in there. It doesn't matter. He's gonna.
0: अतिरिक्त समय में जब मुकाबला पेनल्टी शूटआउट की ओर बढ़ रहा था, तब वीडियो समीक्षा यानी वीआर तकनीक के परीक्षण के बाद रेफरी ने बेल्जियम को पेनल्टी अवार्ड कर दी। सेनेगल ने फैसले का कड़ा विरोध भी किया। 125वें मिनट में टिलेमांस ने पेनल्टी को गोल में बदलकर बेल्जियम को रोमांचक जीत दिला दी।
1: It was like a training park penalty, like he's done so many times before. And it is over. From the brink to the next round.
0: अब बेल्जियम की टक्कर सह मेजबान अमेरिका से होगी। लगता है फीफा विश्व कप की मेजबानी अमेरिका को खूब रास आ रही है। सहमेजबान कनाडा और मेक्सिको के बाद यूएसए ने भी राउंड ऑफ 16 यानी प्री क्वार्टर में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका ने अंतिम 16 में प्रवेश के लिए 24 साल के इंतजार को समाप्त किया। बोलेगन और टिलमैन ने गोल किए। सैन फ्रांसिस्को में फोलोरिन बोलेगन ने हाफ टाइम से पहले गोल कर अमेरिका को शुरुआती बढ़त दिलाई थी। यह बोलेगन का इस विश्व कप में 3रा गोल रहा। टीम ने गेंद प्रतिद्वंदी खिलाड़ी से अपने कब्जे में ली और टिलमैन को बढ़ा दी, जिन्होंने बॉक्स में बोलेगन को सटीक पास दिया, जिन्होंने लेफ्ट फुट से गेंद को गोल में उतार दिया।
1: Balogun's there. No one else is McKinney.
2: With a little flick, Tillman looking for Balogun. It might fall for Balogun.
0: अमेरिका की टीम का पलड़ा भारी था। बोलेगन और क्रिस्टियन पुलिसिच के 2 गोल अमान्य भी किए गए थे। दोनों गोल ऑफसाइड करार दिए गए। बोस्निया के गोलकीपर मैट फ्रिज ने कई अच्छे बचाव भी किए थे। ऐसे में 1-0 की बढ़त सुरक्षित नहीं लग रही थी। कोच मॉरिसियो पोचेटिनो की टीम ने अपने घरेलू दर्शकों के बीच लगातार हमले बोले। मैकेनी और टिलमैन ने हमलों को पैनी धार दी। किसी यूरोपियन टीम के खिलाफ यह अमेरिका की 10 हार के बाद पहली जीत है। अमेरिका ने 2002 के ग्रुप चरण में पुर्तगाल को हराया था। उसके बाद विश्व कप के 13 मैचों से यूरोपियन टीम के खिलाफ उसे जीत नहीं मिली थी। इस मुकाबले में विजय के बावजूद अमेरिका को मैच में एक झटका भी लगा, जब उसके स्टार बोलेगन को प्रतिद्वंदी खिलाड़ी तारिक मोगेरमोविच को टैकल करते समय हुए फाउल के लिए रेफरी ने रेड कार्ड दे दिया। अब अमेरिका की टक्कर बेल्जियम से होनी है। ऐसे में 64वें मिनट में मिला रेड कार्ड अमेरिका को अगले मैच में

0: भारी पड़ सकता है। ये वही बोलेगन है जिन्होंने पराग्वे के खिलाफ 2 गोल किए थे। लगभग 26 मिनट अमेरिका को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। 1 खिलाड़ी कम होने के बावजूद भी अमेरिका ने बढ़त मजबूत करने के प्रयास जारी रखे और बोस्निया की बराबरी के प्रयासों को भी टाला। 82वें मिनट में अमेरिका ने जीत सुनिश्चित कर ली जब टिलमैन ने फ्री किक ली और गेंद लहराती हुई गोल पोस्ट के जाल में जा टकराई।
1: To seal the man looking to get down to his right hand team. Now to deal with going a man down and getting through to the next round.
0: 2-0 की बढ़त के बाद मेजबान दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अमेरिका की ये विश्व कप के नॉकआउट में दूसरी जीत है। इससे पहले 2002 में मेक्सिको को हराया था। बोस्निया के लिए विश्व कप यादगार रहा जिसे अपने दूसरे विश्व कप में पहली बार नॉकआउट में प्रवेश किया, कतर को हराया और कनाडा से ड्रॉ खेला। बात इंग्लैंड और डीआर कांगो के मैच की करें तो इंग्लैंड के लिए कप्तान हैरी केन सुपरस्टार हैं और अपने इसी रुतबे को वो कायम रखे हैं। हैरी केन ने डीआर कांगो के खिलाफ 2-1 की जीत में टीम के दोनों गोल किए। इंग्लैंड ने राउंड ऑफ 32 की इस जीत के बाद राहत की सांस ली होगी क्योंकि 75वें मिनट से पहले तो 1 गोल से पिछड़ने के समय टीम के खिलाड़ियों का दम फूलता सा नजर आ रहा था। मैच की शुरुआत में ही कांगो के ब्रायन सिबेंगा ने काउंटर अटैक पर 7वें मिनट में गोल कर इंग्लैंड की रक्षा पंक्ति को छिन्न बिन्न कर दिया था। कप्तान चांसिल ने गोल करने में असिस्ट किया था। गोल करने के बाद सिपेंगा ने खुशी में कलाबाजी लगाकर कैमरून के रोजर मिल्ला का जश्न यादों में ताजा कर दिया। 1990 के विश्व कप में कैमरून के रोजर मिल्ला गोल करने के बाद कॉर्नर किक के पास जाकर डांस करते थे और इस विश्व कप में सिपेंगा ने समरसेंट लगाकर अपनी खुशी का बेहतरीन अंदाज में इजहार किया। दरअसल इस विश्व कप में अफ्रीकी टीमें अच्छी छाप छोड़ रही हैं। कांगो की टीम हार गई लेकिन फुटबॉल प्रेमियों को दिल उसने अपने मजबूत रक्षण से जरूर जीते होंगे। उनके गोलकीपर लियोनल मपासी ने पहले हाफ में कई बचाव कर इंग्लैंड को बराबरी से रोका। ये तो इंग्लैंड के पास हैरी केन जैसे खिलाड़ी हैं जो दबाव के बीच भी निखरने का हुनर जानते हैं। बेशक जूड बेलिंगम और मार्क रशफोर्ड ने भी अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन जीत का सहरा तो हैरी केन के सिर ही बंधा। 75वें मिनट में हैरी केन ने बराबरी दिलाई जब सब्स्टिट्यूट एंथोनी गॉर्डन ने बाएं ओर से शानदार क्रॉस फेंका और केन ने दमदार हेडर से गोल कर दिया। बराबरी के बाद तो इंग्लैंड की टीम में जैसे नई ऊर्जा भर गई। टीम ने दोनों फ्लैंकों से लगातार दबाव बनाए रखा और 86वें मिनट में पेनल्टी बॉक्स के ठीक बाहर हैरी केन को गेंद मिली और उन्होंने एक टच में दाएं पांव से जोरदार शॉट लगाकर दमदार गोल कर दिया।
1: His hips around him, strikes it with venom, and that is one of the best goals and one of the most important goals.
0: हैरी केन वो नाम है जो खेल जगत में इंग्लैंड का मान बढ़ाता रहा है। 50-60 के दशक में ब्रिटिश एथलीट हैरी केन रहे हैं, तब तो इस स्टार फुटबॉलर हैरी केन का जन्म भी नहीं हुआ था। फुटबॉलर हैरी केन के लिए एथलीट हैरी केन प्रेरणा का स्रोत रहे होंगे। इंग्लैंड की टक्कर अब से मेजबान मेक्सिको से होगी। इंग्लैंड के दर्शक बेहद उत्साहित होंगे जिन्होंने कांगो के खिलाफ मैच से पहले प्री क्वार्टर का टिकट बुक करा लिया था, वरना एक समय तो कांगो ने उलटफेर करने के इरादे दर्शा दिए थे। डीआर कांगो तीसरे स्थान की शेष 8 टीमों में शामिल थी जिसने पुर्तगाल को ड्रॉ पर रोका, उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराया। हाँ, कोलंबिया के खिलाफ उन्हें हार जरूर मिली थी। कांगो इस विश्व कप से बाहर हो गई लेकिन अभियान समाप्त होने से पहले उसने कई यादगार पहलू बटोरे। जी हाँ, ये तो बात थी फीफा विश्व कप की, जहां कल जो मुकाबले खेले गए, जहां अमेरिका ने बोस्निया को 2-0 से, इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से, और बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से पराजित किया। और मुकाबले तो आज भी खेले जाने हैं प्रेरणा, और मुकाबले फिर सितारों की जंग देखने को मिलेगी जब पुर्तगाल और क्रोशिया आमने सामने होंगे। एक तरफ CR7 यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्हें गोल मशीन के नाम से जाना जाता है, दूसरी तरफ दुनिया के प्रख्यात मिडफील्डर लुका मोद्रिच। दोनों कप्तानों और दोनों सितारों की एक ये दिलचस्प कशमकश होगी इस मुकाबले में। इसके अलावा ऑस्ट्रिया स्पेन का भी मुकाबला है और स्विट्जरलैंड भी उतरेगी। तो क्या है इस जो आने वाले मुकाबले हैं, इनके बारे में क्या बताना चाहेंगी?
2: फीफा विश्व कप 2026 के नॉकआउट चरण में अब मुकाबले और भी रोमांचक होते जा रहे हैं। आज देर रात और कल सुबह होने वाले 3 अहम मुकाबलों की चर्चा कर लेते हैं, जिनमें स्पेन का सामना ऑस्ट्रिया से, पुर्तगाल की टक्कर क्रोशिया से, और स्विट्जरलैंड का मुकाबला अल्जीरिया से होगा। तीनों टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। सबसे पहले नजर रहेगी स्पेन और ऑस्ट्रिया के मुकाबले पर, जो भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। स्पेन ग्रुप एच में 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ शीर्ष स्थान पर रहते हुए नॉकआउट में पहुंचा है। टीम ने सऊदी अरब को 4-0 और उरुग्वे को 1-0 से हराया, जबकि कार्बो वर्डे के खिलाफ मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप जे में 1 जीत 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ अगले दौर में जगह बना ली है। टीम ने जॉर्डन को 3-1 से हराया, अर्जेंटीना से 0-2 से हार झेली और अल्जीरिया के साथ 3-3 का रोमांचक ड्रॉ खेला। दोनों के बीच अब तक 16 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें स्पेन ने 9, ऑस्ट्रिया ने 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि 3 मैच ड्रॉ रहे। विश्व कप में ये दोनों की दूसरी भिड़ंत होगी। पिछली बार 1978 के विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने स्पेन को 2-1 से हराया था। स्पेन की नजर युवा स्टार लामिन यामाल पर होगी, जबकि ऑस्ट्रिया को कप्तान मार्सेल साबिजर से बड़ी उम्मीदें रहेंगी। इसके बाद भारतीय समय अनुसार सुबह 4:30 पर टोरंटो में पुर्तगाल और क्रोशिया आमने सामने होंगी। विश्व कप इतिहास में दोनों देशों की यह पहली भिड़ंत होगी। हालांकि दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए 10 मुकाबलों में पुर्तगाल का दबदबा रहा है। पुर्तगाल ने 7 मैच जीते हैं, जबकि क्रोशिया को केवल 1 ही जीत मिली और 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। पुर्तगाल ग्रुप के में अपराजित रहते हुए नॉकआउट में पहुंचा। टीम ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया, जबकि कांगो डीआर और कोलंबिया के खिलाफ मुकाबले ड्रॉ रहे। दूसरी ओर क्रोशिया ने शुरुआती हार के बाद शानदार वापसी करते हुए पनामा और घाना को हराकर अगले दौर में अपनी जगह बनाई। इस मुकाबले में सबकी नजरें पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर रहेंगी, जिन्होंने ग्रुप चरण में 2 गोल किए हैं। वहीं क्रोशिया की उम्मीदें अनुभवी कप्तान लुका मॉड्रिच के प्रदर्शन पर टिकी होंगी। दिन का तीसरा मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 8:30 पर वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया के बीच खेला जाएगा। स्विट्जरलैंड ने ग्रुप बी में 2 जीते और 1 ड्रॉ के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। टीम ने बोनसेनिया एंड हर्जेगोविना को 4-1 और मेजबान कनाडा को 2-1 से हराया, जबकि कतर के खिलाफ मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। वहीं अल्जीरिया ने 1 जीत 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ नॉकआउट में जगह बनाई। टीम को पहले मुकाबले में हार मिली, लेकिन उसके बाद जॉर्डन को हराया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ 3-3 की बराबरी खेलकर अगले दौर का टिकट हासिल कर लिया। दोनों टीमों के बीच अब तक केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हुए हैं और दोनों में स्विट्जरलैंड को जीत मिली है। विश्व कप में ये उनकी पहली भिड़ंत होगी। स्विट्जरलैंड की उम्मीदें इस विश्व कप में 3 गोल कर चुके युवा फॉरवर्ड जोहान मंजाबी पर रहेंगी, जबकि अल्जीरिया को अनुभवी विंगर रियाद महरेस से एक और शानदार प्रदर्शन की आस होगी। ऐसे में नॉकआउट चरण की ये 3 मुकाबले बेहद रोमांचक रहने की उम्मीद है, जहां एक छोटी सी गलती किसी भी टीम के विश्व कप अभियान का अंत कर सकती है।
0: फुटबॉल के मैदान से अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर और बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की जो T20 सीरीज है, उसका कल पहला मुकाबला खेला गया। हालांकि बारिश के कारण ये मुकाबला अधूरा ही रद्द हो गया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने तो खुलकर हाथ दिखा ही दिए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने को उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 189 रन बनाकर मेजबान टीम को 190 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन उसके बाद बारिश आ गई और मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका। भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने 68 और अभिषेक ने 59 रन का योगदान दिया। भारतीय टीम ने 2 विकेट महज 6 रन पर गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद अभिषेक और कप्तान अय्यर ने 82 रन की साझेदारी कर टीम को संभाला। अभिषेक ने 24 गेंदों की पारी में 6 चौके और 4 छक्के लगाकर अपना स्वाभाविक अंदाज पेश किया। बाद में ऑलराउंडर शिवम दुबे ने 21 गेंदों में नाबाद 42 रन बनाए, 2 चौके और 3 छक्के उन्होंने अपनी पारी के दौरान लगाए। और इंग्लैंड के लिए साकिब महमूद ने 3 विकेट लिए, सैम और आदिल को 1-1 विकेट लिया। बात T20 क्रिकेट की ही करें तो ईशान किशन दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने

0: अभिषेक शर्मा को पछाड़ा है। ईशान के 876 रेटिंग अंक हो गए हैं, अभिषेक 7 अंक पीछे इसके बाद दूसरे स्थान पर हैं। विराट, सूर्य कुमार और अभिषेक के बाद ईशान T20 में नंबर वन बल्लेबाज बनने वाले चौथे भारतीय हैं। और प्रेरणा, क्यों ना बात ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप की जाए, जहां दूसरा सेमीफाइनल खेले जाना है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच।
1: महिला T20 विश्व कप 2026 अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। पहला फाइनलिस्ट ऑस्ट्रेलिया पहले ही तय हो चुका है और अब सबकी निगाहें दूसरे सेमीफाइनल पर हैं, जहां आज मेजबान इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें लंदन के ऐतिहासिक ओवल मैदान पर आमने सामने होंगी। भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला रात 11 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले फाइनल में 6 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। ऐसे में दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला करो या मरो का होगा। अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो इंग्लैंड अब तक सबसे संतुलित और प्रभावशाली टीम के रूप में सामने आई है। मेजबान टीम ने ग्रुप चरण के सभी 5 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और पूरे टूर्नामेंट में अभी तक उसे हार का सामना नहीं करना पड़ा है। इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत उसकी मजबूत बल्लेबाजी और संतुलित गेंदबाजी रही है। सलामी बल्लेबाज डैनी व्हाइटहॉर्स ने शानदार फॉर्म में रहते हुए 5 मैचों में 282 रन बनाए हैं। उनका औसत 94 का रहा है और स्ट्राइक रेट 153 से अधिक है। इस दौरान उन्होंने नाबाद 105 रन की बेहतरीन पारी भी खेली है। गेंदबाजी में दुनिया की शीर्ष स्पिनरों में शामिल सोफी एक्लेस्टन लगातार प्रभाव छोड़ रही हैं। उन्होंने 5 मैचों में 8 विकेट हासिल किए हैं और उनकी इकोनमी मात्र 5.9 रही है। वहीं कप्तान नेट साइवरब्रंट की चोट से वापसी ने इंग्लैंड को और मजबूत बना दिया है। उनके अनुभव और ऑलराउंड क्षमता से टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। दूसरी ओर है दक्षिण अफ्रीका की टीम, उन्होंने भी शानदार वापसी करते हुए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। शुरुआती हार के बाद टीम ने पिछले 5 में से 4 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दक्षिण अफ्रीका के लिए इस विश्व कप में ताजमिन ब्रिस बेहतरीन लय में नजर आई। उन्होंने केवल 3 पारियों में 174 रन बनाए, जिसमें नाबाद 114 रनों की शानदार पारी भी शामिल है। वहीं अनुभवी ऑलराउंडर मारिजान कैप एक बार फिर टीम की सबसे बड़ी उम्मीद होंगी। भारत के खिलाफ उन्होंने नाबाद 81 रन बनाने के साथ 2 विकेट भी हासिल किए थे। पूरे टूर्नामेंट में कैप ने 7 विकेट लिए हैं और बल्ले तथा गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता वो रखती हैं। गेंदबाजी में उनके साथ अनुभवी तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल, आयाबोंगा खाका और बाएं हाथ की स्पिनर नोंकोलुलेकु मलाबा की भूमिका भी बेहद अहम रहेगी। वहीं कप्तान लॉरा वॉलवर्ट से भी बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। अगर दोनों टीमों के आपसी रिकॉर्ड पर नजर डाले तो आंकड़ा इंग्लैंड के पक्ष में दिखाई देता है। अब तक दोनों टीमों के बीच 28 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 23 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका को केवल 4 मुकाबलों में सफलता मिली है। एक मैच बेनतीजा रहा। हालांकि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में पुराने रिकॉर्ड ज्यादा मायने नहीं रखते, खासकर तब जब दक्षिण अफ्रीका लगातार तीसरी बार विश्व कप के अंतिम चरण तक पहुंची है और बड़े मुकाबलों का अनुभव भी रखती है। पिच की बात करें तो ओवल की विकेट बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। मैदान की बाउंड्री भी अपेक्षाकृत छोटी है, जिससे बड़े स्कोर बनाने की संभावना रहती है। हालांकि इस वर्ष यहां खेले गए महिला T20 मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को सफलता मिली है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मेजबान इंग्लैंड अपनी अजय लय को बरकरार रखते हुए फाइनल में पहुंचता है, या फिर दक्षिण अफ्रीका एक बार फिर बड़े मंच पर उलटफेर करते हुए लगातार तीसरी बार विश्व कप फाइनल में अपनी जगह पक्की करता है। जो भी टीम आज जीत हासिल करेगी उसका सामना 5 जुलाई को लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया से होगा, जहां महिला T20 विश्व कप 2026 का मिलेगा हमें नया चैंपियन।
0: बात क्रिकेट की जारी रखते हैं और बात करते हैं दिल्ली प्रीमियर लीग की, जिसका बीती रात कल ऑक्शन हुआ और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शाहिद आजमी खास तौर पर वहां मौजूद थे। किस खिलाड़ी को कितना तवज्जो मिली, किसको अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला, ये सब इस रिपोर्ट में।
2: दिल्ली प्रीमियर लीग T20 सीजन 3 के पुरुष तथा महिला वर्ग की नीलामी नई दिल्ली में संपन्न हो गई है। सभी 8 फ्रेंचाइजियों ने अपने अपने स्क्वाड को अंतिम रूप दे दिया है और अब सभी की निगाहें आगामी सीजन पर टिकी हैं। DDCA के सचिव अशोक शर्मा बता रहे हैं इस बार का ऑक्शन कैसा रहा।
3: देखिए, आपने पूरा जब से ऑक्शन शुरू हुआ है आप उस दृश्य को देखते आए हैं।

0: और बहुत अच्छे तरीके से पिछली बार सिमरन जीत के गई थी 39, इस बार से अपने टीम में कहां और किस वजह से और क्यों इतनी बोली गई है, ये फ्रेंचाइजी अपने नोट करके लाई थी कि कहां पर इनको यूज करना, किस प्लेयर को कहां तक लेना, क्योंकि सबका पॉकेट फिक्स था, उतने ही पॉकेट में बेस्ट टीम बनानी है। रिटेनरशिप का इनको फायदा मिला क्योंकि तकरीबन 9 से 10 लड़के इन्होंने ऑलरेडी पहले रिटेन कर लिए हैं जो टीम का मेन हिस्सा है।
1: इस बार नीलामी के सबसे बड़े स्टार रहे तेजस्वी दहिया, जिन्हें साउथ दिल्ली सुपर स्टार्स ने 40 लाख रुपए में राइट टू मैच यानी RTM कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने साथ बनाए रखा। वे इस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। ये है साउथ दिल्ली सुपर स्टार्स टीम के कोच सनदीप सिंह, जो बता रहे हैं तेजस्वी इतना खास क्यों है।
2: देखिए, पहले तो चीज थी कि जैसे हमें कुछ प्लेयर रिटेन्स कर रहे थे, तो हमने 7 प्लेयर अच्छे रिटेन्स किए, ABC और मार्केम ने आयुष बडोनी को रखा। तेजस्वी दहिया एक ऐसा खिलाड़ी था कि जो कि टॉक ऑफ टाउन बन चुका था, सारी फ्रेंचाइजीज को था कि कहीं ना कहीं तेजस्वी दहिया हमारी टीम में आए, पर हमने RTM यूज किया 40 लाख रुपए के ऊपर, क्योंकि 2 साल से जिस खिलाड़ी भी आप बेट कर रहे हैं सबने तैयार किया, इतना बड़ा प्लेयर बनाया, KKR में वो सिलेक्ट हुए, तो हमें वो प्लेयर चाहिए था और वो प्लेयर हमारे पास वापस आ गया, तो काफी हद तक हमें रिलीफ मिला। अच्छे ओपनर्स हमें मिल गए, स्पिनर्स बहुत क्वालिटी मिले हमें जो कि दिल्ली में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। दिल्ली प्रीमियर लीग ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो इन प्लेयर्स के लिए मिल चुका है कि जहां पे आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं IPL स्काउट्स हमेशा देखने आते हैं, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप IPL के अंदर अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकें। जैसे लास्ट ईयर दिव्येश राठी भी खोए, वो हमारे पास से प्रिंस यादव खेले, तेजस्वी थीएसएल खेले, प्रियांश आर्या पहले हमारे पास से वो पंजाब टीम्स के पास गए, तो काफी यहां से प्लेयर्स हैं, 8 से 9 प्लेयर जो कि IPL के लिए जा चुके हैं।
1: 40 लाख का दाव लगाया है, क्या लग रहा है सही हुआ है?
2: देखिए, अगर ऑप्शन अमाउंट बढ़ जाती तो शायद उससे भी ज्यादा जाते हम, क्योंकि वो प्लेयर उस अमाउंट का है।
1: दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हिम्मत सिंह, जिन्हें नई दिल्ली टाइगर्स ने RTM के जरिए 38 लाख रुपए में हासिल किया। वहीं अनुज रावत 27 लाख रुपए में पुरानी दिल्ली 6 के साथ जुड़े। सार्थक रंजन को 17 लाख रुपए में नॉर्थ दिल्ली टाइगर्स ने RTM के जरिए अपनी टीम में बरकरार रखा। नई दिल्ली टाइगर्स हिम्मत सिंह को अपनी टीम में शामिल कर कितना संतुष्ट है, टीम से जुड़े कोच राजकुमार शर्मा इस बारे में बताते हैं।
3: बहुत अच्छी टीमें बनी है और सभी ने अपने जो चॉइस के प्लेयर्स थे सबने लिए हैं, तो मुझे लगता है कि ये DPL 2 से भी बड़ा होने वाला है, DPL 3, और शानदार परफॉर्मेंस आएगी यहाँ के प्लेयर्स की और वो आगे जाकर IPL और फिर उसके बाद इंडिया के लिए खेलेंगे।
1: नई दिल्ली टाइगर्स कैसी बनी है, कितना संतुष्ट?
3: पूरी तरह सेटिस्फाइड है हम लोग, जो प्लेयर्स हमें चाहिए थे हमने वो लिए हैं। अब 100% तो नहीं मिल पाते क्योंकि बिडिंग होती है और भी कुछ लोग जाते हैं उन प्लेयर्स के लिए, लेकिन काफी हद तक हम सेटिस्फाइड, 90% में कहूंगा हमें जो प्लेयर्स चाहिए थे वो मिले हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट।
1: आपको पता है DPL के बारे में, इसकी जो इसका मुकाम है इसको कैसे देखते हैं, दिल्ली वालों के लिए कितना फायदेमंद?
3: देखिए, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं तब एपेक्स में था और मैंने भी बहुत कोशिश की थी कि शुरू हो DPL, मतलब मैंने भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था कि किसी भी तरह DPL जरूर चालू होना चाहिए, एंड थैंक्स टू मिस्टर आवर प्रेसिडेंट की उन्होंने ये शुरू किया। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और उसका रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, हमारे कितने प्लेयर IPL में चले गए और इंडिया ए में खेल रहे हैं और इंडिया नॉक कर रहे हैं।
1: पुरानी दिल्ली 6 टीम के बारे में बता रहे हैं टीम के कोच विजय दहिया।
4: अगर मैं अपनी टीम की तरफ नजर डालता हूँ तो एक ऐसी टीम बनी है जहाँ पर युवा खिलाड़ी नजर आते हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी नजर आते हैं, आपके पास बहुत सारे विकल्प नजर आते हैं, क्योंकि जब आप इस फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं कि आपके पास ऑप्शंस होनी चाहिए, तो वो सब नजर आता है इस टीम की।
1: मार्के राउंड में कुलदीप यादव, सुरेश शर्मा, नवदीप सैनी और सिमरजीत सिंह अपनी अपनी टीमों के साथ बेस प्राइस 10 लाख रुपए में जुड़े। अब सभी 8 टीमों ने अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ युवा और उभरती प्रतिभाओं का शानदार मिश्रण तैयार कर लिया है। सेंट्रल दिल्ली किंग्स की कमान कुलदीप यादव और यश धूल जैसे खिलाड़ियों पर होगी, जबकि ईस्ट दिल्ली राइडर्स के पास मयंक यादव और सिमरजीत सिंह जैसे बड़े नाम हैं। यह है ईस्ट दिल्ली राइडर्स के मैनेजर रविंदर सिंह बता रहे हैं जो खिलाड़ी उन्होंने ऑक्शन में लिए हैं उससे कितना संतुष्ट हैं।
2: बिल्कुल, बहुत संतुष्ट हैं, जो हम चाहते थे लगभग हमने ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर लिया, एक आध रह गया, लेकिन क्योंकि ऑक्शन है आप पूरी तरह से अपने मनपसंद तो नहीं ले सकते, लेकिन हम जो था हमारा 90% से ऊपर हम जो सर्टिफाइड है।
1: टीम आपने बहुत जल्दी पूरी कर ली थी ऑक्शन के बीच में, क्या आपने जो जो सोचा था कर लिया था?
2: हमने पहले शॉर्टलिस्ट करके लड़के बना रखे थे, लड़के भी देखे थे और उसी ने उन्हीं पे काम किया, हमने जहाँ पे एक आदम चीज रह गई बस वो रह गई, बाकी हमने सब पहले नाम सब शॉर्ट कर 2-3 दिन से हम लोग मीटिंग करके पहले यही कर रहे थे सर।
1: जब एक ऑक्शन में आते हैं एक लिस्ट बनाते होंगे किन किन खिलाड़ियों को लेना है, उस पे अमाउंट्स भी कुछ सेट करते हैं, यहाँ तक जाएंगे कैसे बताएंगे
2: सब कुछ? देखिए, अब 8-7 जो लोग पहले हम रिटेन करते हैं हम देख लेते हैं कि उनमें हमारा कितना अमाउंट खर्च हो चुका है और फिर मार्की प्लेयर और 8 कैटेगरी प्लेयर बाहर ही देखते हैं कि किस प्लेयर की क्या वर्थ है, उसको हम कितने तक ले सकते हैं और क्या वो हमारे को कितना काम आ सकता है। तो ये चीज बड़ी मैटर करती है। हमने पूरा लगा रखा था कि इस ऐसे हमने सिमरजीत के लिए लगा रखा था कि प्लेयर है, हमें अगर ये पहले मिल जाए हमें 30 लाख तक मिल जाएगा, हमें चल जाएगा, लेकिन हमें 10 लाख का मिल गया तो हमें उसमें बहुत फर्क पड़ गया।
1: वही वेस्ट दिल्ली लायंस में नीतीश राणा, सुरेश शर्मा, साउथ दिल्ली सुपर स्टार्स में आयुष बदौनी और तेजस्वी दहिया, वही पुरानी दिल्ली 6 के लिए अनुज रावत, दिग्वेश राठी और ललित यादव आकर्षण का केंद्र होंगे। पिछले साल की चैंपियन वेस्ट दिल्ली लायंस के कप्तान नीतीश राणा अपनी टीम के बारे में कहते हैं,
5: सर मैं सेम चीज रिपीट करूंगा, जो चीजें कंट्रोल में है वो कंट्रोल करने को देखेंगे, रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हाँ एक तरीके का गेम खेलने को देखेंगे जो कि हमने लास्ट ईयर भी खेला है। और मैं काफी बार ये चीज बोल चुका हूँ कि इंडिविजुअली हम बहुत अच्छे हैं सारे, तभी शायद ऑप्शन में पिक हुआ है, बट एज ए कलेक्टिव एज ए टीम हम कैसे खेलते हैं वो बहुत मैटर करता है टूर्नामेंट।
1: इसी बीच महिला वर्ग की चारों टीमों साउथ दिल्ली सुपर स्टार्स, ईस्ट दिल्ली राइडर्स, सेंट्रल दिल्ली क्वींस और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के लिए भी खिलाड़ियों की नीलामी आयोजित की गई। मिलते हैं सेंट्रल दिल्ली क्वींस की मार्की खिलाड़ी सोनी यादव से, जो बता रही हैं पिछली बार हम फाइनल हारे थे लेकिन इस बार चैंपियन बनेंगे।
6: जैसे कि जो हम होमवर्क करके आए थे ऑलमोस्ट वो हमने एग्जीक्यूट किया है, और जिस प्लेयर्स के लिए हमने होमवर्क किया था वो ऑलमोस्ट हमारा डन हुआ है। तो आने वाला सीजन जो लास्ट ईयर थोड़ा सा हम लैक कर गए थे, फाइनल हारे थे, तो मे बी नेक्स्ट सीजन जो आ रहा है होपफुली हम ट्रॉफी उठाएं। और इस बार हमारी टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, यंग टैलेंट है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो होपफुली बेस्ट सीजन रहेगा ये सेंट्रल दिल्ली।
1: जो आपकी टीम बनी हुई जो खिलाड़ी है पूरी तरह संतुष्ट है या लग रहा कुछ और होना चाहिए था?
6: नहीं सर, ऑलमोस्ट मैं 99.9% कहूंगी जिन प्लेयर्स के लिए हमने होमवर्क किया था वो ऑलमोस्ट डन हुआ है, जिन प्लेयर्स की स्क्वाड में रिक्वायरमेंट्स थी वो ऑलमोस्ट डन हुई है, तो आई एम हैप्पी एंड प्लेयर्स भी शायद हैप्पी होंगे।
7: और अब बात कर लेते हैं विंबलडन 2026 की। महिला एकल में विश्व नंबर 1 आर्याना सेबुलेंका ने पहला सेट गंवाने के बाद दमदार वापसी करते हुए मार्क टिनी कैसलर को 4-6, 6-3, 6-4 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। तीसरे दिन का सबसे बड़ा उलटफेर तब देखने को मिला जब पूर्व विंबलडन चैंपियन बारबोरा क्रेजिकोवा ने पांचवी वारी और मौजूदा फ्रेंच ओपन चैंपियन मीरा एंड्रेवा को 4-6, 7-5, 6-4 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके अलावा कोको गॉफ ने संघर्षपूर्ण मुकाबले में जीत भी दर्ज की।
8: कनाडा ओपन बैडमिंटन की बात करें तो भारत के एस शंकर, मुथुस्वामी सुब्रमण्यम और सतीश कुमार कर्णाकर ने जीत के साथ प्री क्वार्टर में प्रवेश कर लिया। महिला एकल में आकर्षि कश्यप, तानिया हिमंत ने भी अगले दौर में प्रवेश किया है, जबकि अश्मिता चालिहा और देविका सिहाग को हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय ऊंची कूद के एथलीट सर्वेश अनिल कुशारे 10 जुलाई से होने वाली डायमंड लीग के मोनाको चरण में हिस्सा लेंगे। मुंबई में चल रही स्क्वाश पीएसए चैलेंजर टूर में भारत के वेलवंशी वी सेंथिल कुमार ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज को 39 मिनट में 3-0 से पराजित किया। टेबल टेनिस की बात करें प्रेरणा,
7: तो WTT US मैच 2026 में भारत के लिए अच्छी खबर है। पुरुष युगल में मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी ने जापान के सोरा माचुमा और शुनो केतामी को 3-1 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई है। तो आज के खेल खिलाड़ी में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर विश्व खेल पत्रकार दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे प्रेरणा शर्मा और सहयोगी नवीन कुमार शर्मा को दीजिए अनुमति।
8: नमस्कार।
9: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
10: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
9: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
10: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
9: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
11: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
10: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
11: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation,

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्यां जापान समकक्षेण प्रधानमंत्रिणा साने ताकाइची इत्यनया सह वार्षिक शिखर स्तरीयां मंत्रणां विहितवान्। उभाभ्यामपि देशाभ्यां आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, औषध, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु क्षेत्रेषु अनेके संधयः हस्ताक्षरिताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रावोचत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक संबंधेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा समुत्तीर्णा। संयुक्त राष्ट्र महासभायां अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलंबित प्रस्तावः समर्थितः। जम्मू कश्मीरस्य भगवती नगर आधार शिविरात् तीर्थयात्रिणां प्रथमस्य दलस्य प्रस्थानेन सह श्री अमरनाथ यात्रा विधिवत् समारब्धा। दक्षिण पश्चिम प्रावृत्कालः अद्य समग्र दिल्ली क्षेत्रं सम्प्राप्तः तथा च अयम् उत्तर पश्चिम राज्यानां केषुचित् भागेषु अपि अग्रेसरति। अपि च फीफा विश्वचषके संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन 2000-तमात् परं प्रथमः नॉकआउट स्तरीय विजयः समंकितः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारतेन जापानेन चाद्य आर्थिक ऊर्जा सुरक्षा, औषध रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु विभिन्न क्षेत्रेषु अनेके प्रमुख संधयः परस्परं विनिमयीकृताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां स्वस्य जापान समकक्षया प्रधानमंत्रिणा साने ताकाइची इत्यनया सह वार्षिक शिखर स्तरीयां वार्तां साधितवान्। द्विपक्षीय वार्तानन्तरं संयुक्तं संवाददातृ सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी प्रावोचत् यत् वर्तमान समये पारस्परिक विश्वासः सम्पत्तिः वर्तते, सहैव भारत जापान संबंधेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा सुत्तीर्णा। तेन रेखांकितं यत् उभावपि देशौ विश्वस्य विशाल अर्थव्यवस्थासु अन्यतमौ स्तः।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् उभावपि देशौ आर्थिक सुरक्षायाः, ऊर्जा सुरक्षायाः च महत्वं सम्यक् जानीतः। तेन प्रोक्तं यत् प्राविधिक सहभागिता भारत जापान सहयोगस्य महत्वपूर्णः आधारस्तम्भः भविष्यति। एतमेव संकल्पं सफलीकर्तुं द्वाभ्यामपि देशाभ्यां कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः क्षेत्रे एकं संयुक्त वक्तव्यं प्रकाशितम्।
1: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: प्रधानमन्त्रिणा विशेषेण घोषितं यत् अद्य भारत जापानयोः मध्ये प्रथम सह विकास परियोजनायै सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं सञ्जातम्।
1: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
0: जापान देशस्य प्रधानमंत्री साने ताकाइची इत्येषा गत सायंकाले त्रिदिवसीय यात्रायाः कृते नवदिल्लीं सम्प्राप्ता। प्रधानमंत्री रूपेण ताकाइची महोदयायाः इयं प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धाः सर्वथा विशिष्टाः सन्ति तथा च द्वयोः देशयोः आर्थिक सहभागिता वैश्विक पटले साक्षात् साफल्यस्य आदर्शरूपम् अस्ति। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां भारत जापान संयुक्त आर्थिक मञ्चं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् जापान देशस्य प्रविधि विशेषज्ञता निवेशश्च भारतस्य तीव्रगत्या सह मिलति, तदा समग्रं विश्वं लाभान्वितं भवति। उभाभ्यां पक्षाभ्यां स्वकीयः आर्थिक सम्बन्धः गतिशीलं गम्भीरं च विधातुं संकल्पः कृतः। अत्रावसरे द्वाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रेषु भविष्योन्मुखाः सन्धयः विहिताः। वैश्विकार्थव्यवस्थायाः विषये कथयता प्रधानमन्त्रिणा रेखाङ्कितं यत् वर्तमानसमये समग्रं विश्वम् आपूर्तिशृङ्खलावरोधैः व्यापारिक अनिश्चिततावशात् च ग्रस्तं वर्तते। अत्रान्तरे भारतं विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमाना प्रमुखा अर्थव्यवस्था वर्तते। विगत वित्तीय वर्षे भारतस्य जीडीपी वृद्धिः 7.7% आसीत्। तेन विशेषेण प्रोक्तं यत् सर्वकारेण करप्रणाल्यां, सुशासने, व्यापार सुगमतायां च उत्तम परिष्काराणि कृतानि। स्वकीय सम्बोधने जापानस्य प्रधानमन्त्री साने ताकाइची इत्येषा ऊर्जा सुरक्षां प्रधान विषयं मन्वाना अवदत् यत् जापान देशः पावर एशिया इनिशिएटिव इत्यनेन माध्यमेन मुक्त पारदर्शी ऊर्जा व्यापारं सुदृढं कर्तुं कृतसंकल्पः अस्ति। अस्मिन्नेव कार्यक्रमे उभाभ्यां प्रधानमन्त्रिभ्यां हरियाणा राज्यस्य खरखौदा स्थिते मारुति सुजुकी संस्थायाः चतुर्थस्य वाहन निर्माण संयंत्रस्य संयुक्त रूपेण उद्घाटनं कृतम्।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। संयुक्तराष्ट्र महासभायाम् अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलम्बित प्रस्तावः समर्थितः। संयुक्तराष्ट्रस्य वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीतेः नवम समीक्षायां या च 44.1% मतैः अंगीकृता।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी राम राम, राम। तो कुसुम बहन हम हाजिर हो गए हैं ग्राम संसार कार्यक्रम लेकर के, और आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन होता है हमारा SMS पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम, जिसमें हम अपने भाइयों का मनोरंजन करते हैं उनकी पसंद के कलाकार के द्वारा।
1: बिल्कुल अतुल भाई,
0: तो
1: और
0: छोटी जानकारियां भी हम उनके लिए लेकर के आते हैं,
1: चर्चा भी करेंगे, जानकारियां भी देंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो तब हमें लगता है जब हम बाहर निकलते हैं घर के, तो हमें वृक्षों के महत्व का पता लगता है कि अगर वृक्ष होते तो हम वृक्ष की छांव में जाते, तब हमें उसका एहसास होता है, क्योंकि वृक्ष ही जीवन है अतुल भाई। ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि प्रकृति का अटल सत्य है। जब वर्षा की पहली बूंदें धरती को स्पर्श करती हैं, तब प्रकृति मानो नए जीवन का स्वागत करती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, मिट्टी में नमी बढ़ जाती है और वातावरण पौधों के विकास के लिए अनुकूल हो जाता है। इसलिए वर्षा ऋतु को वृक्षारोपण का सर्वोत्तम समय माना जाता है अतुल भाई।
0: बिल्कुल, देखिए हमारे उत्तर भारत में जुलाई के प्रथम सप्ताह में देखिए मानसून दस्तक दे देता है और बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। कुसुम बहन, तो बरसात के मौसम में भाई हमारी भी कोशिश रहती है, और हम तो यही कहना चाहेंगे हर व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ तो अवश्य लगाना चाहिए। और बरसात के मौसम में जब हम पेड़ लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी जो है अपनी जड़ें जो है पकड़ लेता है, और वो उसका जो फुटाव है वो भी अच्छा रहता है।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि जो हम पेड़ लगाते हैं वो सूखता नहीं है, और कई बार देखा होगा आपने गर्मियों में अगर आपने लगा दिया, धूप छिलका निकल रहा है तो पेड़ सूख जाता है,
1: तो उसमें हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पानी की समस्या भी होती है उस समय, और इस समय तो कहते हैं प्राकृतिक तौर पे वर्षा का जल होता है। हाँ, वर्षा ऋतु में लगाया गया एक छोटा सा पौधा आने वाले वर्षों में विशाल वृक्ष बनकर हजारों वृक्षों को शुद्ध वायु, छाया, फल, औषधियां, पर्यावरण संरक्षण का अमूल्य उपहार देता रहता है। इसीलिए वृक्षारोपण केवल एक अभियान नहीं, प्रकृति के प्रति हमारा कर्तव्य है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, और आने वाली

0: के लिए सबसे बड़ा उपहार है।
1: हैप्पी नहीं है, देखिए वृक्ष लगाओ और जीवन को खुशहाल बनाओ।
0: बिल्कुल अतुल भाई, यदि आप जीवन में सबसे बड़ा दान करना चाहते हैं, हम तो दान बहुत तरह के करते कहते हैं दान करने से पुण्य होगा, तो यदि आप जीवन में सबसे बड़ा दान करना चाहते हैं तो एक वृक्ष लगाइए, ये बिना किसी भेदभाव के वर्षों तक सभी को जीवन देता रहेगा।
1: बिल्कुल, तो भाई हम तो यही कहना चाहते हैं सभी श्रोताओं से कि भाई एक पेड़ आप अवश्य लगाएं।
0: बिल्कुल,
1: और भाई आप जैसा कि हमारा SMS पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम है कुसुम बहन, तो भाई हम भी तैयार हैं अपनी सभी बहन भाइयों के SMS लेकर के और उनकी पसंद के कलाकार को लेकर के। आज के हमारे कलाकार हैं मनोज चौहान और उनके लिए SMS आ गए हैं। ये SMS हमारे पास में आया है पलारी छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं नितेश कुमार देवांगन और इनका पूरा परिवार, जिला मुरादाबाद गाँव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से फरमाई भेज रहे हैं मुकेश कश्यप और इनका पूरा परिवार, जसपुर उत्तराखंड से हमें फरमाई भेज रहे हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी और इनका पूरा परिवार, बेहर खाल वाला खुर्द सिरसा से फरमाइश भेज रहे हैं बलवंत जाखड़ और इनका पूरा परिवार, हनुमानगढ़ टाउन से फरमाइश भेज रहे हैं सुल्तान सिंह ताड़ और इनका पूरा परिवार।
0: जी हाँ अतुल भाई, मनोज चौहान को ही सुनना चाहा है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नलवाकर और उनका पूरा परिवार, मलकापुर से नारायण इंगले और उनका संपूर्ण परिवार, मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें ये SMS आया चंडीगढ़ सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का, इन्होंने भी फरमाइश की है वो सुनना चाहते हैं मनोज चौहान को। और ये SMS आया है जटवाड़ा गाजियाबाद से शीशपाल अकेला का, और ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी और समस्त अब्बासी परिवार का भी हमें मैसेज आया है।
1: कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं देवशंकर तामूरिया और इनका पूरा परिवार, ये SMS हमें मिला है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, भेजने वाले हैं ताज मोहम्मद अंसारी और इनका पूरा परिवार, जनकपुरी सहारनपुर से फरमाइश भेज रहे हैं जॉन डिकेस्टो और इनका पूरा परिवार, ये फरमाइश हमारे पास में आई है गांव टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से, भेजने वाले हैं गगन सिंह गगनदीप थांदी और इनका पूरा परिवार, ये SMS हमारे पास में आया है चक 5 MD पतरोड़ा से, भेजने वाले हैं मंगल जनागल और इनका पूरा परिवार, गांव खुकरावली श्रीगंगानगर से फरमाइश भेज रहे हैं विनोद बारशा और इनका पूरा परिवार।
0: और ये SMS आया है राजस्थान से मेहर अरोड़ा ममता अरोड़ा उनके समस्त परिवार का, पदमपुर जिला श्री गंगानगर से, और हमें फरमाइश भेजी है मनोज चौहान को सुनना चाहते हैं घनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी और समस्त परिवार। साथ ही ये SMS आया है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब का, और साथ ही गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और समस्त डूडी परिवार का हमें SMS प्राप्त हुआ है। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी और समस्त परिवार ने भी फरमाइश की है मनोज चौहान की।
1: सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से फरमाइश भेज रहे हैं पंजाब राम टेके और उनका पूरा परिवार, बक्सर बिहार से फरमाइश भेज रहे हैं सरफुद्दीन अंसारी और उनका पूरा परिवार, डुमराव बिहार से भी हमारे पास में SMS आया भेजने वाले डॉक्टर W अंसारी और उनका पूरा परिवार, सारिमपुर बक्सर से फरमाइश भेज रहे हैं राज SD अंसारी और उनका पूरा परिवार, खेल बाजार पानीपत से फरमाइश भेज रहे हैं नरेश मल्होत्रा नीटू और इनका पूरा परिवार, और ये फरमाइश हमारे पास में है शिवाजी कॉलोनी रोहतक से भेजने वाले हैं पीयूष सिक्का और इनका पूरा परिवार, ये फरमाइश आई है एकता कॉलोनी रोहतक से भेजने वाले हैं सीताराम कांगड़ा और इनका पूरा परिवार, भोला कॉलोनी गरौड़ा से फरमाइश भेज रहे हैं विजेंद्र कुमार जयजान और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर मनोज चौहान की आवाज़ में ये रागनी।

0: तो कुसुम बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे मनोज चौहान की आवाज में ये रागनी और किस्सा था पन्ना राय का।
1: जी हाँ अतुल भाई, आज 2 जुलाई है और आज शिमला समझौता दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन ही यानी 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। ये समझौता युद्ध के बाद शांति, संवाद और आपसी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
0: बिल्कुल,
1: और इसके साथ ही एक और है, आज यानी आज 2 जुलाई है तो आज विश्व खेल पत्रकार दिवस भी है।
0: बिल्कुल, देखिए 2 जुलाई को ये मनाया जाता है और यह दिन दुनिया भर के खेल पत्रकारों के कार्यों को मान्यता देता है कुछ तो मेहनत, उन्हें और अधिक कुशलता और पूर्ण समर्पण के भाव के साथ काम करते रहने के लिए भी प्रेरित करता है। तो ये तो रही विश्व खेल दिवस पत्रकार दिवस के बारे में जानकारी। और हमारे पास में SMS भी काफी आए हुए हैं और अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं सनोज, और इनके लिए ये SMS हमारे पास में है। भटिंडा रोड मंडी डबवाली से भेजने वाले हैं राजेंद्र नारंग और इनका पूरा परिवार। मेरठ से हमें फरमाइश भेज रहे हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़, और ये SMS हमें मिला है कलानौर से भेजने वाले हैं नरेंद्र शर्मा और इनका पूरा परिवार। जिला नादेड़ ऐताला महाराष्ट्र से फरमाइश भेज रहे हैं शंकरलाल जायसवाल और इनका पूरा परिवार। दादरी गेट भिवानी से भी हमारे पास में SMS आया है जो सुनना चाहते हैं सनोज को ही, कृष्ण मेहरा और इनके पूरे परिवार का। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से SMS भेज रहे हैं ओम प्रकाश राय। दुविहा नेवादा जिला गाजीपुर से SMS भेज रहे हैं प्रतीक राय और उनका पूरा परिवार। और ये SMS हमें मिला है भाई संदीप मक्कड़ और इनके पूरे परिवार का, पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से।
1: अतुल भाई ये मैसेज आया है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ और समस्त परिवार का, ये भी सुनना चाहते हैं सनोज को। और गांव हांडी खेला जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा और समस्त परिवार का हमें SMS मिला है। इसके अलावा फरमाइश की है महिपाल श्योरण न्यूरू उत्कर्ष और दिव्यांश गांव चैना जिला भिवानी हरियाणा से, इन्होंने भी फरमाइश की है सनोज की सुनना चाहते हैं। और इसके अलावा कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम बत्ता और समस्त परिवार की भी फरमाइश आई है सुनना चाहते हैं सनोज को। और ये SMS आया है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़ और समस्त राठौड़ परिवार का। साथ ही गुलाम रोड हर गोबिंद नगर नवा शहर पंजाब से सुरेंद्र संधु और समस्त संधु परिवार का हमें मैसेज आया है जिन्होंने फरमाइश की है सनोज की।
0: गांव लोहगढ़ ठाकुर वाला से फरमाइश भेज रहे हैं स्वर्ण सिंह गिल और उनका पूरा परिवार। गांव गोविंदगढ़ मांझी वाला श्री करणपुर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं राजू टूटेजा और इनका पूरा परिवार। पुरुषोत्तम कुमार शेख जफर हसन ने हमें फरमाइश भेज रही है गांव डंडी तहसील भद्रवाह जिला डोडा जम्मू कश्मीर से। ये फरमाइश हमारे पास में आई है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से भेजने वाले हैं सुरेश ग्रोवर और इनका पूरा परिवार। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं हीरा मणि वर्मा और इनका पूरा परिवार। गांव चोहलदा बागपत उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं संजय ढींगिया और इनका पूरा परिवार। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से भी फरमाइश भेज रहे हैं विजेंद्र विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमें मिला है गांव ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। भोपालगढ़ राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं धर्मेंद्र छीपा और इनका पूरा परिवार।
1: और ये SMS आया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और समस्त परिवार का, इन्होंने भी फरमाइश भेजी है और सुनना चाहते हैं सनोज को। साथ ही ये फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ हमसदा हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू और जितेंद्र साहू और पायल साहू का। इसके अलावा फरमाइश करी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और समस्त वर्मा परिवार का, सुनना चाहते हैं सनोज को।
0: सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर सनोज की आवाज में ये रागनी।

0: कुसुम बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे सनोज की आवाज में ये रागनी, और किस्सा था कृष्ण सुदामा का।
1: और अतुल भाई, स्वच्छता किसी भी समाज की प्रगति, स्वास्थ्य और समृद्धि का आधार होती है, और स्वच्छ वातावरण न केवल बीमारियों को कम करता है बल्कि लोगों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाता है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 की शुरुआत की। और अतुल भाई, इस चरण का लक्ष्य केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं बल्कि प्रत्येक गाँव को स्वच्छ, स्वस्थ और कचरा मुक्त बनाना है।
0: बिल्कुल, देखिए, और स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य यही है कि स्वच्छ 2020 से 2025 तक संचालित किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण भारत में ODF+ की स्थिति बनाए रखना तथा

0: ठोस एवं तरल अपशिष्ट जो पदार्थ है उनका वैज्ञानिक और प्रभावी प्रबंधन करना है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये तो रही जानकारी स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं ईसम सिंह और सचिन शर्मा, इनके लिए भी SMS आ गए हैं हमारे पास में कुसुम बहन।
1: ये SMS हमें मिला है ग्राम पंचायत बटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा उनके समस्त परिवार का, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया और समस्त परिवार का, GTB मार्केट अहमदगढ़ मंडली पंजाब मोहम्मद अनवर अंसारी और समस्त परिवार का। साथ ही हमें फरमाइश भेजी है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद और समस्त परिवार का। और इसके अलावा हमें मैसेज आया है असम से हितेंद्र दास का, इन्होंने फरमाइश की है और इनकी फरमाइश एक और फरमाइश आई है कुगदा कुम्हाड़ी छत्तीसगढ़ से बलराम बया दामनी बया और समस्त परिवार का।
0: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से फरमाइश भेजे रवि कुमार राहुल और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमें मिला है जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं श्रवण कुमार प्रजापति और उनका पूरा परिवार। शादुल शहर से फरमाइश भेज रहे हैं राम कुमार रेवाड़ और इनका पूरा परिवार। MLB रोड ग्वालियर से फरमाइश भेज रहे हैं सुरेश खुराना पप्पी और इनका पूरा परिवार। जमानिया गाजीपुर से फरमाइश भेज रहे हैं सुरेश जायसवाल और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में ये गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भेजने वाले हैं विक्रम कडवासरा और इनका पूरा परिवार। सचिन कुमार और ईसम सिंह को ही सुनना चाहा है सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन और उनके पूरे परिवार ने। वडिंगखेड़ा पंजाब से हमारे पास में फरमाइश आई है भेजने वाले हैं मिंटो टॉम्स और इनका पूरा परिवार।
1: जी हाँ, सचिन शर्मा और ईसम सिंह को ही सुनने की फरमाइश की है गांव मुरादनगर जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज और समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश है सोमनाथ कालिया और समस्त परिवार की। इसके अलावा हमें मैसेज आया नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामणि से अकरम हुसैन और समस्त परिवार का। एक और हमें SMS आया है नूर महल महसूल सीतामणि बिहार से ही। और इसके अलावा पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से हमें फरमाइश की है अनिल मोहन उषा मोहन और समस्त परिवार ने।
0: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर सचिन और ईसम सिंह की आवाज में ये रागनी।

0: कुसुम बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे ईसम सिंह और सचिन शर्मा की आवाज में ये रागनी, और किस साथ हम महाभारत के वैराट पर्व से
1: बिल्कुल
0: ये रागनी अभी हमारे सभी बहन भाइयों ने सुनी, और इसी रागनी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम, राम।
0: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत से ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजेन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम राम, राम। अतुल भाई
1: जी, कुसुम बहन,
0: इसमें भी हम बातचीत सुनवाएंगे और योजना के बारे में भी जानकारी देंगे और भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे और साथ ही साथ मनोरंजन भी होगा।
1: बिल्कुल, तो भाई हम एक बातचीत भी अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए लेकर के आए हैं कि बकरी पालन से जो हमारे छोटे किसान भाई हैं वो किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एस के सिंह, पूर्व परियोजना निदेशक ICAR नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो कुसुम बहन, लेते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार। खेती के साथ साथ पशुपालन का हमेशा से रिश्ता रहा है, क्योंकि जब से खेती आपने शुरू की है और खेती बिना पशुओं के नहीं हो सकती, और यहाँ तक कि अगर आपकी खेती में कभी छोटा मोटा नुकसान भी हो जाए तो आपकी भरपाई पशुपालन से हो जाती है। तो पशुपालन को अगर हम रोजगार का जरिया बनाते हैं और उसमें विशेष तौर पे गाय भैंस को तो ज़्यादा महत्व दिया गया, लेकिन जो भेड़ और बकरी, संख्या तो इनकी बहुत है लेकिन उतना इस पे जोर नहीं दिया गया, और अगर इसे रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व स्तर पे भी किस तरीके से किया जाए जिससे कि किसान का भी फायदा हो, देश का भी फायदा हो, और जो इससे जुड़े हमारे व्यवसायी हैं या जो जुड़ना चाहते हैं उनको भी लाभ मिल सके। और इसकी जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर एस के सिंह जी को, जो कि परियोजना निदेशक रह चुके हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। सिंह साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, जैसा मैंने जिक्र किया कि भेड़ और बकरी पालन, और इसको हमारे किसान भाई जो एक तो मध्यम या और निचले तबके के हैं वो लोग करते आए, लेकिन इसको अगर बड़े स्तर पे ले जाना हो और देश नहीं विश्वव्यापी स्तर पे, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि कैसे ले जाया जा सकता है?
3: अगर हमें खाद्य सुरक्षा पे ध्यान देना है तो पशु उत्पादों से जो खाद्य है आदमियों के लिए, वो सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त मात्रा में जितनी आवश्यकता होती है प्रति व्यक्ति, चाहे वो यूरोप में रहता हो, चाहे एशिया में रहता हो, चाहे भारत में रहता हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, चाहिए। अब आप अपने भारत देश की देखें
2: जी,
3: तो इसमें आप पाएंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा बकरियां होती है और अच्छी संख्या में भेड़े भी हैं
2: जी।
3: तो संभावनाएं तो अपार है, केवल हमें क्या करना है कि आधुनिक युग में विज्ञान का, पशुपालन तकनीकियों का समावेश करते हुए किसानों तक इतना ज्ञान पहुंचा देना है कि वो सक्षम हो सकें भेड़ और बकरी का ज्यादा से ज्यादा संख्या में कम लागत में उत्पादन करना। और दूसरी सबसे बड़ी कि हमारा जो भौगोलिक परिवेश जो देश का है
2: जी,
3: जिसमें हमारा जो है जोत बहुत छोटी होती जा रही है। आप देखें कि जोत इतनी छोटी हो गई है कि ट्रैक्टर से चलना मुश्किल हो जाता है आजकल तो, पूरा यूपी बिहार बंगाल इधर देखें तो
2: जी।
3: ऐसी स्थिति में भेड़ और बकरी जिसका वजन कम है, साइज कम है, उनको पालना बहुत ही अनुकूल होगा।
2: कम क्षेत्रफल में उनको रख भी सकते हैं,
3: रख सकते हैं, उनका फार्म खोल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि विश्व में अलग अलग इस महाद्वीप में और देशों में कहीं बकरी के मांस का और दूध का बहुत मांग है, कहीं भेड़ की मांग है। उसको देखते हुए हमें अपने देश में बहुत बड़े स्तर पे भेड़ और बकरी का उत्पादन करना चाहिए, किसानों को आकर्षित करना चाहिए कि वो भेड़ और बकरी न केवल देश की खपत के लिए बल्कि वैश्विक खपत के लिए उत्पादन करें।
2: डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि उत्पादन करना चाहिए, तो इसको अगर देश के स्तर पे बात करें तो इसका कैसे बढ़ाया जा सके?
3: देखिए, जब तक आप संगठित और व्यवसाय के रूप में नहीं लेंगे और सरकार इसको प्रमोट नहीं करेगी तब तक आएगा नहीं। मैं सरकार के प्रमोट करने की बात कर रहा हूँ, तो सरकार पे बहुत ज्ञान है, बहुत तकनीकियां हैं, संस्थान हैं, योजनाएं हैं प्रादेशिक लेवल की और देश के स्तर की, लेकिन उनको जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो इस पशुपालन में आना चाहते हैं, उन तक पहुंचा करके उनमें एक उत्साह पैदा करना होगा जिससे कि वो लगन लगा के काम करे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5-6 साल अगर 10 साल हम लोग मतलब देश के स्तर पे बच्चों को बेरोजगार लोगों को शिक्षा दें कि भेड़ बकरी पालन करके आप लाभ कमा सकते हैं, तो निश्चित तौर पे जितने भी देश में हैं, और देश के भेड़ बकरी ऐसी है कि हर क्षेत्र में पाई जाती, राजस्थान की गर्मी से लेकर के और आप देखें कि
2: उत्तराखंड
3: लद्दाख ले में भी पाई जाती है, तो हर मौसम के लिए अनुकूल है। तो हमें जो है गांव के लेवल पे, प्रदेश के लेवल पे, देश के लेवल पे किसानों को प्रोत्साहन दे करके उनका ज्ञान वर्धन करना चाहिए, उनकी क्षमता विकास की बात हम कर रहे हैं, तो उनको कुछ इतना लोन मिल जाए, इतना संसाधन मिल जाए जिससे कि 100-200-400 बकरियां या भेड़े वो पाल सके। तब क्या होगा कि अगर आपके एक गांव में 2-4 लोग भी ऐसे आते हैं जो कि बकरियां या भेड़े पाल करके लाभ कमाने लग गए, तो अपने आप एक प्रदर्शन फॉर्म की तरह काम करेगा और गांव के युवा लोग जो है आकर्षित होंगे, काम
2: भी करेंगे, उनके साथ भी जुड़ेंगे।
3: जी
2: ये तो रही देश स्तर की बात। जब हम किसान की बात करते हैं, क्योंकि किसान हमेशा देखो मेहनती तो होता है
3: जी,
2: लेकिन हर व्यक्ति की एक धारणा रहती है कि जिधर थोड़ा आसान होता है उसी की तरफ वो लालायित होता है, और किसी भी कार्य करने के लिए उसमें जरूरत पड़ती है कि कठिन कार्य करने की, तो वो कैसे किसान इसको करे जिससे इसमें जितना वो पारंपरिक तरीके से करता है जो उसे लाभ मिलता है वो उसका एक साधारण लाभ होता है, लेकिन जब उसे वो व्यवसाय के स्तर पे करना चाहता है तब उसका लाभ अच्छा होता है।
3: एक जो है नेचुरल जिसे कहते हैं प्राकृतिक नियम है
2: जी,
3: कि जीव का जितना बड़ा आकार होगा उतना सक्षम होगा
2: जी,
3: और बीमारियां कम लगेंगे, मृत्यु कम है। जितना छोटा होगा कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी मरेंगे, ज्यादा संख्या में मरते हैं, तो वो एक नैसर्गिक नियम है ये। तो अगर आप पशुपालन में देखिए तो गाय भैंस की अपेक्षा भेड़ बकरी ज्यादा थोड़ा ससेप्टेबल है, मृत्यु दर ज्यादा होती है, बीमारियां ज्यादा लगती
2: जी।
3: तो यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि देश लेवल पे और यहाँ सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, समय पे वैक्सीन मिल जाए उनको, समय पे

0: पुरानी पारंपरिक नस्लें हैं तो उनमें उतना विकास नहीं हुआ है और नई नस्लें भी लाई गई हैं, तो उनको सुधार के भी कार्यक्रम चलाए जाएं। अगर नई नस्लों को किसान भाई पालें तो उससे ज्यादा उन्हें फायदा होगा।
1: मैं यहाँ पे एक कहना चाहूंगा कि हमारे पास भेड़ की भी बकरियों की भी 40 से ज्यादा नस्लें हैं
0: जी,
1: नस्लों की कमी नहीं है। कमी क्या है, हमारे पास ऐसा संगठन नहीं है, ऐसा ढांचा नहीं है जिसमें कि उन नस्लों के बढ़िया अच्छी अनुवांशिक क्षमता वाले पशुओं की पहचान की जाए। लेकिन हमें आपको या किसी संगठन को ये नहीं पता है कि वो जानवर कहाँ है। जिस दिन ये ज्ञान हमें आ जाएगा उस दिन उनकी क्षमता भी हम उपयोग कर लेंगे, क्षमता अनुसार उनका उत्पादन होने। तो नस्ल सुधार में सबसे पहली चीज देश के स्तर पे और नस्ल के स्तर पे हमें ये कहनी चाहिए किसानों के पास एक से एक अच्छे जानवर है। बस क्या है कि हमारे पास एक ढांचागत संरचना नस्ल विकास का नहीं है, पूरे देश में नहीं है। तो किसी भी नस्ल का ढांचा या संगठन या सोसाइटी नहीं है जो उस नस्ल को देखे। तो सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमें हर नस्ल का एक ऐसी सरकारी अधिकृत सोसाइटी बनानी होगी जो उस नस्ल की देखभाल करे।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि कोई भी युवा अगर अपने रोजगार के लिए भेड़ और बकरी पालन करना चाहता है तो कैसे शुरुआत करें, कहां से?
1: बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि पहले तो आपको भेंट का भी संस्थान है भारत सरकार का, बकरी का भी है, एक जयपुर के पास है एक मथुरा में है। अगर शुरुआत करना चाहें तो वहां जाइए, देखिए, वैज्ञानिकों से बात कर लीजिए। जहां तक नस्ल का चुनाव करना है सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखिए पोल्ट्री में क्या है कि हैचरीज हैं, आप उनको कहिए कि भैया इस नस्ल की मुर्गी का 10,000 जो है बच्चे चूजे चाहिए मिल जाएंगे। बकरी में आप 10 मांगे कोई देने को तैयार नहीं, कोई संसार
0: मुश्किल है।
1: इसमें केवल कठिनाई कहाँ होगी, उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करके किसानों के पास जाना होगा और जो ज्ञान जो उनको मिला है या अपने ज्ञान से अच्छे जानवरों का चयन करना होगा और वो जानवरों का चयन करके अपने पास लाएंगे। आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एक इनका जनरेशन इंटरवल जो है 2-2.5 साल का है, 2.5 साल के आसपास एक नस्ल बदल जाती है। तो आप पाएंगे कि 2-3 पीढ़ी मतलब 6 साल में आपके पास इतने बढ़िया नस्ल के जानवर होंगे, दुनिया आके देखेगी कि भैया ये जानवर। तो केवल दो चीजें किसानों को क्या करना है कि आपको एक नस्ल के लक्षण चाहिए, जैसे बर्बरी, बीटल, जमुनापारी, झकराना, ब्लैक बंगाल, जो भी है उसके आप देख लीजिए कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, उस अनुसार जानवर लाइए। जहां तक मैं जानता हूँ दोनों संस्थान 10 दिन का प्रशिक्षण देते हैं। तो मैं जितने भी लोग इस व्यवसाय में घुसना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता, निवेदन यह है कि आप उनकी वेबसाइट जाइए, बकरी अनुसंधान संस्थान की या भेड़ अनुसंधान संस्थान की, वहां पे उनके प्रोग्राम आते हैं प्रशिक्षण के, आप 10 दिन का या जितना भी हफ्ते भर का होता है उसमें भाग लीजिए। बहुत सक्षम वैज्ञानिक आपको ट्रेनिंग देते हैं, आप जाएंगे तो थोड़ा सशंकित जाएंगे कि क्या मिलेगा, लेकिन जब आएंगे तो आप एक पूर्ण पशुपालक बन के आएंगे। तो किसान भाइयों, जिसको भी पालना है आप प्रशिक्षण लीजिए, और अगर संभव हो, क्योंकि अभी ऑर्गेनाइज फार्म नहीं है, बहुत कम है, तो कुछ दिन आप जो है जो पारंपरिक किसान है, जनरेशन दर जनरेशन, उनसे उनके सानिध्य में रहिए, बात करिए, सीखिए, और ज्ञान कभी जाया नहीं जाता।
0: और अगर कुछ शुरू करना ही चाहता है तो उसका सही समय क्या हो सकता है?
1: देखिए, भेड़ और बकरियां बाल वाले जानवर हैं, साल में एक बार बच्चे देते हैं, 60% जानवर 2 बार देते हैं
0: जी।
1: तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, भेड़ हो या बकरी हो, जैसे ही प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त होती है, उत्पादन वाली अवस्था को, कभी जाया नहीं जाती, वो या तो गाभिन होगी या बच्चे पिला रही होगी, कभी सूखी 1-2 महीने के लिए होती है
0: जी।
1: तो कहने का मतलब यह है कि हमेशा उत्पादन में होती है, तो उनकी देखभाल और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति पहली बार, और वो तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास उसका ज्ञान हो।
0: और आजकल तो जैसे बात होती है कि मार्केटिंग की, जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि हमने इंपोर्ट तो लगाया है, उसमें मेहनत मजदूरी और जो भी है लेबर कार सब कुछ लगा है, लेकिन उसकी भरपाई जब ही होगी जब आउटपुट निकलेगा
1: जी।
0: तो मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं और क्या इसका सही तरीका है?
1: पहली बात यह है कि मार्केटिंग का मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें
0: जी।
1: तो मार्केटिंग से पहले एक चीज है कि लागत कम से कम रखने की कोशिश करिए, वो आप तकनीकी ज्ञान आपके पास हो। अब मार्केटिंग की बात आती है तो ये दोनों मानसेतु हैं। तो क्या है कि भारत देश में लगभग 6 या 7 ऐसे त्योहार हैं
0: जी
1: जिसमें

0: की बकरी और भेड़ के मांस की मांग जिसे कहते हैं इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि डेढ़ गुना, मतलब आपको 30-40% दाम बढ़ जाता है। अच्छा जानवर है आपको मुंह मांगा कीमत मिलेगी, लेकिन सभी जानवर उनका मूल्य है ऐसे समय में उससे डेढ़ गुना दो गुना कीमत पे बिकते हैं बाजार में। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आपको उस योग्य उस गुणवत्ता वाले जानवरों की जानवरों का उत्पादन करना पड़ेगा जो कि लोगों को आकर्षित करे। तो एक तो ये है कि स्थानीय मांग है, दूसरी बात यह है कि इन मांस के प्रति प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है देश की बढ़ती जा रही, तो वो आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो एक तो यह है कि प्रतिदिन आपको कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाजार में आपके पास जानवर हो और न बिके, कुछ तो ऐसा ही माल नहीं बिक रहा। लेकिन भेड़ वगैरह ऐसा है कि कभी हो ही नहीं सकता कि आपकी न बिके, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा बड़े किसान बनना चाहते हैं, संगठित होकर के आप देश का और पूरे विश्व के मार्केट को देखिए, एक्सपोर्ट करने वाले बहुत ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली बॉम्बे कानपुर हर जगह बैठे हैं
1: जी।
0: और वो इस ताक में रहते हैं, खुश रहते हैं कि अच्छा जानवर कब कितना मिलेगा। अगर आप 2-3 ट्रक अच्छे जानवर एक उम्र के स्वस्थ जिसमें कि रोग नहीं हो, रोगी होगा जानवर बहुत था, हड्डी हड्डी निकलेगी, मांस के लिए अच्छा नहीं माना जाता, स्वस्थ जानवर हो, आप जो मांग मांगेंगे वो मिलेगा।
1: डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ आज के दिन जो बकरी पालन दूध के लिए भी किया जाता है, क्योंकि बकरी के दूध की भी मांग बहुत ज्यादा है और उसकी कीमत भी बाजार में अच्छी
0: बहुत है, कभी कभी तो बहुत ज्यादा हो जाती है। दूध का बकरी का एक मैं जहां तक देख पाता हूं, हमारे पास जो है सबसे ज्यादा दूध देने वाली है बीटल है, जमुनापारी है, जखराना है, बर्बरी भी अच्छा दूध दे देती है, कुछ नस्लें हैं। मेरा अनुभव यह है कि केवल दूध के लिए व्यावसायिक तौर पर पालना थोड़ा सा लाभदायी नहीं होगा। आप दूध और मांस
1: दोनों
0: के लिए पालिए तो अच्छा हो जाता है। तो दूध के लिए है कि आप अगर एक दिन में 400-500 लीटर दूध उत्पादन कर लेते हैं तो फिर तो आप देश में मशहूर हो जाएंगे। बकरी का दूध जो है छोटे बच्चों में 2-3 महीने, माँ भी सर्विस पे जाते हैं, पिताजी भी सर्विस जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए बकरी का दूध बहुत अच्छा माना जाता है, 5-6 माना जाता है
1: जी।
0: और लोग, मैं बताऊं, अच्छे अच्छे व्यवसायी खोजते हैं कि उनको जो है मुंह मांगे कीमत पे शुद्ध बकरी का दूध मिल जाए। आप वो मार्केट पकड़िए, आपको फायदा होगा। लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है कि आपके पास कम से कम 200-250 लीटर बकरी का दूध आपके पास हो। अब मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि या तो आप क्या कर सकते हैं कि आप दूध कलेक्शन जैसे PCDF है, NDDB है, इस तरीके से बकरी के दूध गांव-गांव से इकट्ठा करके प्रोसेसिंग करके बेचने के एक व्यवसाय वो भी हो सकता है आपका। आप बकरी मत पालिए लेकिन बकरी पालकों से दूध इकट्ठा करिए, उनको प्रोसेस करिए और सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए कि शुद्ध बकरी का हो
1: जी।
0: और आप देखिए कि आप फेमस हो जाएंगे, स्पेशली विशेषकर जब आप दिल्ली बॉम्बे कोलकाता के आसपास हो,
1: मेट्रो साइड,
0: हाँ मेट्रो साइड में हो, वहां पे बहुत इसकी मांग है
1: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत विस्तार से भेड़ और बकरी पालन के बारे में बताया कि किस तरीके से हमारे किसान भाई पाल करके रोजगार के तौर पे इसे दे सकते हैं और अपना ही विकास नहीं इसमें देश के विकास में भी भागीदार बन सकते
0: जी।
1: डॉक्टर एस के सिंह जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे बकरी पालन छोटे किसानों के लिए लाभकारी व्यवसाय। डॉक्टर एस के सिंह, पूर्व परियोजना निदेशक ICAR नई दिल्ली से शिवनंदन लाल की बातचीत।
3: बिल्कुल, देखिए बात बहुत अच्छी जानकारी मिली है हमारे सभी किसान भाइयों को कि देखिए बकरी के पालन में और पशु पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन के साथ साथ जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं
2: बिल्कुल,
3: तो दोहरा लाभ भी लेते हैं। और दोहरा लाभ जब मिलता है जब हमारी मिट्टी अच्छा उत्पादन देती है
2: बिल्कुल। और जो योजनाएं बताई गई हैं किसान भाई बहनों के लिए उसका लाभ लेते हैं
3: बिल्कुल।
2: मुझे पता है अतुल भाई आप बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। ये एक योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कृषि योजना है। इसमें किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की सही जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि की वैज्ञानिक जांच के आधार पर एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है अतुल भाई, जिसमें मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की स्थिति तथा उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सलाह दी जाती है। इससे खेती की लागत कम होती है, उत्पादन बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है
3: बिल्कुल।

0: देखिए, इससे क्या होता है कुसुम बहन, जब हमारे किसान भाई अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाते हैं या अपनी मिट्टी की जब जांच कराते हैं, तो जांच कराने में उन्हें ये मालूम हो जाता है कि उनकी मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी हो गई है।
1: जी
0: तो क्या होता है कि जब ये जांच के लिए उनकी मिट्टी लैब के अंदर जाती है, तो जहाँ जब वहाँ जांच होती है तो उसमें पता पड़ जाता है हमारे किसान भाई को कि मेरे जमीन के अंदर पोटाश की कमी हो गई या सल्फर की कमी हो गई या और किसी पोषक तत्व की कमी हो गई है। तो उसकी मात्रा जो है हमारे किसान भाई फिर अपनी मिट्टी के अंदर डालते हैं तो उनका उत्पादन जो है वो बढ़ता है।
1: बिल्कुल अतुल भाई, जैसे आपने बताया कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, इन सब की जरूरत होती है, और इसके अलावा अम्लीय क्षारीयता भी जो होती है उनमें एक अनुपात में होता है इन सब चीजों का। और बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन है या नहीं है, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरन, इतनी सारी जो 12 प्रमुख मानकों की जांच रिपोर्ट एक तैयार होती है।
0: बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व होते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: और ये तो हम अपने आप अंदाजा नहीं लगा सकते,
0: अंदाजा कहाँ, जांच के द्वारा ही हमें पता पड़ती है हमारे किसान भाइयों को, सबको, हमें भी। और देखिए, हम तो यही कहेंगे कि अपने खेत की जब मिट्टी की जब आप जांच कराएं तो कोशिश करें कुसुम बहन की भाई कम से कम जब आपका खेत पर जाएं तो कम से कम 8 से 10 गड्ढे आप अपने खेत के अंदर करें, कम से कम 6 से 7-8 इंच तक गहरे करें कम से कम, और अलग अलग गड्ढों की मिट्टी आप इकट्ठा करें और तब उसको इकट्ठे करके और उसको मिला करके तब एक सैंपल आप लेकर के अपने लैब के अंदर जाएं और अपनी मिट्टी की जो है आप अच्छी तरह से जांच कराएं।
1: बिल्कुल अतुल भाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करती है। योजना स्वस्थ धरा, खेत हरा के लक्ष्य के साकार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, टिकाऊ कृषि और खाद्य सुरक्षा को मजबूत भी बना रही है।
0: बिल्कुल, और देखिए एक जानकारी और देना चाहते हैं भाई, कल हमारे सभी किसान भाई फल, सब्जी और मिलेट्स लोक संगीत के साथ सुन सकेंगे, और कल देखिए बातचीत के माध्यम से चारा फसलों जैसे चरी, बाजरा, ग्वार की बुआई और मानसून में हरे चारे का भंडारण किस प्रकार से हमारे किसान भाई कर सकते हैं, इसकी जानकारी कल डॉक्टर समरपाल सिंह देंगे हमारे सभी किसान बहन भाइयों को। तो कल भाई आप अपना कार्यक्रम हमारा किसी जगह जरूर सुनें, और अब चलते चलते अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं उदल सिंह की आवाज में ये उपदेश।

0: कुसुम बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे उदल सिंह की आवाज में ये उपदेश, और इसी उपदेश के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम
0: राम राम। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। गजलों और कव्वालियों के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं पंकज उदास के स्वर में ये गजल।

लता मंगेशकर और शमशाद बेगम के स्वर में फिल्म मुगले आजम की एक कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जगजीत सिंह की इस कव्वाली की तरफ।

इसी गीत के साथ गजल और कव्वाली का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों में स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति के गठन का निर्देश दिया। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों के कामकाज और वित्त स्थिति की जांच अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत ग्रीन ड्राइव पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों में स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति के गठन का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस समिति का गठन दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता अधिनियम 2025 के अंतर्गत किया गया है। श्री सूद ने कहा कि ये समिति शिक्षा सत्र 2026-27 से 2028-29 तक की फीस तय करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी फीस बढ़ोतरी से पहले अभिभावकों की भागीदारी और सहमति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे फीस तय करने की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और अभिभावक हितैषी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
3: अब दिल्ली का कोई भी स्कूल बिना पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस के लिए, बिना फी रेगुलेशन कमेटी बनाए कोई स्कूल फीस के बारे में निर्णय नहीं करता।
2: दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम के कामकाज और उनकी वित्त स्थिति की अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा गहन जांच की जाएगी। इस आदेश को महत्वपूर्ण बताते हुए ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये दिल्ली के बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय प्रत्येक बिजली उपभोक्ता और करदाता की जीत है। श्री सूद ने बताया कि बिजली क्षेत्र के निजीकरण के बाद वर्षों तक अनेक वित्त निर्णय, विशेष व्यवस्थाएं और लगातार बढ़ती देनदारियां की सार्वजनिक जांच नहीं हो सकी।
3: बिजली कंपनियां मुनाफा कमाती रही और रेगुलेटरी एसेट के नाम पर 38,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के सिर पर कर्ज अरविंद केजरीवाल की सरकार ने चढ़वाया है, इसलिए उसका एक ऑडिट होना चाहिए। जब हमने CAG ऑडिट की बात की तो डिस्कॉम्स कोर्ट में चली गई। हमने बहुत मजबूती से

0: केसलाल हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर उसमें पास किया, जिसके आधार पर पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अब डिस्कॉम के सीएजी ऑडिट के संदर्भ में हमने ऑर्डर पास किया है। बहुत जल्द सीएजी का ऑडिट इसके संदर्भ में होगा।
1: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। दिल्ली में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत गणना प्रपत्र प्राप्त किया। दिल्ली कैंट के उपमंडल मजिस्ट्रेट और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी से भी गणना प्रपत्र प्राप्त किया। बूथ स्तर अधिकारियों ने आज रिठाला, आरकेपुरम, मेहरौली और मंगोलपुरी सहित राजधानी के अन्य स्थानों पर घर घर गणना प्रपत्र वितरण का कार्य किया। दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी इस महीने की 29 तारीख तक घर घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन और अद्यतन के लिए वर्तमान मतदाताओं को पहले से छपे दो दो प्रपत्र वितरित करेंगे। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता निर्वाचन आयोग के पोर्टल www.voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन प्रपत्र भी भर सकते हैं। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति 2026 आम नागरिकों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई जनहितकारी नीति है। उन्होंने आज कहा कि नीति के अंतर्गत संबंधी लाभों के अतिरिक्त दोपहिया वाहनों पर ₹50,000, ई ऑटो पर ₹75,000 और कमर्शियल गुड्स कैरियर पर ₹1,50,000 की बचत संभव होगी। एक रिपोर्ट।
3: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ईवी नीति के अंतर्गत रोड टैक्स से मिलने वाली छूट केवल नीति की अवधि तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वाहन के पूरे जीवन काल तक लागू रहेगी। साथ ही वाहन खरीदते समय रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी पूरी छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली परिवहन विभाग सभी पात्र मॉडलों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा। वाहन बुक करने से पहले नागरिक इस सूची की जाँच अवश्य करें। प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली सचिवालय में ग्रीन ड्राइव पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत 70,00,000 पौधे लगाने के अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने हर नागरिक से हरित, स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली के लिए इस जन आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नागरिक greendrive.delhivanmahotsav.in पर पौधारोपण के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं।
4: इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली का हर एक निवासी जो चाहता है ग्रीन दिल्ली वॉरियर बनना, उसमें जुड़ सकता है। इस पोर्टल पे वो अपने लिए स्लॉट बुक कर सकता है, जगह चुन सकता है कि किस समय वो पेड़ लगाना चाहता है, और हम सब लोग अपने लिए स्पेस बुक करा सकते हैं। और 11 तारीख से हमारे लिए वो बुकिंग ओपन होगी। हम जहाँ पेड़ लगाना चाहते हैं वहाँ पेड़ लगा पाएंगे।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली नेक्स्ट कोड क्रिएट एंड चेंज कार्यक्रम की भी अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं, शिक्षण संस्थानों और नवोन्मेषकों को एक साझा मंच पर लाकर नागरिकों और शहरी चुनौतियों के लिए तकनीक आधारित समाधान विकसित करना है।
4: 1 करोड़ इंजीनियरिंग माइंड जब इकट्ठे आए और 2.5 लाख लोग उसमें से रजिस्ट्रेशन करें और उसमें लगभग 5,000 इनोवेटिव सॉल्यूशन को देखा जाए और आज उसमें से 60 लोग सेलेक्ट करके इस फाइनल राउंड में यहाँ भेजा जाए, तो मैं सच में कहना चाहती हूँ कि आपकी मेहनत, आपका जज्बा, आपकी इनोवेशन सच में काबिले तारीफ है। और यदि देश को आगे बढ़ना है तो उसकी ये जो युवा शक्ति है, इसको आगे ला करके उनकी वेवलेंथ पे आकर के उनके माइंडसेट को पढ़ के उनके आइडियाज पे काम करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
1: दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि राजधानी के सबसे पुराने जल शोधन केंद्र को अब आधुनिक बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1935 में स्थापित चंद्रावल जल शोधन केंद्र अब 10 करोड़ 50 लाख गैलन प्रतिदिन क्षमता वाला जल शोधन केंद्र बन रहा है, जिसमें ग्रेन्युलर एक्टिवेटेड कार्बन, ओजोनेशन और रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। लगभग 75,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित हो रही इस परियोजना का 82% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बोर्ड ने बताया कि इस परियोजना के पूर्ण होने पर करीब 22 लाख नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित पेयजल का लाभ मिलेगा। इस परियोजना को इस वर्ष सितंबर तक प्रारंभ करने का लक्ष्य तय किया गया है। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने आज आदर्श नगर वार्ड का निरीक्षण कर मॉनसून की तैयारियों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान श्री खिरवार ने आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास नालों की गाद सफाई के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज नरेला स्थित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
5: डॉक्टरों को स्टाफ की कमी उन्होंने अपनी बात रखी है और यहाँ पे हल्की सी लापरवाहियां भी हैं। लापरवाही के लिए हम लोगों ने राउंड लेके जोर करने को कहा है डॉक्टरों को कि आगे से भविष्य में दिल्ली की जनता और यहाँ के लोकल पब्लिक के इलाजों में कोई कमी नहीं होनी। दवाई की मात्रा यहाँ पे पूरी पाई गई, यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन काम की गति को और अच्छा करने के लिए जो डॉक्टर्स के सुझाव थे, जो माननीय विधायक जी के सुझाव थे, सुझाव के साथ स्वास्थ्य को और अच्छा करने की जो बात थी हम उसी माध्यम से यहाँ पे आए हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस उपायुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इस दौरान 2 विदेशी पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए।
6: दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल न्यू दिल्ली रेंज की एक टीम ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान बेस्ड शहजाद भट्टी नेटवर्क के संपर्क में थे। इनमें से 3 अभियुक्तों को पंजाब के बॉर्डरिंग एरिया से गिरफ्तार किया गया जो कि नार्को और आर्म्स कंसाइनमेंट ड्रोन के जरिए रिसीव किया करते थे। 1 अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है जिसे दिल्ली में रिलीजियस प्लेसेस, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स, पुलिस स्टेशन, पुलिस नाकाज की रेकी करने का जिम्मा दिया गया था। हैंडलर्स ने उसे यह भी प्रॉमिस किया था कि उसे हथियार मुहैया कराया जाएगा गतिविधि को अंजाम देने के लिए। अभियुक्तों से 2 स्मॉल आर्म्स और कुछ लाइव कार्ट्रिजेस भी बरामद किए हैं।
1: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पाकिस्तान के फरूखाबाद में 125 साल पुराने गुरुद्वारा साहिब के गिराए जाने की कड़ी निंदा की है। श्री सिरसा ने कहा कि गुरुद्वारा साहिब केवल सिखों की नहीं बल्कि मानवता की सांझी धरोहर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस तरह विरासत को नुकसान पहुंचाया जाना अत्यंत निंदनीय है।
7: गुरुद्वारा साहब की ये जो विरासत है ये केवल खाली सिखों की नहीं है, ये मानवता की विरासत है क्योंकि गुरुद्वारे में मानवता के भले की बात होती है, किसी धर्म की नहीं। मुझे बड़ा खेद है, पाकिस्तान में लाखों सिख पार्टीशन के बाद जो थे आज उनमें से केवल 8,000 सिख बचे हैं, बाकियों का जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया गया और करते करते आज वो गुरुद्वारों पे भी हमले कर रहे हैं। जहां मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, वहां कहना चाहता हूं दुनिया भर को इसका संज्ञान लेना चाहिए।
1: दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता और ट्रांस यमुनक क्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो हुआ है वो यूनेस्को के नियम का भी उल्लंघन है।
8: ये न केवल सिखों की भावनाओं को आहत और वहाँ की माइनोरिटीज चाहे सिखों हिंदुओं उनकी भावनाओं को आहत करने का काम है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बॉडी जो यूनेस्को है वो भी ये कहती है कि जो भी हेरिटेज साइट्स हैं और खास करके प्लेस ऑफ वर्शिप है, टेंपल है, जो 100 साल से अधिक समय की बिल्डिंग्स हैं, उनको सुरक्षित रखना वहाँ की सरकार का जो है कार्य है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन है। तो निश्चित रूप से हम इसकी घोर कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।
1: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज ओमान से आए विद्यार्थियों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि इन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जिज्ञासा, खोज की भावना और सीखने के प्रति उत्साह देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई।

0: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार कठिन परिस्थितियों में असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वालों को भी दिया जाता है। नामांकन awards.gov.in पोर्टल पर किए जा सकते हैं। कोई भी नागरिक, विद्यालय, संस्था या संगठन अपने द्वारा योग्य समझे जाने वाले उम्मीदवारों को नामांकित कर सकता है। बच्चे भी स्वयं।
0: दिल्ली में आज कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों में स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति के गठन का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों के कामकाज और वित्तीय स्थिति की जाँच अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हिंदी फिल्म संगीत के कुछ सदाबहार और दिल को छू लेने वाले नगमों के साथ कार्यक्रम गीत मालिका में मैं विजेता चतुर्वेदी आपका स्वागत करती हूं और कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

दोस्तों कहते हैं संगीत सीधा दिल तक पहुंचता है और हमें उम्मीद है कि ये गीत आपके दिल तक जरूर पहुंचा होगा, जिसे गाया मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम सिंदूर।

अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास को भी आपने सुना। क्या खूबसूरत गीत था। ऐसे गीत समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर बार सुनने पर एक नई ताजगी का एहसास कराते हैं। क्या आपको भी ये नई ताजगी का एहसास हुआ या नहीं?

दोस्तों, फिल्मी गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं करते बल्कि हमारी यादों, रिश्तों और भावनाओं से भी जुड़े होते हैं। कोई गीत हमें बचपन की याद दिलाता है तो कोई किसी खास इंसान की।

अगर आपका भी किसी गीत को सुनकर हंसी पर एक मुस्कान आ जाती है तो समझिए कि संगीत ने अपना जादू चला दिया। अगर आप किसी पुरानी याद में खो जाते हैं तो समझिए कि संगीत ने अपना जादू चला दिया।

त्रिदेव फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, संगीत की ये खासियत है कि बिना किसी भाषा या सीमा के वो सीधे दिल में उतर जाता है। एक अच्छा गीत हमारे चेहरे पर मुस्कान भी ला सकता है और पुरानी यादों को ताजा भी कर सकता है।

श्रोताओं, संगीत केवल मनोरंजन नहीं करता बल्कि तनाव को कम करने का, मन को शांत करने का और जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भरने का भी काम करता है। यही कारण है कि दिन की शुरुआत हो या दिन का अंत हो, एक अच्छा गीत हमेशा मन को सुकून देता है।

श्रोताओं, आपने शायद महसूस किया होगा कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम कितनी बार भी सुन लें, मन कभी नहीं भरता। उनकी धुन, उनके बोल और उनसे जुड़ी हमारी जो यादें होती हैं, वो हमेशा ही ताज़ा रहती हैं।

इसी खूबसूरत गीत के साथ आप मुझे आपसे विदा लेने की अनुमति दीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही सुनते रहिए अपने पसंदीदा फिल्मी गीत।

0: इसी के साथ गीत मालिका का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
3: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
4: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
5: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
4: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम

0: 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरलम में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक

0: शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia Initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, "Trust is the biggest asset in today's time, and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time." He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today, and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both the countries.
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: Briefing media in New Delhi this evening, Foreign Secretary Vikram Misri said that both leaders recognize

0: midnight.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगे। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हममनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर और समुद्री नक्लो हमल के निज़ाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले एक साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अवी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात लॉस एंजलिस में राउंड ऑफ 32 के मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जापान के ताल्लुकात हकीकी तौर पर बहुत खास हैं और इक्तिसादी शराकतदारी की कामयाबी की बहुत सी शानदार मिसालें मौजूद हैं। आज शाम नई दिल्ली में भारत जापान मुश्तरका इक्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब जापान की महारत और सरमायाकारी भारत की रफ्तार और पैमाने के साथ यकजा होती है तो पूरी दुनिया को उससे फायदा होता है। उन्होंने कहा कि आज दोनों फरीकों ने शराकतदारी को और ज्यादा गहरा और मजबूत करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और जापान ने इक्तिसादी तहफ्फुज़, मस्नूई ज़हानत, दिफा और सेहत जैसे बहुत से शोबों में आज समझौते किए हैं जो इस शराकतदारी को मुस्तकबिल के लिए और लामहदूद बनाएंगे।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: जापान की वज़ीर-ए-आज़म सनाई तकाइची ने अपने खिताब में कहा कि ताउन के बहुत से शोबों के माबेन तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम शोबों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालिया G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को मुस्तहकम करने के लिए 3 तजावीज़ पेश की थी ताकि पैदावारी और सारिफीन मुल्कों के दरमियान आज़ाद और शफाफ तवानाई की तिजारत करने, तवानाई के जामे ज़खीरे का ऐलान करने और ताउन को फ़रोग देने को यकीनी बनाया जा सके। मोहतरमा तकाइची ने कहा कि पावर एशिया इनिशिएटिव इस नजरिए को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए काम कर रहा है। इस मौके पर दोनों वज़राए आज़म ने हरियाणा के शहर खारखोदा में मारुति सुजुकी की गाड़ी तैयार करने की चौथी फैक्ट्री का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इससे कबल भारत और जापान ने आज मुख्तलिफ शोबों में समझौतों का तबादला किया। इनमें इक्तिसादी और तवानाई का तहफ्फुज़, अदविया और मस्नूई ज़हानत के शोबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे पहर नई दिल्ली में अपनी जापानी हममनसब सनाई तकाइशी के साथ सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस सतह की बातचीत की। ये चोटी कॉन्फ्रेंस बाहमी ताल्लुकात के मुकम्मल शोबों का इहाता करने और उन्हें दवाम बख्शने की गरज से दोनों मुल्कों के लिए मौका फराहम करने के साथ साथ बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात का तबादला करने का मौका भी फराहम करती है। बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आज के दौर में भरोसा सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने उजागर किया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शामिल हैं और एक आज़ाद और खुला भारत बहरुल काहिल दोनों ममालिक के लिए एक मुश्तरका तरजीह है।
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने

0: कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात को तस्लीम किया कि ये ताल्लुक एतमाद पर मबनी है और आज की मसरूफियात के दौरान एतमाद नुमाया तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि आज की मसरूफियात में तवानाई के तहफ्फुज़ और इक्तिसादी तहफ्फुज़ समेत शोबों में अच्छे नतायज हासिल हुए हैं। आज भारत और जापान ने खाम तेल की जामे जखीरा अंदोजी, पेट्रोलियम रिजर्व के तरीक़ेकार और समुद्री तवानाई की नकलो हरकत के अख्तदारी सिलसिले से मुतालिक तआवुन को और गहरा करने से इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी जापानी हम मनसब सनाई तकाईची के दरमियान आज तीसरे पहर नई दिल्ली में सालाना सरबराह सतह की बातचीत के बाद इस इत्तेफाक का ऐलान किया गया। दौरे के नतायज से मुतालिक तफसीलात फराहम करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान तबादले ख्याल में तवानाई की लचक एक कलीदी मौजू रहा। भारत की पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत और जापान की इक्तिसादी तिजारती और तवानाई की लचक से मुतालिक सनद की वजारत के जरिए जारी एक मुश्तरका बयान के मुताबिक फरीकैन ने मौजूदा जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की सूरतेहाल के माबेन तवानाई की लचक को मुस्तहकम करने की गरज से एशिया में जिम्मेदार मुल्कों और तवानाई इस्तेमाल करने वाले बड़े ममालिक के तौर पर काम करने के मुश्तरका इरादे का इजहार किया। तवानाई की नकलो हमल से मुतालिक दोनों ममालिक ने तेल और गैस के लिए लचकदार समुद्री लॉजिस्टिक्स की अहमियत पर जोर दिया और समुद्री तवानाई की नकलो हमल के जारी सिलसिले में मुश्तरका सरमायाकारी समेत तआवुन के मौके की जस्तजू करने से इत्तेफाक किया। कॉमर्स और सनद के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि जापान के साथ भारत की जामे शराकतदारी में सरमायाकारी एक कलीदी उनसुर के तौर पर उभरी है और तवक्को है कि बाहमी ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। एक निजी टेलीविजन चैनल के जरिए मुनाकिदा शेपिंग द एशियन सेंचुरी से मुतालिक भारत जापान जामे मुजाकिरात से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत की हुनरमंद अफरादी कुव्वत के लिए मौके खुल रहे हैं जबकि हुकूमत की तवज्जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में सबके लिए यकसां तरक्की को यकीनी बनाने पर मरकूज है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तौसी कर रहा है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में मुल्क की रिफाइनरी की सलाहियत सालाना 300 मिलियन मैट्रिक टन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 साल के वक्फे के बाद पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कायम की जा रही है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान सूरत हाल से निमटने की भारत की कार्रवाई के बारे में जनाब ने कहा कि तवील अरसे तक हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों को कंट्रोल किया है, नीज इन पर आयद महसूलात को कम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरियों के मफाद को हमेशा तरजीह देती है और उन पर तवज्जो मरकूज रखती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 4 साल में पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 5.8% का इजाफा हुआ जबकि डीजल की कीमतों में ये इजाफा 6.23% रहा। सारिफिन के लिए तेल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ और हुकूमत के मालियाती निजाम ने खाम तेल की कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने आज मुल्क भर के बैनलक्वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया। ये जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल DGHS और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL के इश्तराक से तैयार किया गया है। इसका मकसद सेहत, इमिग्रेशन और निगरानी करने वाले इदारों के दरमियान बरवक्त राब्ता कायम करके खतरे से दोचार मुसाफिरों की फौरी शिनाख्त करना और बैन अलाक्वामी मुसाफिरों की सेहत की निगरानी को मजीद मौसर बनाना है। एयर सुविधा 2.0 में मुकम्मल तौर पर कागज से मुबर्रा और बगैर जिस्मानी राब्ते के सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया निजाम मुतारिफ कराया गया है। नए निजाम के तहत बैन अलाक्वामी मुसाफिर अपनी आमद से 24 घंटे पहले ऑनलाइन तरीके से सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया फॉर्म जमा करा सकेंगे जिससे इमिग्रेशन की कार्रवाई तेज होगी और हवाई अड्डों पर सेहत की जांच भी

0: आसान और मौसर तरीके से अंजाम दी जा सकेगी। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर मुमलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मसनूई जहानत अब सिर्फ एक मुतबादिल नहीं रह गई है बल्कि ये अच्छी हुक्मरानी का एक अहम सुतून है। उन्होंने दानिशमंदी के साथ एआई के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया। आज से पहले जयपुर में 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के विजन को हासिल करने के लिए इंतजामी सोच में बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए अकीदतमंदों का पहला जत्था सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ जिला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में वाके नुनवान और जिला गांदरबल के बालतल बेस कैंप से कैंप पहुंच गया है। जम्मू से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए इस 57 रोजा यात्रा को लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने सुबह सवेरे झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का बाजाब्ता आगाज कल से होगा और ये 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भगवती नगर जम्मू के यात्री निवास से आज अल सुबह रवाना हुआ श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला काफिला सख्त सिक्योरिटी के बीच आज दोपहर वादी पहुंच गया। ये काफिला 4,822 यात्रियों पर मुश्तमिल है। इनमें 2,510 यात्री पहलगाम जबकि 2,312 यात्री बालतल के रास्ते कल सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना होंगे। बेस कैंप पहुंचते ही इंतजामिया के अफसरान और मकामी लोगों ने यात्रियों का वालिहाना इस्तकबाल किया। यात्रा के एहसन इनेकाद के लिए दोनों रास्तों पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के पूरे रास्ते पर पुलिस, नीम फौजी दस्तों और फौज के इजाफी एहलकारों को तैनात किया गया है। इसके अलावा तिब्बी खदमात की फराहमी, मौसमी हालात की निगरानी की सहूलियात के अलावा हसास मकाम पर क्विक रेस्पॉन्स टीम्स को भी मामूर किया गया है। अलावा अजी यात्रा के रूट पर सीसीटीवी कैमरे और यात्रियों नीज गाड़ियों के लिए आरएफआईडी ट्रैकिंग निजाम भी नस्ब किया गया है। उर्दू खबरों के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के पेश नजर इंतजामिया ने आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने मंसूख कर दिए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके। धारचूला के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने कहा कि इंतजामिया मौसम के हालात का जायजा लेकर परमिट फिर से जारी करने पर गौर करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मजीद आगे बढ़ते हुए पूरी दिल्ली, गुजरात के मजीद इलाकों, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश के बेशतर इलाकों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, पश्चिम महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। IMD के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में गर्म और हब्स वाला मौसम बरकरार रहने का इम्कान है। गुजरात में मानसून ने शिद्दत इख्तियार कर ली है जिसकी वजह से 109 तालुका में तेज बारिश हो रही है। खास तौर पर सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात में जूनागढ़ जिले के मंगरौल में आज रियासत भर की सबसे ज्यादा 8 इंच तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिश की वजह से सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात खित्ते के नशेबी इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के एक मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। राउंड ऑफ 32 के दीगर मैचों में टोरंटो में पुर्तगाल का सामना क्रोशिया से होगा जबकि कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इससे कबल आज सुबह बेल्जियम सेनेगल को 2-3 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल जखायर और समुद्री नकलो हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले 1 साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मैट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY, इसे हम कह सकते हैं कि ये योजना खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन का एक दशक पूरा कर चुकी है। PMKSY ने पिछले एक दशक में समूचे भारत में सिंचाई अवसंरचना को मजबूत करने और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। ये योजना 64,460 करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्रीय सहायता के साथ खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन के प्रमुख उत्प्रेरक के तौर पर उभरी है और 2.7 करोड़ से भी अधिक किसानों को अब तक लाभ पहुंचा है और 2.46 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई क्षमता पैदा की गई है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने देश के किसानों का भविष्य उज्जवल किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी मौजूद है। हरवीर जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद हर्ष जी।
1: आपसे पहला सवाल यही हम जानना चाहेंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और देश की कृषि व्यवस्था में ये योजना पिछले एक दशक में किस तरीके का परिवर्तन लेकर आई है?
2: हर्ष जी देखिए, कृषि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक इनपुट है वो सिंचाई है। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप कोई भी फसल उगाने के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं और अपनी तैयारी के साथ खेती कर सकते। तो कृषि जो है वो एक तरीके से खेती करने के लिए, अगर हम ये कहें जो सिंचाई है वो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। और इसीलिए क्योंकि अभी भी जो हमारा टोटल जो जिसे हम कहते हैं कि जिस क्षेत्रफल में खेती होती है उसका लगभग आधे से थोड़ा कम जो है, एक दशक पहले जो करीब 45% के आसपास था उससे भी कम था, वो वर्षा आधारित था। तो यानी कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है, जो उसकी हमें एक उम्मीद है कि कितना उसके अंदर संभाव्यता है, उसको हम पूरा उपयोग नहीं कर सकते थे अगर हम सिंचाई की सुविधा ना बढ़ाए। तो पहला फोकस जो रहा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य रहा है, वो देश के किसानों को उनकी खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है वो मुहैया कराने का उद्देश्य इसके पीछे रहा है। क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें आगे शुरू होती है और उसमें एक मल्टीप्रॉन्ग्ड अप्रोच जिसे कह सकते हैं हम लोग, एक साथ इसके बहुत सारे घटक हैं इस योजना के
1: जी,
2: उनको सब पर काम किया गया है और उसके नतीजे जो आपने जैसे कहा कि एक दशक में 2016-17 के बजट से लेकर के और अभी तक हमने 64,407 करोड़ रुपए का आवंटन सिंचाई के लिए इस योजना के तहत किया है और उसका नतीजा यही रहा कि करीब जो 24.61 मिलियन हेक्टेयर जो है वो जमीन हम अतिरिक्त सिंचाई के तहत ला पाए, जिसका फायदा 2.5 करोड़ से ज्यादा देश के किसानों को हुआ।
1: सरकार ने एक लक्ष्य बनाया कि प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ये चीज सामने आई जिसका फायदा भी किसानों ने और हमारे फार्मिंग सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर ने उठाया। ये प्रति बूंद अधिक फसल, इसे कैसे आम श्रोताओं के लिए आप समझाएंगे?
2: एक तरीके से जो हम कहें कि जो स्लोगन भी बनाया गया पर डोप मोर प्रो, यानी कि हर बूंद से अधिक उपज का मतलब है कि जो हमारे पास जल उपलब्ध है, जो संसाधन हमारे पास सिंचाई के उपलब्ध है, उनको हम कितना दक्षता के साथ उपयोग कर सकते हैं ताकि हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं उत्पादन में फसल के, वो हम आकलन कर सकते बेहतर उत्पादन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और जो एक्सटेंशन वर्क है जिसमें किसान को बताना है, समझाना है कि जो पानी है एक तरीके से बहुत ही बहुमूल्य रिसोर्स है, उसका आप बेहतर दक्षता के साथ उपयोग करके अधिक उपज कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो जो भी कंपोनेंट है उनको केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ा गया। तो इसीलिए जो स्लोगन है पर डॉग मोर प्रो, प्रति बूंद अधिक उपज, लोग उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है वो कदम इस योजना के तहत उठाए गए।
1: हरवीर जी, आपने मॉनसून आधारित यानी वर्षा आधारित सिंचाई की भी बात की, तो एक हम इसे कैसे समझें आम श्रोताओं के हिसाब से? एक तो जब वर्षा होती है तो हर खेत को पानी पहुंचता है, लेकिन फिर उसके लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है, तो आंकड़े क्या बताते हैं? अभी देश में कितने एरिया ऐसे हैं जहां वर्षा आधारित कृषि है, और कितने एरिया हम मान के चले ऐसे हैं जहां के लिए हम सिंचाई की सुविधा देते हैं जो वर्षा पर आधारित नहीं है, वर्षा हो ना हो वहां सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा?
2: हमारा सिंचाई का जो ढांचा है जो बहुत बरसों से है, जैसे कि हम लोग कैनाल सिस्टम है, ट्यूबवेल सिस्टम है और डैम बनाए गए हैं, चेक डैम्स है, तो ये एक जो पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं बड़े, उनका रेस्टोरेशन है, बहुत सारी चीजें उसके साथ में है। लेकिन जो कैनाल इरिगेशन और हम जो कहते हैं कि भाई जहाँ ट्यूबवेल सिस्टम है वो सारे जो हम कहते हैं इसको एश्योर्ड इरिगेशन, यानी कि बारिश हो ना हो लेकिन किसान के पास एक वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग करके वो अपने खेतों की सिंचाई करके फसल का उत्पादन कर सकता है। और इसलिए जो बहुफसलीय जो उत्पादन क्षेत्र है वहां पर किसानों की स्थिति भी अच्छी होती है, उत्पादन भी ज्यादा होता है, कि जो फसल चक्र उसका है वो रबी है, खरीफ है, जायद है, वो सारी चीजें उसमें हासिल कर सकता है क्योंकि उसके पास सिंचाई की सुविधा है। ये इस तरीके का जो हमारा क्षेत्रफल है वो 50% से थोड़ा ज्यादा है। बाकी जो है हमारा जो कृषि है वो हम कहते हैं कि वर्षा आधारित है, हालांकि वह काफी बड़े पैमाने पर वहां पर भी किसानों ने अपने स्तर पर और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका उपयोग करके सिंचाई की सुविधाएं है। इसको हम रेनफेड एरिया बोलते हैं। रेनफेड एरिया में अक्सर जो है एक फसलीय खेती होती है और वो जब ये हमारा मानसून का सीजन होता है उस वक्त ये खेती होती है, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं कि हर वक्त बारिश हो। तो सरकार की जो योजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका एक कंपोनेंट है वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में होता क्या है कि उस तरीके के सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा करने के एक ढांचे बनाए जाते हैं, चेक डैम्स बनाए जाते हैं, कि जो रेनफेड एरिया है वहां पर एक सिंचाई उस क्षेत्र में हो जाए जब कमी पड़ती है उस फसल, या जो पानी अगर बच जाएगा तो उससे आप दूसरी फसल के लिए भी पानी उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये एक काफी बड़ा काम है और देश भर में इसके ऊपर सरकार ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर। और इससे क्या हुआ कि जो इलाके ऐसे हैं जो कृषि में थोड़ा पिछड़े हुए हैं उनको बाकी क्षेत्रों के करीब लाने की कोशिश कामयाब होती है, क्योंकि वहां के किसानों को उनका जो कृषि से जो आय है उसमें इसके जरिए सुधार किया जाना संभव है और हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। ये वहां पर जो पॉन्ड्स है उनका रेस्टोरेशन होता है कि जिससे जब पानी की जरूरत है तो वहां से पानी किसान ले सके, और बहुत जगह यूजर एसोसिएशन बनी हुई है किसानों के, अपने एक तरीके से कलेक्टिव बने हुए हैं जो मिलजुल कर उसका मैनेजमेंट भी करते हैं और आपस में उस पानी का बंटवारा भी करते हैं, जिससे सबके साथ इक्विटेबल जो है रिसोर्सिस का इस्तेमाल हो सके। तो ये इस योजना का एक बड़ा कंपोनेंट मैं मानता हूँ और इसको काफी बड़ा बल मिला है। जो एक रेनफील्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी है और वो बड़े पैमाने पर इसके ऊपर काम भी करती रही है, तो ये तभी संभव हुआ है जब उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: हरवीर जी, आप ये भी बताएं कि जो ये अवसंरचना विकास है सिंचाई के लिए, ढांचागत विकास है, उसमें क्या नवीनता आई है समय के साथ साथ? जैसे अब तो हम हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो सिंचाई में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है और ढांचागत जो विकास हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं?
2: इसका एक कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP जिसको बोलता है
1: जी।
2: वो प्रोग्राम ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं लंबे समय से उनका जो लास्ट माइल कंप्लीशन है, यानी कि जो प्रोजेक्ट 80% पूरा हो गया या 90% पूरा हो गया, उसमें अगर 10% काम बचा तो उसको तेजी से पूरा किया जाए, उसके लिए अलोकेशन किया जाए, और उसके पूरा होते ही उसका जो पोटेंशियल है, जो उसके जरिए जो एक संभावना है या कितना क्षमता का हमने उम्मीद रखी है उसके सिंचाई की जो उससे पैदा होगी उसका उपयोग तुरंत हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कंपोनेंट रहा है और इसके ऊपर जो है करीब 21,000 करोड़ रुपया जो है इसके लिए अलोकेट हुआ और बड़े पैमाने पर इससे करीब 173 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उसको सिंचित सुविधा की तरह हम दे पाए। प्लस जो माइनर इरिगेशन है, जैसे मैंने आपको चेक डैम की बात की थी, या माइनर इरिगेशन है वो सब हुआ, साथ में जो टेक्नोलॉजी है जैसे आपने कहा कि जो मैं कहूँ कि प्रिसीजन इरिगेशन जो है कि आपको माइक्रो इरिगेशन की जो स्कीम्स है कि भाई आप स्प्रिंकलर है, आपके ड्रिप इरिगेशन है जिससे आप सिंचाई के साथ आप न्यूट्रिशन भी पौधे तक सीधे पहुंचा सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है और आपकी लागत घटती है। और ये जो स्कीम्स है जिसमें हम मैं कह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी का जहाँ इस्तेमाल हुआ है इस तरीके की इरीगेशन के जो नई चीजें नई पद्धतियां लागू की गई हैं उससे बहुत कम पानी में कई जगह एक चौथाई पानी इस्तेमाल होता है फ्लड इरीगेशन के मुकाबले इसमें या उससे भी कम होता है।

0: जो उपज है वो बेहतर होती है, उत्पादकता बेहतर होती है। जो ड्राई लैंड एरिया जैसे कि राजस्थान है, गुजरात का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा है, वहां पर इस तरीके की जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सिंचाई सुविधाओं के ऊपर काम हुआ है, क्योंकि इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है और उस सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है।
1: जी
0: जैसा आपने कहा कि पहले से जो हमारा कैनाल इरिगेशन था, जो बड़े पॉन्ड्स थे या लेक्स थे, जो है वहां से जो पानी का हम इस्तेमाल कर पा रहे थे नहरों के जरिए, तो लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें अगर ट्यूबवेल सिस्टम भी है तो वहां पर भी आप जो है बोरवेल में वहां पर भी ये आप उसको आगे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जहां पानी का स्तर ऊपर था वहां पर बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल्स जो है उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए, उसका इस्तेमाल हुआ। और ये जो सिंचित, जैसे हम ईस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं, वहां जो सिंचित एरिया बढ़ाने की बात है उसमें ये काफी मददगार हुई है स्कीम्स इस तरह की। इवन राजस्थान में बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रिसिशन जो इरिगेशन की हम बात करते हैं नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, प्लस सोलर पंप्स के जरिए, छोटे पंप्स और सोलर के जो एनर्जी जहां बिजली की भी जरूरत नहीं है, ये सारा चीजें तभी हो पाई है जब आपने एक बहुत वृहद स्कीम बनाई और
1: जी
0: उसमें हर कंपोनेंट को रखा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डैम बनाएंगे और इरिगेशन के लिए चैनल्स बनाएंगे, नहीं, जो भी उपलब्ध एक तरीके से विकल्प है उन सबको एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की।
1: हरवीर जी, आपने बहुत सही बताया कि किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल कर और स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर किसानों ने अपनी फसल को बढ़ाया है, अपनी आय बढ़ाई है। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के किसानों ने स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाकर पानी, बिजली और श्रम की लागत काफी कम कर दी, अपना उत्पादन बढ़ाया। और आपने राजस्थान की भी बात की कि जहाँ किसानों ने कम पानी के बावजूद अपना उत्पादन बढ़ाया है। साथ ही आपने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP के माध्यम से भी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को किस तरीके से सरकार ने पूरा किया है इस पर भी बातचीत की। अब आप हमें ये बताएं कि सरकार खास तौर पर विशेष रूप से अगर कहें छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए 55% तक की सहायता देती है, आपने अभी थोड़ी देर पहले सब्सिडी की भी बात की, इससे किसानों की आय और खेती पर पिछले कुछ वर्षों में क्या प्रभाव पड़ा है?
0: ये जो छोटे किसान होते हैं उनके पास संसाधनों की कमी होती है, उनके पास जो वित्तीय संसाधन है वो बड़े किसानों की तरह उपलब्ध नहीं होते कि वो और इन्वेस्टमेंट करके सिंचाई सुविधाओं पर तुरंत अपने लिए सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ पर जो सरकार ने सब्सिडी मुहैया कराई है, जो कंपोनेंट जो लागत आती है उसका बड़ा हिस्सा जो दिया है, और इसमें कोशिश ये हो रही है कि ये जो सुविधाएं विकसित हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो, जिससे कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी, जो यानी कि पानी के उपयोग की जो दक्षता है, जो हम लोग पीछे कह रहे थे कि पर लो मोर क्रॉप जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे अक्वाफर हो या और पॉन्ड्स उनको कैसे रिचार्ज रखा जा सकता है।
1: जी
0: मेरा अभी भी मानना है कि अभी इस तरीके के जो किसान है हमारे देश में, अभी भी जो लघु और सीमांत किसान है उनकी हिस्सेदारी करीब करीब 88-89% के बीच में चले गए हैं। जोत का जो आकार है 2 हेक्टेयर, कम जमीन के जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनको अभी एक तरीके से जो एक्सटेंशन है, जो उन तंत्र सूचना का है कि उनको कैसे हम शिक्षित करें, कैसे उनको हम इसके लिए तैयार करें कि वो इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लेकर के और जो कृषि जो वो खेती करते हैं उसमें अपने उपज बेहतर कर सके, अपने जो आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके, अपनी ज्यादा फसल करके ज्यादा आय हासिल कर सके, क्योंकि स्कीम्स अवेलेबल है उसमें बड़े पैमाने पर। अभी भी जरूरत यह है कि जो लिंकेज हैं उनको कैसे हम जोड़ें, किस राज्य की क्या स्कीम है,
1: जी
0: कहाँ से उनको ये उपकरण लेने हैं, उसके खेत के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है, तो ये उनको अभी और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है।
1: जी और हरवीर जी, यहाँ ये भी बताते चलें कि केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 6,587 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और ये दर्शाता है कि सरकार जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को किस तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हरवीर सिंह जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

0: यह आकाशवाणी है, प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत कार्यक्रम में आज रात हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध चाक्यर कूत कलाकार श्री मार्गी मधु और उनके साथ संगत की प्रस्तुति।
1: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's national program of regional folk and light music, we bring you a Chakyar Kuta by Shri Margi Mathu and party.
0: Shri Margi Mathu Koodiyattam ke agrani kalakaron mein se ek hai. Koodiyattam Kerala ki prachin sanskrit rangmanch parampara hai jise UNESCO ne manavata ki maukhik एवं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्रदान की है। 19 मई 1966 को जन्मे मार्गी मधु पद्मश्री मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार के पुत्र तथा पद्मभूषण अमनूर माधव चाक्यार के भांजे है। उन्होंने अमनूर माधव चाक्यार, मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार, पी के नारायणन नंबियार और एम माधवनुनी जैसे महान आचार्यों के मार्गदर्शन में पारंपरिक गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने लगभग 3 दशकों तक अध्यापन किया तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में अतिथि अध्यापक के रूप में भी सेवाएं दी। कूड़ियाटम के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संस्कृति राष्ट्रीय पुरस्कार, केरल कलामंडलम पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे मूलिकुलम स्थित नेपथ्य कूड़ियाटम केंद्र के कलात्मक निदेशक के रूप में कार्यरत है।
1: Shri Margi Mathu is one of the foremost exponents of Koodiyattam, the ancient Sanskrit theatre tradition of Kerala, recognized by UNESCO as a masterpiece of oral and intangible cultural heritage. Born on 19 May 1966, he is a son and disciple of Padma Shri Mulikulam Kochikuttan Chakyar and nephew and disciple of the legendary Padma Bhushan Ammanur Madhava Chakyar. Trained under eminent masters including Ammanur Madhava Chakyar, Mulikulam Kochikuttan Chakyar, P.K. Narayanan Nambiar and M. Madhavanunni, he completed traditional Gurukula training. He has served for nearly 3 decades as lecturer and assistant professor in the Department of Theatre at Sri Shankaracharya University of Sanskrit. He has also served as guest faculty at the National School of Drama and Film and Television Institute of India. His contributions have been recognized with numerous honors, including the Sanskriti National Award, Kerala Kalamandalam Award, Kerala Sangeetha Nadaga Academy Award, and the prestigious Sangeetha Nadaga Academy Award. He currently serves as Artistic Director of Mulikulam Nepathya Koodiyattam Center.
0: Margi Mathu Dwara Prastut Chakyar Kut Ka Katha Sandarbh Is Prakar Hai. Kiratam Rajanakar Melpatur Narayana Bhattadiri. Katha Sandarbh Divya Pashupatastra Ki Prapti Ke Liye पांडवों में अर्जुन भगवान शिव की कठोर तपस्या और आराधना करते हैं। अर्जुन के अहंकार का नाश करने के उद्देश्य से भगवान शिव किरात का वेश धारण कर उनके सामने प्रकट होते हैं। उसी समय अर्जुन का वध करने के लिए मूकासुर जंगली सुअर का रूप धारण करके आता है। अर्जुन और किरात रूपधारी भगवान शिव दोनों उसके ऊपर बाण चलाते हैं और उसका वध कर देते हैं। इसके बाद यह विवाद उत्पन्न होता है कि सुअर को किसने मारा। इसी विवाद के परिणाम स्वरूप अर्जुन और भगवान शिव के बीच युद्ध होता है।
1: We shall now present the story background of the Chakyar Kuta performed by Shri Margi Mathu. Kiratam, author Melpatur Narayana Bhattadiri. Story context. In order to obtain the divine Pashupatastra, Arjuna performs intense penance and worships Lord Shiva. To rid Arjuna of his pride, Lord Shiva appears before him in the guise of a Kirata. At that time, the demon Mukasura, who has assumed the form of a wild boar, approaches to kill Arjuna. Both Arjuna and the hunter shoot the boar and kill it. A dispute then arises over who slew the animal, leading to a fierce battle between Arjuna and Lord Shiva in disguise.

0: श्रोताओं, आपने अभी श्री मार्गी मधु द्वारा प्रस्तुत चाक्यार कूथ सुना। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी त्रिशूर के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था।
1: Dear listeners, you have just heard the Chakyar Kutha presented by Shri Margi Madhu and party. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur.
0: क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में हम आपके लिए श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम संगीत लेकर आए हैं। श्री अमल एंटनी एक पार्श्व गायक, संगीतकार, कोरल अरेंजर तथा वोकल कोच है। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार भी है। भारतीय और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में समान रूप से दक्ष अमल एंटनी ने विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में सुगम संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2006 में वे गंधर्व संगीतम टेलीविजन रियलिटी शो के विजेता बने तथा उन्हें राज्य स्तर पर पी सुशीला पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के रूप में सम्मानित किया गया।
1: Continuing with the national program of regional folk and light music, we now bring you Malayalam light vocal songs presented by Shri Amal Antony. Shri Amal Antony is a playback singer, music composer, choral arranger and vocal coach. He is an A-grade artist of Akashwani. A gifted musician with accomplishments in both Indian and Western music traditions, Amal Antony was a national winner in light vocal music at the University Youth Festival in 2012. He also won the Gandharva Sangeetam television reality show in 2006 and received the P. Sushila Award for Best Male Singer at the state level.
0: Ajrat, Shri Amal Antony, Char Sugam Geet प्रस्तुत कर रहे हैं। इन चारों गीतों के बोल मलयालम के प्रसिद्ध फिल्म गीतकार एवं कवि श्री रफीक अहमद ने लिखे हैं। इन गीतों का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार तथा भक्ति संगीत के क्षेत्र में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त श्री टी.एस. राधाकृष्णन ने दिया है।
1: Tonight,

0: प्रेम मनुष्य को सपनों, आशाओं और आनंद की दुनिया में ले जाता है। वही प्रेम वियोग उसे आत्मचिंतन और विरह वेदना की ओर ले जाता है। आइए अगले गीत में विरह की वेदना से व्याकुल एक प्रेमी हृदय की भावनाओं को सुने।
1: While love leads a person into a world of dreams, hopes and joy, the loss of love takes one into the realm of introspection and the pain of separation. In the next song, let us listen to the yearning heart of a lover grieving in the anguish of separation.

0: प्रथम प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मन में अमित स्मृतियां रिच देता है। उसमें जिज्ञासा, सपने, आशाएं और निष्कलुष भावनाएं भरी होती है। इत्र की मधुर सुगंध की तरह प्रथम प्रेम की यह सुगंध अब इस गीत के माध्यम से वातावरण में फैल रही है। आइए सुनिए।
1: फर्स्ट लव इज एन एक्सपीरियंस दैट क्रिएट्स अनफॉरगेटेबल मेमोरीज इन द हार्ट। इट इज फिल्ड विद क्यूरियोसिटी, ड्रीम्स, होप्स एंड इनोसेंट इमोशंस। Like the lingering fragrance of attar, the sweet scent of first love now fills the air in this song.

0: वृश्चिक मास की शीतल प्रभात में जब प्रकृति नवजीवन का श्रृंगार धारण करती है, तब फूलों से फूलों तक उड़ती तितलियां रंग बिरंगे सपनों का ताना बाना बुनती है। वे हमें भी सपने देखने और जीवन की सुंदर कल्पनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
1: In the cool freshness of a Vrishika dawn, as nature adorns itself with new life, butterflies fluttering from flower to flower weave dreams of many colors. They inspire us, too, to dream and to embrace the beauty of imagination.

0: आज क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम गीत सुन रहे थे। इन गीतों के बोल श्री रफीक अहमद ने लिखे थे तथा संगीत श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिए थे। उनके साथ संगत कर रहे थे श्री विल्सन केएक्स कीबोर्ड, श्री बाबू वर्गीस रिथम पैड, श्री सीएनके मूर्ति बासुरी तथा श्री सी श्री कुमार तबला। उसके साथ ही आज का क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का समापन होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी त्रिशूर केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था। यह प्रसारण आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।
1: In the national program of regional folk and light music, you were listening to a presentation of Malayalam light songs by Sri Amal Antony. The songs have been written by Sri Rafiq Ahmed and composed by Sri T. S. Radhakrishnan. He was accompanied by Sri Wilson K. X. on keyboard, Sri Babu Varghese on rhythm pad, Sri C. N. K. Murthy on flute, and Sri C. Sri Kumar on tabla. With this, we come to the end of today's national program of regional folk and light music. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: Namaskar. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं। अभी

0: हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
0: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health that will make

तेरी एक पुकार पर चले आना, ये कोई मजबूरी नहीं मोहब्बत है दोस्त, वरना यूं हर किसी के लिए दिल बेकरार नहीं हुआ करता। किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म अमर अकबर एंथोनी से। इस गीत की फरमाइश की थी एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नावेद हसन अनम, सुहेल हसन रसीद ने। और साथ ही दिल्ली से इस गीत की फरमाइश की थी तरु, प्रियाशी, नवी, एसपी सिंह, नीलम, वरेंद्र सिंह, तनिष्का और मास्टर रणवीर ने।

जी हाँ दोस्तों, इश्क का दरिया बड़ा गहरा होता है, जो इसमें उतरता है वही इसका राज समझता है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत। फिल्म प्रेम कहानी से इस गीत की फरमाइश की थी जसपुर उत्तराखंड से नाजमा बेगम, रियासत हुसैन, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर और गाजियाबाद से शीशपाल अकेला ने।

कहते हैं दोस्तों, एक नजर काफी होती है दिल की दुनिया बदलने के लिए। कुछ लोग यूं ही नहीं बस जाते हैं, किस्मत भी साथ देती है मिलने के लिए। शैलेंद्र सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म खेल खेल में से। इस गीत की फरमाइश की थी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी पटेल नगर से डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू ने।

दोस्तों, मोहब्बत ना उम्र देखती है, ना मौसम, ना इसे कोई दीवार रोक पाती है, ना दिल से दिल जब किसी के मिल जाते ना, तो वही प्यार अपनी कहानी लिख जाती है। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म दिल से। इस गीत की फरमाइश की थी दिल्ली पहाड़गंज से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी शास्त्री नगर भीड़ सेल से किशन सपकाल, आशा, सोनिया और विशाल ने।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। इस गीत की फरमाइश की थी शांतिनगर सोनीपत से सिमरन मुखी, अनीता मुखी और सूरदर्शन ने। साथ ही दिल्ली से उत्तम नगर से बोधराज खोरवाल, कमला रानी गीतिका और भानु प्रकाश ने।

प्यार अगर अच्छा हो ना तो दोस्तों हर दिन खास लगता है। एक मुस्कान भी पूरे दिन की सबसे प्यारी सौगात लगती है। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे थे गीत फिल्म मोहब्बत से। इस गीत की फरमाइश की थी अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक, आजाद अली अनवर, रिजवान परवीन और अब्दुल्ला आजाद ने।

0: सुनीता कृष्णामूर्ति और कुमार सानू की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत 1942 और लव स्टोरी से। इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। 12 बजने को है लाइव न्यूज 24/7 पर। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल

0: मूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आर्थिक दुनिया, सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। इसमें जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान और समुदाय की भागीदारी से लेकर हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, बेहतरीन कोचिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण शामिल है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। फीफा विश्व कप में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच अमेरिका के इंगलवुड में लॉस एंजल्स स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, "When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits." He said, "Both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound." The Prime Minister said, India and Japan reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless.
1: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है, तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।

गीत के साथ। जी हाँ, कजरा मोहब्बत वाला तो आपने सुना ही होगा। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कजरा मोहब्बत वाला, आंखियों में ऐसा डाला, शमशाद बेगम की आवाज में सुंदर बेहतरीन रचना। आइए सुनते हैं, आगाज कर रहे हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। नमस्कार।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, आगाज हमने इसी गीत के साथ किया है ताकि सभी साथियों को पता चल जाए कि जी हाँ, आज का जो कार्यक्रम होने वाला है बहुत ही शानदार और बेहद खूबसूरत है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, एक ऐसी गायिका जिन्हें सिरों की मल्लिका कहा जाता है, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन लाजवाब शमशाद बेगम। हम बात कर रहे हैं शमशाद बेगम की। वाकई अच्छा लग रहा है मुझे आज, क्योंकि ऐसी एक ग्रेट पर्सनैलिटी के लिए कार्यक्रम चल रहा है। वाकई बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आपको भी शायद अच्छा लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि गायिका है ही कुछ ऐसी, है ना साथियों। उनके बारे में क्या कहें, उनकी गायकी में ना कोई कृत्रिमता थी ना दिखावा, बस था केवल सुरों का उजाला, भावनाओं की मिठास और दिल को छू लेने वाली सादगी। आज के इस 50 मिनट के कार्यक्रम में ले चलेंगे हम एक ऐसे सफर में, जानेंगे उनके जीवन की अनकही दास्तान, संघर्ष की कहानी, सफलताओं की ऊंचाइयां, उनके अमर गीत, कुछ सुने तो कुछ अनसुने किस्से और वे यादें जिन्होंने उन्हें भारतीय संगीत इतिहास का अमिट अध्याय बना दिया। तो आइए, दिल की धड़कनों को सुरों की लय से जोड़ते हैं, यादों के दीप जलाते हैं और स्वागत करते हैं उस आवाज का जो समय बीत जाने के बाद भी उतनी ही ताजा, उतनी ही प्यारी और उतनी ही अमर है। आइए एक और गीत सुनवा रहे हैं

बहुत सुंदर, एक से एक बेहतरीन खूबसूरत रचनाएं जी हां आज आपको सुनने को मिलेंगी। साथियों, सुर कभी बूढ़े नहीं होते, सुर कभी बूढ़े नहीं होते, आवाज कभी मरती नहीं, जो दिलों में उतर जाए वह हमेशा अमर रहती है। तो आइए आरंभ करते हैं आज का यह विशेष संगीत सफर। सबसे पहले शमशाद बेगम जी हां शमशाद बेगम, उनका परिचय हम बता देते हैं। जीवन परिचय है उनका। शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल 1919 को तत्कालीन अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ। बचपन से ही उन्हें संगीत से गहरा लगाव था। उस समय लड़कियों का सार्वजनिक रूप से गाना सामाजिक रूप से सहज नहीं माना जाता था, इसलिए परिवार की ओर से भी कई संकोच थे। फिर भी उनकी विलक्षण प्रतिभा ने रास्ता बनाया। उनके बुलंद

और स्वाभाविक आवाज ने जल्दी ही संगीतकारों का ध्यान आकर्षित किया। रेडियो पर प्रारंभिक गायन में उन्हें पहचान दिलाई और उनके बाद उसके बाद फिल्मी दुनिया के द्वार खुल गए।

जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत। गीत एक से एक बढ़कर शानदार, बेहतरीन रचनाएं, वाकई लाजवाब। साथियों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 1940 के दशक में उन्होंने अनेक गीत गाए और शीघ्र ही वे हिंदी फिल्म

संगीत की सबसे लोकप्रिय आवाजों में शामिल हो गईं। यदि हम उनके संघर्ष की बात कहें या उनकी कहानी कहें, तो आज जिस नाम को हम सम्मान से लेते हैं, उसके पीछे कठिन संघर्ष भी था। समाज की परंपराएं, परिवार की आशंकाएं और फिल्मी दुनिया की चुनौतियां, इन सब के बीच उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कभी अपनी गायकी में कृत्रिमता नहीं आने दी, और उनकी आवाज की सबसे बड़ी विशेषता उनकी स्पष्टता और ऊंचा स्वर और लोक संगीत की सहज मिठास थी। संगीतकार उनकी एक ही टेक में गीत पूरा कर देने की क्षमता की प्रशंसा करते थे। अनुशासन, समय की पाबंदी और मेहनत, जी हां दोस्तों, मेहनत उनकी पहचान थी। तो एक और गीत सुनवाते हैं, एक बहुत ही प्यारा गीत है फिल्म आग से। जी हां दोस्तों, शमशाद बेगम की आवाज, ऑब्वियसली 1948 की फिल्म है आग। तो इसी फिल्म का एक गीत सुनवा रहे हैं, आशा करते हैं आप सभी साथियों को जरूर पसंद आएगा। सुनवाते हैं ये शानदार खूबसूरत रचना।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत मार्मिक गीत अभी आप सुन रहे थे, दिल टूट गया, फिल्म आग से, शमशाद बेगम की आवाज। आग फिल्म सन 1948 में प्रदर्शित हुई थी और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को राम गांगुली ने। साथियों, अब हम चलते हैं संगीत यात्रा पर। उससे पहले ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है और इस कार्यक्रम को, जी हां, सुरों का सफरनामा को आप इंद्रप्रस्थ चैनल में भी सुन सकते हैं। इंद्रप्रस्थ और AIR लाइव न्यूज एक ही स्टूडियो में दोनों फ्रीक्वेंसी होती हैं और सभी साथियों से हम अनुरोध करेंगे कि ये जो प्रोग्राम होते हैं हमारे, सुरों का सफरनामा एक बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन कार्यक्रम होता है जिसमें आप अपने संदेश भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद, उससे पहले हम बताए देंगे आपको कि भाई संदेश कब करना है, कैसे करना है, लेकिन हमारे पर्सनल पे भी आप संदेश कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा सराहें, है ना, अच्छा लगता है। तो साथियों, संगीत यात्रा की ओर चलते हैं। उनकी आवाज को अनेक महान संगीतकारों ने अपनाया। उन्होंने उस दौर के कई प्रमुख संगीतकारों के साथ काम किया और अनेक कालजयी गीत दिए। उनके गीतों में प्रेम था, उल्लास था, लोक संस्कृति की झलक थी, भक्ति थी और जीवन का उत्सव भी था। बाद के वर्षों में नई पीढ़ी की गायिकाओं के आने से उन्होंने धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली, लेकिन उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई।

जी हाँ श्रोताओ, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत तभी आप सुन रहे थे। साथियों क्या कहें, बहुत कुछ है कहने को, लेकिन 50 मिनट के कार्यक्रम में इतनी सारी जानकारियों के साथ हमें बोलना होता है। जी हाँ दोस्तों, वो क्यों, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम और 50 मिनट में समाहित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन हाँ, फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि बस ज्यादा से ज्यादा जानकारियों के साथ आपकी सुंदर खूबसूरत रचनाएं भी शामिल की जाएं। साथियों आज भी उनके गीत रेडियो संगीत मंचों और पुराने गीतों के कार्यक्रम की अमूल्य धरोहर है। पहला भावपूर्ण सेतु, जी हां, गीत से पहले कुछ आवाजें समय के पन्नों पर नहीं दिल की धड़कनों में लिखी जाती है, जिन्हें सुनकर बरसों पुरानी यादें भी मुस्कुराने लगती हैं। अब समय है शमशाद बेगम की उसी अमर आवाज को सुनने का, जिसने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दी। तो आइए सुनते हैं उनका खूबसूरत लाजवाब गीत उनकी आवाज में, यानी कि शमशाद बेगम की आवाज में।

जी हाँ साथियों, समय तीव्र गति से आगे दौड़ रहा है, भाग रहा है, लेकिन जानकारियां इतनी उपलब्ध हैं जिसकी हद नहीं है। वाकई बहुत ही खूबसूरत आवाज थी उनकी। क्या खूबसूरत आवाज, ना कोई बनावट, ना कोई दिखावा, सिर्फ सच्चे सुरों की चमक। यही कारण है कि दशकों बाद भी शमशाद बेगम का नाम भारतीय संगीत इतिहास में पूरे सम्मान से लिया जाता है। साथियों, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो रोचक और अनसुने किस्से हैं, 1940 से लेकर 1960 तक के प्रमुख गीतों की वर्षवार अगर हम सूची की बात करें तो फिल्मों की जानकारियां और प्रत्येक गीत के बीच प्रसारण योग्य वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन रचनाएं हैं, एक से खूबसूरत रचनाएं हैं। और साथियों, समय हमें इजाजत तो नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ जानकारियां और हम बता देते हैं, क्योंकि इतने सारे हमारे पास जितनी सारी रोचक जो बातें हैं, एक रिकॉर्डिंग के बाद संगीतकार ने मुस्कुराकर कहा, इस लड़की की आवाज में बनावट नहीं, बरकतें हैं। यही बात आगे चलकर सच साबित भी हुई। उनकी आवाज भारत के करोड़ों श्रोताओं की पहचान बन गई। अगर 1941 की हम बात करें, जो प्रमुख प्रारंभिक जो गीत था खजांची, संगीत गुलाम हैदर का था, इसी फिल्म के गीतों ने शमशाद बेगम को पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया। 1942 में खानदान फिल्म और जमींदार फिल्म, वाकई इन फिल्मों के गीत ने उनकी अलग पहचान बनाई और निर्माता निर्देशकों का विश्वास जीता। और जो सुर दिल से निकलते हैं वे सदियों तक गूंजते हैं। नाम भले समय की धूल में छिप जाएं, लेकिन सच्ची आवाज कभी नहीं मिटती। कितनी सहज, कितनी स्वाभाविक और कितनी बुलंद आवाज। आज के समय में ऐसी खुली आवाज बहुत ही कम सुनने को मिलती है। यही कारण है कि शमशाद बेगम का गायन आज भी संगीत विद्यालयों में अध्ययन का विषय माना जाता है। 1943 और 45 की बढ़ती लोकप्रियता में इन वर्षों में शमशाद बेगम लगातार नई फिल्मों के लिए गाने लगी, और संगीतकारों को उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह लगती थी कि वे बिना किसी कृत्रिमता के भावों को सीधे श्रोताओं तक पहुंचा देती थीं। उनके गीतों में गांव की सादगी भी थी और शहर की नजाकत भी थी। रिकॉर्डिंग के समय वे अपनी अनावश्यक रिहर्सल की मांग नहीं करती थी। वे पूरी तैयारी के साथ स्टूडियो पहुंचती थी और अक्सर एक या दो टेक में ही रिकॉर्ड हो जाता था। इस अनुशासन ने उन्हें संगीतकारों की पहली पसंद बना दिया। 1946 और 47 की बात करें कि उनकी जो प्रमुख फिल्में रहीं, शाहजहां, मेला और दर्द, अनमोल घड़ी, इस दौर के संगीत परिवेश में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। इस वर्ष में उनकी लोकप्रियता पूरे उत्तर भारत से निकलकर पूरे देश में फैल चुकी थी। और संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समय का दस्तावेज भी होता है। कुछ आवाजें दस्तावेज ऐसे हस्ताक्षर कर जाती हैं जिन्हें कोई युग मिटा नहीं सकता। शमशाद बेगम की आवाज भी उन्हीं अमर हस्ताक्षरों में एक है। तो आइए अब सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत।

साथियों समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी जानकारी और मौजूद है। इसमें विशेष रूप से नौशाद सी रामचंद्र, ओपी नैयर, एसडी बर्मन और हसनैन हुस्न

काल भगत राम और शंकर जयकिशन जैसे दिग्गज शामिल थे। उनकी बुलंद और खुली आवाज ने फिल्मी जगत के लिए एक ऐसी नई पहचान दी जिसे जो भी श्रोता सुनता तो वो कायल हो जाता था। उनकी फिल्म 1948 धरती को आकाश पुकारे लोकप्रिय रचनाओं में से शामिल है। इस वर्ष उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। 1949 की बात करें तो यह वर्ष ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। फिल्म पतंगा का गीत मेरे पिया गए रंगून, जी हाँ दोस्तों, मेरे पिया गए रंगून एक बहुत ही फेमस गीत है। क्योंकि हम सुनवा नहीं सकते क्योंकि कार्यक्रम का जो अवधि है वो बहुत कम है। आज भी हिंदी फिल्म संगीत के सबसे लोकप्रिय हास्य युगल गीतों में गिना जाता है। इस गीत में उनकी चुलबुली अदायगी स्पष्ट उच्चारण और श्रोताओं का दिल जीत लिया है। साथियों, समय इजाजत नहीं दे रहा है और छोड़े जा रहे हैं उसी गीत के साथ, शानदार बेहतरीन रचना के साथ। मुझे शुरू का सफरनामा से दीजिए अनुमति, अपने दोस्त अपने होस्ट आरजे ललित कुमार को नमस्कार। छोड़े जा रहे हैं इसी गीत के साथ।

0: साथियों, आज का शुरू का सफर सफरनामा कार्यक्रम समाप्त होता है। 1 बजने को है, अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।

भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेघालय शिक्षक प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अकादमी लंबे समय से चली आ रही कमियों, खासकर शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी कमियों को दूर करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह श्रृंखला अगले महीने की 15 से 27 तारीख तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट अगले महीने की 15 तारीख से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट अगले महीने की 23 तारीख से कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ साथियों, एक और खूबसूरत गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत है, और ये काहे करता देर बराती। जी हाँ, ये फिल्म का नाम हम बता देते हैं, ये किस फिल्म का गीत है। तो ये गीत है औरत। जी हाँ, औरत फिल्म से गीत है, और सिंगर हैं, जो गायक हैं, अनिल विश्वास हैं। ये फिल्म औरत 1940 प्रदर्शित फिल्म रही है, और संगीत से सजाया है अनिल विश्वास ने ही। तो ऐसे सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, वो दिन याद करो, बहुत ही सुंदर बेहतरीन लाजवाब रचना। एक और गीत आ रहा है साथियों, एक बहुत ही प्यारा गीत है, ख्यालों में किसी से। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सुंदर खूबसूरत गीत है और ये गीत वाकई लाजवाब है। तो सुनवाते हैं ये खूबसूरत रचना, ख्यालों में किसी से, फिल्म बावरे नैन से, मुकेश और गीता रॉय की आवाज में सुंदर रचना। बावरे नैन फिल्म 1950 प्रदर्शित फिल्म रही, गीत केदार शर्मा के हैं और संगीत से सजाया है रोशन ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार रचना।
1: ये तस्वीर तो मेरी है।
2: नहीं, ये तस्वीर है जो हमेशा मेरे ख्यालों में आता है, और इससे मैं कहती हूँ

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत तभी आप सुन रहे थे। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। गीत सुनहरे वाकई बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होता है जिसमें गोल्डन एरा यानी कि बिल्कुल खरे सोने की तरह एक से एक बेहतरीन लाजवाब खूबसूरत गीतों का समावेश बनता है। एक ऐसे अनमोल खूबसूरत गीत संगीत के खजाने से लेकर आते हैं हमारे साथी। जी हाँ, जिस प्रकार से हम लेकर आते हैं ऐसे ही हमारे जो श्रोता साथी हैं ऐसे गानों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि गीत संगीत

उदाहरण लेना हो तो सच में जो सुनहरे दौर की जो एक अलग पहचान होती है, आज भी जो सीनियर श्रोता साथी हैं उन्हीं गानों को ही सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ बात ही है अलग है ना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। साथियों, इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। इसी कड़ी में एक और खूबसूरत गीत आ रहा है जो ऑल टाइम फेवरेट गीत है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा गीत है ये। गीत दिल की उमंगे हैं, फिल्म मुनीम जी से, हेमंत कुमार और गीता दत्त और ठाकुर की आवाज में शानदार रचना है। ये फिल्म मुनीम जी 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है। इस गीत को सजाया है संगीत से SG बर्मन साहब ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार रचना।

0: गाइए ना।
1: दिल की उमंग है जवान,
0: गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।

0: गाइए ना।
1: दिल की उमंग है जवान,
0: गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।
1: पामा पधा पगा सपा, दिल की उमंग है जवान, गाइए।
2: दिल की उमंग है जवान,
0: बहुत अच्छी।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर, दिल की उमंगे हैं जवां, वाकई बिल्कुल अलग मजाकिया काइंड ऑफ सॉन्ग, बहुत ही अलग एक्टिंग, लाजवाब खूबसूरत रचना। एक और गीत आ रहा है आपके पास। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा गीत है, तो सुनवाते हैं यह शानदार रचना। इस रचना के बारे में कुछ जानकारी हम बता देते हैं। लेके पहला पहला प्यार सीआईडी फिल्म से है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाज में शानदार रचना है। यह फिल्म 1956 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने। तो आइए सुनते हैं यह शानदार खूबसूरत गीत।

अति सुंदर बेहद खूबसूरत गीत लेके पहला पहला प्यार ऑल टाइम फेवरेट लाजवाब खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा गीत है। मैंने चांद और फिल्म चंद्रकांता से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में शानदार रचना। ये फिल्म चंद्रकांता 1956 प्रदर्शित फिल्म रही। गीत सिप्पी फिल्म्स द्वारा है और गीत संगीत से सजाया है एन दत्ता ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार रचना।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। ये राती नई पुरानी, वाकई बहुत ही प्यारा गीत, लाजवाब रचना। साथियों समय 2 बजने को है, केवल 2 या 3 मिनट बाकी हैं, तो इसी दौरान एक गीत सुनहरे कार्यक्रम की अंतिम बेहद खूबसूरत रचना सुनवा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत रचना, भीगी हुई इस रात का। जी हाँ, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, आशा भोसले की आवाज में शानदार रचना। नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, ये फिल्म ही वो 1966 प्रदर्शित फिल्म रही। गीत मूवी मोन्यूमेंट के हैं और संगीत से सजाए हैं मदन मोहन ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार रचना, आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की अंतिम रचना।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेवार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेघालय टीचर ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये एकेडमी लंबे समय से चली आ रही कमियों, खासकर शिक्षकों की प्रशिक्षण से जुड़ी कमियों को दूर करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जाँच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी उक्दहान प्रांत में तीर्थयात्रा पर जा रहे 9 भिक्षुओं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सूत्रों के अनुसार 11 साल के एक लड़के ने पिकअप ट्रक से इन भिक्षुओं को टक्कर मार दी। अधिकारियों ने बताया कि उक्दहान प्रांत के कुल 35 भिक्षु तीर्थयात्रा पर थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह श्रृंखला अगले महीने की 15 से 27 तारीख तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट अगले महीने की 15 तारीख से गाली अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaishi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaishi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. India and Japan agreed to deepen cooperation in strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit level talks between PM Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaishi in New Delhi yesterday. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both sides expressed their shared intention to work as responsible powers in major energy consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri yesterday said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil yesterday reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility requiring sustained collaboration among central ministries, state governments, urban local bodies, scientific institutions and local communities. The minister said this while chairing the 19th meeting of the Empowered Task Force on River Ganga. He emphasized that strengthening sewage infrastructure, promoting reuse of treated wastewater and conserving wetlands and biodiversity will collectively accelerate the vision of an Aviral and Nirmal Ganga. He added that these acts will also ensure long-term water security and ecological resilience across the Ganga Basin. Vice President C.P. Radhakrishnan interacted with 40 participants of MP Lead Fellows at Uparashtrapati Bhavan yesterday. In his address highlighting the importance of constitutional values, Mr. Radhakrishnan said, democracy flourishes when citizens uphold their duties along with their rights. The Vice President urged the fellows to learn with curiosity, innovate fearlessly and remain committed to the larger national interest, expressing confidence that the MP Lead Fellowship would nurture future nation builders committed to a developed and self-reliant India. In Jammu and Kashmir, the first batch of pilgrims for the Sri Amarnath Ji Yatra yesterday reached the twin base camps at Nanwan in the Pahalgam area of Anantnag district and Baltal in Gandharbal district under tight security. The 57-day pilgrimage to the Holy Cave Shrine was formally flagged off from Jammu in the early hours by Lieutenant Governor Manoj Sinha. The Yatra will officially begin today and is scheduled to culminate on August 28th. The southwest monsoon has further advanced into entire Delhi, some more parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan. IMD has issued a red alert for heavy rainfall in the parts of western and central India for the next 2 to 3 days. However, in Delhi, the sky is likely to remain cloudy with the possibility of light rain over the next 24 hours. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 2:10 तो साथियों, ये कार्यक्रम होता है बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत। जी हाँ, कार्यक्रम गीत बहार, फिल्म म्यूजिक ऑफ नॉन स्टॉप। जी हाँ, बिना किसी रुकावट के आप सुन पाएंगे, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी रुकावट के, बस आप लगातार बारंबार खूबसूरत गीतों की रचना आपके साथ। मैं, जी हाँ, आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। तो हो जाइए तैयार, बिना सोचे बिना समझे बस गीत संगीत का आनंद लेते रहें मेरे साथ। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर गीत के साथ।

जिस तरह शाम का।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीतों का जो समावेश बन रहा है, एक से एक लाजवाब खूबसूरत गीत। एक और गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा सुंदर खूबसूरत रचना है और ये रचना वाकई बहुत ही सुंदर है, बेमिसाल है, खूबसूरत है। जी हाँ दोस्तों, ये गीत वाकई अपने आप में बेहद खूबसूरत है। बीते ना बिताई रैना, बहुत ही सुंदर लाजवाब रचना है। आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, बीते ना बिताए रहना, फिल्म परिचय से, जो 1972 प्रदर्शित फिल्म रही, लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज में शानदार रचना, गीत गुलजार के और संगीत राहुल देव बर्मन का था। सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत, अनमोल रचना। जी हाँ, रात का समय है, 3:10 बाकी हैं। हम हैं आपके साथ अभी भी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार।

आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, आकाशवाणी में एक ही स्टूडियो में दो फ्रीक्वेंसी चल रही हैं। एक है इंद्रप्रस्थ चैनल जिसमें आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और दूसरा AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आप दोनों ही फ्रीक्वेंसी में कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। साथियों, अभी जो गीत आपने सुना इस रात के सन्नाटे में, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत रहा और बहुत ही प्यारा। फिल्म दो चेहरे से आशा भोसले की आवाज में सुंदर गीत। फिल्म दो चेहरे 1975 रिलीज फिल्म रही है और गीत रतन प्रोडक्शन द्वारा है और गीत संगीत को सजाया है सोनिक ओमी ने। तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। जब दीप जले आना, जब दीप जब शाम ढले जाना, बहुत ही सुंदर ऑल टाइम फेवरेट खूबसूरत गीत है। तो आइए सुनवाते हैं ये शानदार रचना। साथियों, जब दीप जले आना फिल्म चितचोर से है। यशुदास और हेमलता की आवाज में शानदार खूबसूरत रचना है। फिल्म चितचोर 1976 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत राजश्री प्रोडक्शन द्वारा है और संगीत से सजाया है रविंद्र जैन ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत रचना।

जी साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर गीतों का समावेश आप सभी साथियों ने मिलकर बांधा है। वाकई हमें भी अच्छा लग रहा है और वाकई रात का समा बिल्कुल अलग ही होता है। बिल्कुल एकांत में सुंदर बेहतरीन रचनाओं का सुनने का आनंद एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, ना जाने कितने गुना बढ़ जाता है ना। वाकई बहुत ही शानदार साथियों, और इतने सारे गीतों के साथ साथ हालांकि 3 घंटे हो चुके हैं हमें और बस 5 मिनट ही बाकी है, बल्कि 4 मिनट बाकी है, और एक गीत सुनाना चाहते हैं। हमें नहीं पता कि क्योंकि आजकल बहुत सारे शादियों का माहौल भी चल रहा है और ऐसे में बर्थडे भी किसी का मनाया जा रहा है, ऐसे में वेडिंग एनिवर्सरी भी मनाई जा रही है, तो हम सभी के लिए एक गीत डेडिकेट करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही शानदार है। तो अर्चना जोशी और अनिल जोशी, आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है तो इसलिए तो उनके लिए एक गीत समर्पित कर रहे हैं हम, यानी कि मैं आपका दोस्त ललित कुमार, और सभी से उम्मीद करता हूं कि सभी साथी खुश होंगे और मस्त भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे बिल्कुल मेरी तरह। तो सुनवाते हैं ये शानदार बेहतरीन रचना आज के कार्यक्रम गीत बहार की अंतिम रचना, आइए सुनते हैं।

0: यह साथियों, इसी गीत के साथ गीत बाहर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। समय हुआ है 3:03 बजने वाले हैं और अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों तथा प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी मुग्दाहान प्रांत

0: में तीर्थ यात्रा पर जा रहे 9 भिक्षुओं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। सूत्रों के अनुसार 11 साल के एक लड़के ने पिकअप ट्रक से इन भिक्षुओं को टक्कर मार दी। अधिकारियों ने बताया कि मुग्धाहान प्रांत के कुल 35 भिक्षु तीर्थ यात्रा पर थे। फीफा विश्व कप में स्पेन ने राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। इंगलवुड में लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में मिकेल ओयारज़बाल ने 36वें मिनट में गोल करके स्पेन को बढ़त दिलाई, जिसके बाद पेड्रो पारो ने 66वें मिनट में एक और गोल कर दिया। ओयारज़बाल के 89वें मिनट में अपना दूसरा गोल करके जीत पक्की कर दी। अब अंतिम 16 में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल या क्रोशिया से होगा। कनाडा ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ी तानिया हेमनाथ अमेरिका की दिशा गुप्ता को 21-16, 21-18 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला जापान की रिको गुंजी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The PM said India and Japan reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both PMs jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. India and Japan agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi yesterday. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on energy resilience, both sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri yesterday said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti, C.R. Patil, yesterday reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility requiring sustained collaboration among central ministries, state governments, urban local bodies, scientific institutions and local communities. The minister said this while chairing the 19th meeting of the Empowered Task Force on River Ganga. He emphasized that strengthening sewage infrastructure, promoting reuse of treated wastewater and conserving wetlands and biodiversity will collectively accelerate the vision of an Aviral and Nirmal Ganga. He added that these acts will also ensure long-term water security and ecological resilience across the Ganga basin. Vice President C.P. Radhakrishnan interacted with 40 participants of MP Lead Fellows at Uprashtrapati Bhavan yesterday. In his address highlighting the importance of constitutional values, Mr. Radhakrishnan said, "Democracy flourishes when citizens uphold their duties along with their rights." The Vice President urged

आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीतों और गजलों का। अभी आपने सुनी राधिका चोपड़ा की आवाज में ये बेहतरीन सी गजल। आइए सुनते हैं अगली पेशकश चित्रा सिंह की आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीतों और गजलों का कार्यक्रम, और इसमें अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत। ये सुनते हैं धीरा गोशा की आवाज में

अभी आपने सुनी धीरा घोष की आवाज में ये खूबसूरत सी पेशकश। लीजिए सुनते हैं अगली नज्म जगजीत सिंह जी की आवाज में।

अभी आपने सुनी खूबसूरत सी पेशकश मीलू शर्मा की आवाज में। श्रोताओं, गीत गजलों का कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है और हम आपको छोड़े जा रहे हैं जगजीत सिंह जी की इस खूबसूरत सी पेशकश के साथ। फिलहाल अपनी दोस्त सारिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का एआई लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4 बजने को है। ये वक्त होता है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम अर्चना का। लीजिए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: अभी आप पारशाला बी पूर्णमल द्वारा प्रस्तुत श्री गुरुवायूर पुरैशा सुप्रभातम सुन रहे थे। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: लीजिए अब सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। आज के नाद ब्रह्म कार्यक्रम में आप सुनेंगे यल्ला वेंकटेश्वर राव का तालमादि में तालवाद्य कचेरी।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए अब आपको इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा देते हैं। ठीक 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे अर्ध मत्स्येन्द्रासन के बारे में। प्रातः 5:20 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। प्रातः 5:30 पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना प्रातः 6:10 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन। आज के चिंतन में आप सुनेंगे लाला लाजपत राय के बारे में। प्रातः 6:45 पर श्री रामचरितमानस से पाठ। आज इसमें आप सुनेंगे बालकांड का भाग 105। प्रातः 7:10 पर आप सुन सकते हैं संगीतिका। 7:30 का वक्त रहेगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग इस कार्यक्रम का। प्रातः 8:45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा प्रसारित किया जाएगा और 9:15 पर गांधी चर्चा। आज के गांधी चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता ग्रामीण विकास और औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति के बारे में गांधी जी के विचार। मिट्टी दी महक इस कार्यक्रम का वक्त रहेगा प्रातः 9:30। फिल्म संगीत आपकी पसंद, जी हाँ, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं प्रातः 10:10 पर। सब रस का वक्त रहेगा 11:10 और सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रातः 11:30 पर। तो ये थी आज प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 5:00 को हैं। अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान की संबंध अति विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच से श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के साथ एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों को की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श होगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गनीटा आज ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। सीरिया के दमिश्क के एक कैफे में विस्फोट में 9 लोगों की मौत की खबर है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में मिकेल ओयारजाबल ने 36वें मिनट में गोल करके स्पेन को बढ़त दिलाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच के मैच के विजेता से होगा। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त को गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जबकि दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। India and Japan have reaffirmed their shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interests, and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar Initiative, provides both sides with the required impetus to furthering economic security cooperation.
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
2: Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. In the India-Japan Annual Summit joint statement, both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on 22nd April last year. They also noted the United Nations Security Council Monitoring Team report of 29th July 2025 mentioning the resistance front. They also condemned in the strongest terms the terror incident in Delhi on 10th November last year. The two prime ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri yesterday said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil yesterday reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility requiring sustained collaboration among central ministries, state governments, urban local bodies, scientific institutions and local communities. The minister said this while chairing the 19th meeting of the Empower Task Force on River Ganga. He emphasized that strengthening sewage infrastructure, promoting reuse of treated wastewater and conserving wetlands and biodiversity will collectively accelerate the vision of an Aviral and Nirmal Ganga. Vice President C.P. Radhakrishnan interacted with 40 participants of MP Lead Fellows at Uprashtrapati Bhavan yesterday. In his address, highlighting the importance of constitutional values, Mr. Radhakrishnan said, democracy flourishes when citizens uphold their duties along with their rights. The Vice President urged the fellows to learn with curiosity, innovate fearlessly and remain committed to the larger national interest, expressing confidence that the MP Lead Fellowship will nurture future nation builders committed to a developed and self-reliant India. In Ukraine, 27 people have been killed and 90 others were injured in massive drone and missile strikes by Russia on capital Kyiv. Damage was recorded in 30 locations across Kyiv, mainly residential buildings and civilian infrastructure. Russia's defense ministry said in a statement the deadly bombardment on Wednesday night was in response to Ukraine's long-range strikes on its civilian infrastructure. In the FIFA World Cup, Spain defeated Austria 3-0 in their round of 32 match at Los Angeles Stadium in Inglewood, California to advance to the round of 16. Mikel Oyarzabal put Spain ahead in the 36th minute before Pedro Porro doubled the lead in the 66th. In the ICC Women's T20 World Cup, hosts England defeated South Africa by 40 runs in the second semi-final at the Kennington Oval in London to set up a title clash with Australia. And that is the end of this news bulletin.

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। आज के आओ योग करें कार्यक्रम में आप सुनेंगे योग अर्धमत्स्यासन के बारे में।
1: योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान न करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। आज बात करेंगे अर्धमत्स्येंद्रासन की। अर्धमत्स्येंद्रासन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्धमत्स्येंद्रासन तीन शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र मतलब भगवान। अर्धमत्स्येंद्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्धमत्स्येंद्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्धमत्स्येंद्रासन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से सामने रखें। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ पीछे रखें। कमर, कंधों व गर्दन को दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से देखें। रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखें। इसी अवस्था को बनाए रखें। लंबी गहरी साधारण सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने हाथ को ढीला छोड़ें, फिर कमर, फिर छाती और अंत में गर्दन को ढीला छोड़ें। आराम से सीधे बैठ जाएं। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएं। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लाभ। इससे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। छाती को फैलाने से फेफड़ों को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती है। अर्ध मत्स्येंद्रासन में रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है, जिससे उसकी कार्य कौशलता में सुधार होता है। पीठ में दर्द और कठोरता से राहत मिलती है। यह आसन छाती को खोलता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। अर्ध मत्स्येंद्रासन बाहों, कंधों, ऊपरी पीठ और गर्दन में तनाव को कम करता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन स्लिप डिस्क के लिए चिकित्सीय है, लेकिन यह आसन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। यह आसन पेट के अंगों की मालिश करता है और पाचन में सुधार लाता है, जिससे कब्ज जैसी स्थिति में लाभ होता है। अग्नाशय के लिए लाभदायक है। मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है अर्ध मत्स्येंद्रासन। यही आसन डायबिटीज, कब्ज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मूत्रपथ विकारों, मासिक धर्म की परेशानियां और अपच के लिए चिकित्सीय है। अर्ध मत्स्येंद्रासन के दौरान कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान यह आसन वर्जित है, नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिनके दिल, पेट या मस्तिष्क की ऑपरेशन की गई हो, उन्हें अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उनके लिए भी आसन वर्जित है। पेप्टिक अल्सर या हर्निया वाले लोगों को यह आसन बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसी तरह अगर आपको रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट या समस्याएं हैं, तो आप यह आसन ना करें। हल्के स्लिप डिस्क में इस आसन से लाभ हो सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में इसे नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी इसी चैनल पर, इसी समय। योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 5:30 होने को है। ये वक्त होता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। आज के स्वर रंजनी कार्यक्रम में आप सुनेंगे मनीष शर्मा द्वारा राग भैरवी में जल तरंग।